0: जो तो अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरमंजरी के अंतर्गत रश्मि दत्त का सितार वादन राग आहिर भैरव में।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी, रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़। DRM 810 किलो हर्ट्ज पर 6 बजने को आपसे कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें

0: शिवली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चली यह यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने ये यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। वर्ष 1974 में हुए पहले विश्व कप में चौथा स्थान हासिल करने के बाद ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज सुबह 9:30 पर आप सुन सकेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। महिला कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 12:10 पर, और दिन में 1:10 पर आप सुन सकेंगे एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्म रेशम की डोरी और फिल्म इजाजत के कुछ गीत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:40 होने को हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भगवान महावीर के उपदेश।
1: नमस्कार, आज के चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लघु वार्ता भगवान महावीर के उपदेश। वार्ताकार हैं शंभुनाथ पांडे।
2: भारतवर्ष की तपोभूमि पर ज्ञान का अमृत बांटने वाले भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंड में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल गए। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर एक राजकुमार थे और उनके माता पिता ने उन्हें वर्धमान नाम दिया था। राजा का पुत्र होने के कारण उनके पास कई सांसारिक सुख संसाधन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार और राजघराने को छोड़ अपनी सांसारिक संपत्ति त्याग दी। मानवता की सेवा, उसके दर्द दुख और पीड़ा को खत्म करने के उपाय की तलाश में वे एक भिक्षु बन गए। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य यानी अस्तेय और ब्रह्मचर्य, जो आज भी मानव जाति को समृद्ध जीवन और आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। उन्होंने अनेकांतवाद, स्यादवाद और अपरिग्रह जैसे अद्भुत महाव्रती सिद्धांत दिए। भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था। उनके पहले उपदेश के मुख्य

0: मार्गों में अहिंसा, क्षमा, करुणा और सत्य के साथ साथ चोरी नहीं करने की शिक्षा सम्मिलित थी। भगवान महावीर का आत्मधर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। दुनिया की सभी आत्मा एक सी हैं, इसलिए हम दूसरों के प्रति वही विचार एवं व्यवहार रखें जो हमें स्वयं को पसंद हो। यही महावीर का जियो और जीने दो का सिद्धांत है। उन्होंने अपने संदेश में कहा था कि आत्मा अकेले आती है और अकेले चली जाती है। न कोई उसका साथ देता है, न कोई उसका मित्र बनता है। सब जीवों में आत्मा है, किसी को भी हिंसा न पहुंचाओ। महावीर स्वामी ने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। शांति और आत्मनियंत्रण अहिंसा है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान देना ही अहिंसा है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कोई किसी और पर निर्भर नहीं करता। हर कोई सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास करके देवत्व प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं और वे खुद अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं। खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर है। भगवान महावीर ने अपने उपदेश में कहा कि किसी व्यक्ति के अस्तित्व को मिटाने की बजाय उसे शांति से जीने दें और खुद भी शांति से जीने का प्रयास करें, तभी आपका और सबका कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की आत्मा ही उसकी शत्रु होती है। आपका असली शत्रु आपके भीतर ही है, जो कि क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति और नफरत है। प्रत्येक जीवित व्यक्ति के प्रति दया भाव रखो, क्योंकि नफरत और घृणा करने से स्वयं का विनाश होता है। जैसे आग को ईंधन से नहीं बुझाया जा सकता, बिल्कुल उसी प्रकार जीवित व्यक्ति तीनों लोकों की सारी धन दौलत पाकर भी संतुष्ट नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर हमने कभी किसी के लिए अच्छा काम किया है तो उसे भूल जाएं, और अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो उसे भी भूल जाना चाहिए। खुद से लड़ो, बाहर के शत्रुओं से क्या लड़ना। जो व्यक्ति खुद से लड़ना सीख जाए उसे जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने आप को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। महावीर ने मानव जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कर्म को ही भाग्य माना। उन्होंने कहा कि शिक्षाएं आत्मा की आंतरिक सुंदरता और सद्भाव को दर्शाती हैं। महावीर का अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का संदेश सार्वभौमिक करुणा से परिपूर्ण है। महावीर ने कहा कि जीवित शरीर केवल अंगों और मांस का एकीकरण नहीं है, बल्कि यह आत्मा का निवास है, जिसमें संभावित रूप से पूर्ण बोध यानी अनंत दर्शन, पूर्ण ज्ञान यानी अनंत ज्ञान, पूर्ण शक्ति यानी अनंत वीर्य और पूर्ण आनंद यानी अनंत सुख है। महावीर का संदेश जीवित प्राणी की स्वतंत्रता और आध्यात्मिक आनंद को दर्शाता है।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भगवान महावीर के उपदेश। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:45 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से संगीत में प्रस्तुति। आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड भाग 31।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता के गंगा तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचने का समाचार सुनकर निषाद राजगुह के हर्ष की सीमा न रही। अपने प्रियजनों तथा भाई बंधुओं को एकत्रित कर भेंट देने के लिए फल मूल आदि बहंगियों में भर भर कर वो सदल बल श्री राम से मिलने चला। राम ने उसे आत्मीय के भांति पास बिठाकर उसकी कुशलक्षेम पूछी। निषाद राज गदगद होकर बोला, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। यहां की धरती, धन संपत्ति

घर सभी आपके हैं। मैं तो परिवार के साथ आपका सेवक मात्र हूं। अब कृपा कर हमारे पूर्वे में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। श्री राम ने उत्तर दिया, हे सुजान सखा, तुमने जो कहा वो तुम्हारे स्नेह का द्योतक है, किंतु पिता ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। मुझे 14 वर्षों तक मुनिवेश और व्रत धारण करके उन्हीं सरीखा भोजन करते हुए वन में ही निवास करना है। एक तापस का गांव में रहना उचित नहीं है। श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता का तापस वेश देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम विह्वल हो रहे हैं। वो उन माता पिता की कठोरता से क्षुब्ध हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमारों को वनवास दिया है।

0: नाम सहाय्यार्थम् सप्तचत्वारिंशत् तन्मिथादिकाः आपत्कालीन सहाय्य सामग्र्यः प्रेषिताः।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: राष्ट्रियावत् प्रतिकारबलेन उक्तं यत् नेपालदेशे सहसा आगतेन विनाशकारिणा जलाप्लावेन बिहारोत्तरप्रदेशयोः सीमावर्ति क्षेत्रेषु अद्यावधि कश्चिदपि प्रतिकूल प्रभावः न जातः, तथापि उभयोः राज्ययोः प्रशासनस्य समन्वयेन परिस्थितिं निरन्तरं निरीक्ष्यमाणा अस्ति। राष्ट्रियापद प्रतिकार बलस्य महानिरीक्षक नरेन्द्र सिंह बुंदेला उक्तवान यत् उभयो राज्ययो राष्ट्रियापद प्रतिकार बलस्य 20 दलानि नियोजितानि सन्ति, तेषु बिहारे 9 दलानि अथ उत्तर प्रदेशे च 11 दलानि सन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः उज्बेकिस्तान देशस्य द्विदिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतेः शौकत मिर्जियोयेव इत्यस्य आमन्त्रणे सति ताशकंद नगरं गमिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपतिना मिर्जियोयेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां करिष्यति। अस्याः वार्तायाः उद्देश्यं द्वयोः देशयोः रणनीतिक सहमतिम् इतोऽपि सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमंत्री जनधन योजनायाः अद्य 12 वर्षाणि जातानि, येन देशस्य वित्तीय समावेशन परिदृश्यस्य परिवर्तने महत्वपूर्णं सोपानं चिह्नितमस्ति। 14.5 वर्षे अस्मिन्नेव दिने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना इयं योजना समारब्धा। प्रधानमन्त्री जनधन योजनायाः अन्तर्गतम् अद्य पर्यन्तम् 61 कोट्यधिकाः लेखाः उद्घाटिताः सन्ति, यस्मिन् निक्षेपस्य मूल्यम् आहत्य 17,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, भगिन्योः मध्ये विद्यमानस्य विशेष स्नेह बन्धनस्य पर्व अस्ति यत् अद्य सम्पूर्ण देशे आचर्यते। अस्मिन् अवसरे भगिन्यः स्वभ्रातृणां हस्तमणिबन्धेषु विविधवर्णानि रक्षसूत्राणि बध्नन्ति, अथ च तेषां समृद्धेः, आरोग्यस्य, सुखस्य च कामनां कुर्वन्ति। तदनन्तरं भ्रातरः स्वभगिनीनां रक्षणस्य, सहाय्यस्य च संकल्पं कुर्वन्ति, सहैव ताभ्यः उपहारान् यच्छन्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला च रक्षाबन्धनस्य अवसरे देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रेषितवन्तौ इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि लगभग 1500 लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग भी शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोसेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे।

0: उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चांदी की गुणवत्ता की जांच के लिए 102 जिलों में 341 सिल्वर एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर्स के साथ हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधारित चांदी के हॉलमार्किंग तंत्र का विस्तार किया है। मानक ब्यूरो त्योहारों के मौसम से पहले 25,000 से अधिक चांदी के कारोबारियों को पंजीकृत कर चुका है। पिछले साल सितंबर से ये व्यवस्था शुरू की गई थी और इसके बाद से 77 लाख से ज्यादा चांदी के आभूषणों पर हॉल मार्किंग की जा चुकी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्योहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चलने वाली ये यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालटल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। श्रावण में आयोजित होने वाली 12 दिन की इस यात्रा में श्रद्धालु पुंछ जिले में स्थित बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर जाते हैं। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कलराज स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोट्रानी को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। इससे पहले दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकर से होगा। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the massive flash floods in Nepal have reached 389 as authorities raced against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,500 people missing. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli 1 project as well as 21 people from Tamil Nadu. The minister said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Indian Embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected areas have been disrupted. Mr. Jaiswal said India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. The Ministry of External Affairs has set up a round-the-clock control room in New Delhi to assist people. The control room can be contacted at +91 11 230 88 718, +91 11 230 88 719. For WhatsApp calls and messages, +91 99 68 29 19 88

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महिमा उपाध्याय के गाए कुछ भजन। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्त चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 7:30 मिनट हुए हैं। अब वक्त है कार्यक्रम की तो भरी गुड मॉर्निंग का। गीतो भरी गुड मॉर्निंग में आज मैं हूँ आपके साथ नवीन सक्सेना, बहुत ही खूबसूरत गीतों के साथ। और आज की शुरुआत शायद इससे बेहतर बिल्कुल भी नहीं हो सकती।

उम्मीद है कि आज के इस त्यौहार की आपने तमाम तैयारी कर ली होगी, लेकिन हाँ, फिर भी अगर कुछ बच जाए तो नाराज नहीं होना, क्योंकि आज का दिन नाराजगी का तो बिल्कुल भी नहीं है। साल भर इंतजार रहता है ना आपको, तो फिर आज खूबसूरत तैयार हो जाइए, राखी अपने पर्स में डालिए और अपने भैया की तरफ मुड़ जाइए और देखिए कि आज का दिन कितना खूबसूरत बन पड़ेगा।

चलिए मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं। राखी के मूड से आप थोड़े से रोमांटिक मूड में आ जाते हैं। यदि कि इंसान सबसे अच्छा वही होता है जो आपके दिल में बस जाता है, एंड दैट इज फॉर यू, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो देखने में बहुत अच्छा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कपड़े बहुत अच्छे पहनता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत खूट के बहुत आपको निहारता है। नहीं, इंसान वो इसलिए अच्छा है क्योंकि उसकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, उसके लिए कुछ करने का मन करता है, आपका मन करता है कि वो सामने बैठा रहे और बस यूं ही जिंदगी चलती रहे। इसीलिए वो इंसान आपको बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है।

जिंदगी की ये सबसे अच्छी फीलिंग है जब आपको ऐसा लगता है कि आप किसी के बिना जी नहीं सकते। इसलिए नहीं कि आप फिर उदास होकर बैठ जाएं, बल्कि इसलिए कि देयर इज समवन इन द वर्ल्ड, इस संसार में कोई तो है जो आपके बारे में सोचता है, कोई तो है जिसके बारे में आप सोचते हैं, कोई तो है कि जब भी आप अकेले होते हैं ना तो आप अकेले महसूस नहीं करते। बस दिस इज द फीलिंग, और इसी फीलिंग को लेकर आप चलते रहिए, देखिएगा जिंदगी बहुत खूबसूरत।

जी तो वेरी गुड मॉर्निंग में आज बस इतना ही उम्मीद है कि ये खूबसूरत गीत आपको पसंद आए होंगे। तो एक बेहतर दिन की शुरुआत के साथ मैं इस प्रोग्राम को यहीं क्लोज कर रहा हूं और आपके शुभ दिन की शुभकामनाओं के साथ इजाज़त दीजिए मुझे यानी नवीन को। 8 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
3: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास

0: कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से शेदाम शर्मा।
1: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779813261107। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर

0: चर्चा की। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ सम्पन्न होगी।
1: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
2: 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरनी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
0: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
3: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: केरलम में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती है कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
5: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और सेंट्रल एशिया के देश जो है उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
4: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $2,00,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा।

0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर FIH विश्व कप में पांचवां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। अमर उजाला लिखता है, नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है, गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो, लोकसत्य की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला एआई सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Nishit. Nepal flood toll hits close to 400 as rescue work in top gear is the headline carried by all the leading dailies. Center steps up efforts to bring back Indians stranded in Nepal, says a report in the Asian Age. Prime Minister heads to Uzbekistan SEO summit. Key bilateral talks likely, says the top story in Hindustan Times. Four Naga civilians killed in Manipur ambush, reports the Tribune. 18th BRICS summit set for 12th and 13th of September, says Ministry of External Affairs, according to the Statesman. IPO flood puts appetite to the test as 4.62 lakh crore pipeline bills, says a report in Financial Express. FPIs keep going in August in select picks, reports the Economic Times. And finally, wait for a U.S. green card could stretch to 179 years, writes the Times of India. And with that, it's back to you, Nishit.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods rises to 392, while 1,468 people remain missing on both sides of the border. Center steps up efforts to bring back Indians stranded in Nepal. World's largest financial inclusion initiative, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, completes 12 years today. Festival of Raksha Bandhan being celebrated across the country. 57-day-long annual Amarnath Yatra to conclude in Jammu and Kashmir. Finance Minister Nirmala Sitharaman to be on a 6-day visit to US beginning today. And Indian Grandmaster R. Pragyanandan creates history, becomes the first Indian to win Grand Chess Tour. For details of this stories and more, log on to our website newsonair.gov.in. and news on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा. आदाब. खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी. पहले इस वक्त की खास खास खबरें. नेपाल और तिब्बत के अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की तादाद बढ़कर 392 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानिब 1468 अफराद अब भी लापता हैं. मरकज ने नेपाल में फंसे हुए भारतीय शहरियों को वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं. दुनिया के सबसे बड़े माली शमूलियत के प्रोग्राम प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं. मुल्क भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है. 57 रोजा सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में इख्तिताम पजीर होगी. वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज से अमरीका का 6 रोजा दौरा करेंगी. और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है. वो ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. अब खबरें तफसील से. नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की मजमुई तादाद बढ़कर 392 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानिब 1468 अफराद अब भी लापता हैं. इस कुदरती आफत में हलाक होने वाले 392 अफराद में से 389 नेपाल में, जबकि 3 पड़ोसी इलाके तिब्बत में हलाक हुए हैं. नेपाल के हुकाम के मुताबिक 910 अफराद लापता हैं, जबकि तिब्बत के हुकाम ने बताया कि मजीद 558 अफराद का कोई सुराग नहीं मिल सका है, जिससे सरहद के दोनों जानिब लापता अफराद की मजमुई तादाद 1468 हो गई है. इमदादी कारकुन जिंदा बच जाने वालों की तलाश और दरियाओं के किनारे और दूरदराज आबादी से बहकर आने वाली लाशों को तलाश करने में मसरूफ हैं, ताहम खतरा अभी टला नहीं है. भोटेकोशी दरियाई निजाम के सरचश्मे के नजदीक बनने वाली एक नई रुकावटी झील ने खर्शात पैदा कर दिए हैं कि अगर इसमें शिगाफ पड़ा तो शदीद सैलाब का रैला आ सकता है, जिससे तबाही मजीद बढ़ सकती है और जारी इमदाद कार्रवाइयों में मजीद दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं. नेपाल के सिक्योरिटी एहलकारों ने मुतासिरा जिलों से 800 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है. इस तबाही के बाद भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं. वजारत खारिजा के मुताबिक नेपाल में मौजूद 290 भारतीय शहरियों से राबता नहीं हो पा रहा है. भारत उनके बारे में मालूमात हासिल करने और उनके बचाव के लिए फौरी कोशिशें कर रहा है. लापता भारतीय शहरियों में मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले पनबिजली प्रोजेक्टों के कारकुन और सयाहों के ग्रुप भी शामिल हैं. वजीर खारिजा एस जयशंकर ने कहा है कि सैलाब से मुतासिरा इलाकों में फंसे

0: भारतीय शहरियों की मौजूदा सूरत हाल और उनकी खैरियत मालूम करने के लिए फौरी कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि वजारत खारजा नेपाल के हुकाम, दीगर वजारतों, रियासती हुकूमतों, टूर ऑपरेटर्स और मुतालिका इदारों के साथ राबते में हैं। वजारत खारजा ने लापता अफराद का सुराग लगाने और उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल करने में मदद की खातिर 24 घंटे काम करने वाला एक कंट्रोल रूम भी कायम किया है। भारत ने अब तक 84 भारतीय शहरियों को बचाया है। इनमें त्रिशूली वन रन ऑफ द रिवर पनबिजली प्रोजेक्ट के 63 वर्कर्स और तमिलनाडु के 21 अफराद शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह से भी बातचीत की और उन्हें भारत की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुकम्मल इमदाद का यकीन दिलाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। वो वस्ती एशियाई मुल्क के 2 रोजा दौरे पर जाएंगे। वजीर आजम उज़्बेकिस्तान के सदर शवकत मिर्ज़ियोयेव की दावत पर ताशकंद का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान वजीर आजम सदर मिर्ज़ियोयेव के साथ वफ्द सतह की बातचीत करेंगे ताकि दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाया जा सके। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये उज़्बेकिस्तान का चौथा दौरा होगा। वो इससे कबल 2015, 2016 और 2022 में इस वस्ती एशियाई मुल्क का दौरा कर चुके हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत का दौरा कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में वस्ती एशियाई उमूर के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम और उज़्बेकिस्तान के दरमियान होने वाले मुसलसल दौरे इस बात को जाहिर करते हैं कि भारत के लिए उज़्बेकिस्तान किस कदर अहमियत का हामिल है।
2: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज़्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
1: दौरे के दौरान वजीर आजम ने मोदी और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल राबते, तवानाई, तालीम और आवाम से आवाम के रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन का जायजा लेंगे और आइंदा के लिए लाहे अमल मुरतब करेंगे। दोनों रहनुमा विकसित भारत 2047 और उज़्बेकिस्तान 2030 के मुश्तरका तरक्याती विजन को आगे बढ़ाने के बारे में भी अपने ख्याल का तबादला करेंगे। ताशकंद से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्बार।
0: प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं जो मुल्क के माली शमूलियत के मंजरनामे को तब्दील करने की समत एक अहम संग मील है। इस स्कीम का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में आज ही के दिन किया था। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं जिनमें मजमुई तौर पर 3,17,000 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा है। दुनिया की सबसे बड़ी माली शमूलियत की इस पहल ने तमाम भारतीय शहरियों के लिए बैंककारी खिदमात तक रसाई को मजीद आसान बनाया है। फी खाता औसत जमा रकम 5,356 रूपये है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 78% खाते देही यानी शहरी इलाकों में खोले गए हैं जबकि तकरीबन 56% खाते खवातीन के हैं। जनधन खाताधारों को 41 करोड़ से ज्यादा रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम ने लाखों अफराद खुसूसन मुआशरे के महरूम और पसमानदा तबकात को बैंककारी और माली खिदमात तक रसाई फराहम करके उनके समाजी और इक्तिसादी हालात को बेहतर बनाने में मदद दी है। जनधन आधार मोबाइल JAM की तसलीस जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना मरकजी हैसियत रखती है माली इमदाद की बराह रास्त और बगैर किसी रुकावट मुंतकली का एक मुअस्सर निजाम साबित हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहल के नतीजे में भारत का माली शमूलियत का इशारिया 2018 में 53.9 से बढ़कर 2026 में 67 हो गया है जो कर्ज, बीमा, बचत और डिजिटल अदायगियों तक लोगों की बढ़ती हुई रसाई को जाहिर करता है। दुनिया की सबसे बड़ी माली शमूलियत की स्कीम के तौर पर जनधन योजना लाखों महरूम शहरियों के लिए बैंककारी खिदमात तक रसाई को नई शक्ल दे रही है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्बार।
0: वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज से अमरीका का 6 रोजा दौरा करेंगी। अमरीका के अपने दौरे के दौरान वो शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वजीर खजाना शिकागो में मुमताज सरमायाकारों के साथ एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी और प्राइवेट सेक्टर की सरकर्दा कंपनियों के CEOs, सुदूर और आला नुमाइंदों से बातचीत करेंगी। शिकागो में मुंतखब कंपनी

0: के सीईओज और आला क्यादत के साथ दोतरफा और बिलमुशाफा मीटिंगें भी होंगी। इन मीटिंगों में भारत में सरमायाकारी के मौके, इक्तिसादी हालात और भारत और अमरीका के दरमियान कारोबारी और सरमायाकारी शराकत दारी को मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और कनाडा के मालियात और कौमी महसूलात के वजीर फ्रांसुआ फिलिप शैम्पेन ने कनाडा के टोरंटो में भारत कनाडा वज़राए खजाना माली और इक्तिसादी डायलॉग मुकम्मल कर लिया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: भाइयों और बहनों के दरमियान खुसूसी प्यार और मोहब्बत भरे रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और भाई के लिए दुआएं करती हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहनों की हिफाजत और उनकी मदद का अहद करते हैं और उन्हें तहाइफ पेश करते हैं।

0: रक्षाबंधन का त्यौहार आज उज्जैन के आलमी शोहरत याफ्ता महाकालेश्वर मंदिर में खुसूसी मजहबी रिवायात के साथ मनाया जा रहा है। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को खुसूसी तौर पर तैयार करता राखी पेश की गई। जम्मू और कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पवित्र गुफा के मुकद्दस मकाम पर रिवायती छड़ी मुबारक की तकरीब के साथ बाजाब्ता तौर पर इख्तिताम पजीर हो गई। तफसील हमारे नामा निकार से।
1: 3 जुलाई को शुरू हुई श्री अमरनाथ जी यात्रा 57 रोज तक पहलगाम और बालतल के रास्तों से जारी रहने के बाद आज इख्तिताम पजीर हो रही है। इस बरस 4,80,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा पर हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को मौसम खराब होने के बाद यात्रा मुअत्तल की गई थी, ताहम छड़ी मुबारक को रिवायत के मुताबिक गुफा तक ले जाया जा रहा है। छड़ी मुबारक महान दीपेंद्र गिरी की सरबराही में कल पंचतरनी पहुँचाई गयी और आज इसको गुफा तक ले जाया जा रहा है, जहाँ पूजा सभा का इनेकाद होगा। श्री मुबारक की रिवायती तकरीब के साथ ही इस बरस की सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज इख्तिताम पजीर होगी। खबरों के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: केरलम का सबरीमला मंदिर ओनम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद कर दिया जाएगा। ओनम के दौरान मंदिर में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद की आमद देखी गई। इस साल तिरुओनम दिन के मौके पर ट्रेवनकोर देवास्वम बोर्ड ने सीधे ओनम सियाफत का इनेकाद किया। सबरीमला मंदिर माहाना पूजा के लिए अब 16 सितंबर को शाम 5 बजे दोबारा खुलेगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर जीतकर तारीख रकम की है। वो ये मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। आर प्रज्ञानंदा ने कल रात अमरीका के सेंट लुई में खेले गए फाइनल में दिफाई चैंपियन फाबियानो कारुआना को 15-13 से शिकस्त देकर जबरदस्त वापसी की। प्रज्ञानंदा ने आखिरी दिन कारुआना से 6 पॉइंट्स पीछे शुरुआत की, लेकिन बाद में उन्होंने दोनों रैपिड गेम्स जीतकर सबकत हासिल कर ली। इसके बाद उन्होंने मुकाबले पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और 4 ब्लिट्स गेम्स को 15-13 से जीत लिया। इस तरह वो $2,00,000 का पहला इनाम और अगले साल के ग्रैंड चेस टूर में जगह बनाने में कामयाब रहे। भारत के वेलावन सेंथिल कुमार कल रात सेमीफाइनल में अपने हमवतन खिलाड़ी वीर चोटरानी को एक बेहद दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से शिकस्त देकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन के फाइनल में पहुंच गए। दोनों भारतीय खिलाड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे थे। चोटरानी ने मिस्र के मोहम्मद एल शेरबीनी को 3-1 से शिकस्त दी थी, जबकि वेलाविन ने मलेशिया के आइन याओ को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से हराया था। भारत की खवातीन हॉकी टीम ने कल नेदरलैंड्स में एम्स्टलफेन में 5वें मकाम के लिए खेले गए मैच में जर्मनी को 3-1 से तारीखी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही एफआईएच आलमी कप में भारत की मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं।

0: जमीर रजवी।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने नेपाल में सैलाब से होने वाली तबाही से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की इस हवाले से शह सुर्खी है कि हलाकतों की तादाद 300 से तजावज़ कर गई, 1500 से ज्यादा अफराद अब भी लापता, सैकड़ों गैर मुल्की सयाहों से राबता मुनक़ता, 250 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है कि इसरो ने जारी की नेपाल में आए तबाहकुन सैलाब से मुतालिक तस्वीर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से मुतालिक आइंदा दौरे की खबर को अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 4 रोजा गैर मुल्की दौरा कल से। रोजनामा प्रताप ने इस खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है कि वजीर आजम ने भारत से ओलंपिक 2036 खेलों की तैयारियां अभी से शुरू करने पर जोर दिया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। नेपाल और तिब्बत के अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की तादाद बढ़कर 392 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानब 1468 अफराद अब भी लापता हैं। मरकज ने नेपाल में फंसे हुए भारतीय शहरियों को वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। दुनिया के सबसे बड़े माली शमूलियत के प्रोग्राम प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं। मुल्क भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। 57 रोजा सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में इख्तिताम पजीर होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज से अमरीका का 6 रोजा दौरा करेंगी। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग कोमल ऋषभ असावरी में ध्रुपद गायन। कलाकार हैं ममता त्रिपाठी।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा में अभी आप सुन रहे थे ममता त्रिपाठी से गायन। आज आपने सुना राग कोमल ऋषभ आसावरी में ध्रुपद गायन। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम और वहां की जीवन शैली। वार्ताकार हर्षिता विश्वास।
1: आज हम बात करेंगे उस व्यक्तित्व की जिसने सत्य और अहिंसा को केवल अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया बल्कि इन्हें एक सामाजिक और राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। जब हम महात्मा गांधी का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी और स्वतंत्रता आंदोलन जैसे शब्द उभर आते हैं, लेकिन गांधी जी के विचारों को समझने के लिए केवल उनके आंदोलन को जानना पर्याप्त नहीं है। गांधी जी के विचारों का वास्तविक प्रयोग जहां हुआ वह था उनका आश्रम जीवन। महात्मा गांधी ने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से की। वहां पर उन्होंने दो आश्रम स्थापित किए जिनका नाम था फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फार्म। गांधी जी के लिए आश्रम केवल रहने की जगह नहीं थी, वह एक प्रयोगशाला थी जहां वह ये देखना चाहते थे कि क्या सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम, समानता और श्रम और सेवा जैसे सिद्धांतों पर आधारित जीवन वास्तव में जिया जा सकता है। और इसी कारण गांधी जी के आश्रमों को समझना गांधी जी को समझने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। गांधी जी का आश्रम जीवन भारत से नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां उन्होंने भारतीयों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव और अन्याय को करीब से देखा। इसी संघर्ष के दौरान उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के प्रयोगों को विकसित किया। 1904 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के नटाल क्षेत्र में फिनिक्स सेटलमेंट आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स में रहने वाले लोगों से अपेक्षा

अपेक्षा की जाती थी कि वे सामूहिक जीवन जिए, श्रम करें और एक दूसरे की सहायता करें। इसके बाद 1910 में जॉन्सबर्ग के पास टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना हुई। टॉलस्टॉय फार्म में गांधी जी के समर्थक हरमन कैलान बाग ने गांधी जी और लगभग 70 से 80 लोगों को रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराया। यह भी एक महत्वपूर्ण बात थी। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। खाना बनाना हो, सफाई करना हो, खेती करना हो या शौचालय साफ करना हो, आश्रमवासी स्वयं काम करते थे। यही गांधी जी की जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण संदेश था। श्रम से सम्मान मिलता है और श्रम में कोई ऊंच नीच नहीं होती। भारत लौटने के बाद उन्होंने दो आश्रम स्थापित किए, साबरमती आश्रम और सेवाग्राम आश्रम। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 25 मई 1915 को उन्होंने अहमदाबाद के कोचरम में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। लेकिन जैसे जैसे आश्रम की गतिविधियां बढ़ी, खेती, पशुपालन, खादी और अन्य कार्यों के लिए अधिक जगह की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए 1917 में आश्रम को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया। यह आश्रम आगे चल के प्रसिद्ध हुआ साबरमती आश्रम के नाम से। अब सवाल यह है कि आखिर गांधी जी के आश्रम में जीवन कैसा होता था? गांधी जी का आश्रम किसी सामान्य हॉस्टल या निवास स्थान की तरह नहीं था। यहाँ रहने वाले लोगों को कुछ निश्चित सिद्धांतों का पालन करना पड़ता था। सुबह जल्दी उठना, प्रार्थना करना, अपने दैनिक काम स्वयं करना, सामूहिक श्रम करना, सादा भोजन करना, चरखा चलाना, पढ़ना लिखना और समाज सेवा करना, यह आश्रम के जीवन का हिस्सा था। गांधी जी का मानना था कि अगर व्यक्ति अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहेगा तो वह वास्तविक अर्थों में आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इसलिए आश्रम में रहने वाले व्यक्ति अपने कपड़े धोने से लेकर सफाई तक का काम स्वयं करते थे। यहाँ तक कि शौचालय की सफाई भी आश्रमवासी स्वयं करते थे। गांधी जी स्वयं भी इसमें पीछे नहीं रहते थे। उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, जिस काम को हम छोटा समझते हैं, वही काम समाज में किसी दूसरे व्यक्ति से करवाना सामाजिक असमानता को जन्म देता है। आश्रम के प्रमुख नियम। गांधी जी ने आश्रम जीवन के लिए कई नियम निर्धारित किए थे। इनमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, स्वार्थ पर नियंत्रण जैसे नियम शामिल थे। भारत में गांधी जी ने शारीरिक श्रम को भी आश्रम के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। आश्रम में रहने वालों से अपेक्षा थी कि वह अपने शरीर और मन दोनों पर नियंत्रण रखे। भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाए, इसलिए आश्रम का भोजन सादा होता था। मसालेदार और विलासितापूर्ण भोजन से बचने की कोशिश की जाती थी। गांधी जी मानते थे इंद्रियों पर नियंत्रण व्यक्ति को आत्मसंयम की ओर ले जाता है। स्वदेशी और चरखा। आश्रम के जीवन में चरखे का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। गांधी जी के लिए चरखा केवल धागा बनाने का साधन नहीं था, चरखा था आत्मनिर्भरता का प्रतीक। उस समय भारत विदेशी कपड़ों पर निर्भर था। गांधी जी चाहते थे भारतीय स्वयं कपड़ा बनाए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। सेवाग्राम आश्रम, सेवा का गांव। गांधी जी के जीवन का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव था सेवाग्राम। और 1930 में गांधी जी ने भारत के अलग अलग हिस्सों में यात्रा की और बाद में मध्य भारत में अपना मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया। 1934 में वह वर्धा पहुंचे। फिर 1936 में उन्होंने वर्धा के पास सेवागांव नामक गांव में अपना निवास बनाया। बाद में इसका नाम रखा गया सेवाग्राम, यानी सेवा का गांव। यहाँ गांधी जी लगभग अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक रहे। सेवाग्राम का वातावरण साबरमती की तुलना में और भी ग्रामीण था। यहाँ गांधी जी का जीवन गांव के सामान्य लोगों के और भी करीब था। छोटे छोटे घर, मिट्टी का वातावरण, सादगी, चरखा, प्रार्थना और सामूहिक

0: सामुदायिक श्रम यह सब सेवाग्राम की पहचान बन गया। देश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श और निर्णयों का केंद्र भी सेवाग्राम बना। चार आश्रम एक ही विचार। अगर गांधी जी के आश्रमों को एक साथ देखें, तो हमारे सामने चार महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं। फिनिक्स सेटलमेंट 1904, दक्षिण अफ्रीका। टॉलस्टॉय फार्म 1910, दक्षिण अफ्रीका। साबरमती आश्रम 1915 में कोचरब से शुरू होकर 1917 में साबरमती पहुंचा और सेवाग्राम आश्रम 1936 वर्धा। स्थान अलग थे, परिस्थितियां अलग थी, लेकिन उद्देश्य एक था, सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता, श्रम और सेवा पर आधारित जीवन। आश्रम केवल भवन नहीं था, गांधी जी के लिए आश्रम का अर्थ चार दीवारें नहीं थी, आश्रम एक विचार था, एक ऐसा विचार जहां व्यक्ति पहले स्वयं को बदलने का प्रयास करे और समाज को बदलने की दिशा में आगे बढ़े। गांधी जी मानते थे कि अगर हम समाज में समानता चाहते हैं तो शुरुआत अपने घर से करनी होगी। अगर हम स्वच्छ भारत चाहते हैं तो स्वयं सफाई करनी होगी। अगर हम आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं तो अपने हाथों से काम करना होगा। अगर हम अहिंसक समाज चाहते हैं तो हमें अपने व्यवहार में अहिंसा अपनानी होगी। और अगर हम सत्य की बात करते हैं तो हमें कठिन परिस्थिति में भी सत्य का साथ देना होगा। यही गांधी जी के आश्रम का सबसे बड़ा संदेश था।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम और वहाँ की जीवन शैली। वार्ताकार हर्षिता।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का यह अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

राखी तंदा दा त्यौहार, राखी तंदा दा। अजीत कौर ते साथियां दी आवाज़ विच हुणे तुसी ए रखड़ी गीत सुन रहे सी। ते आओ हुण सुनदे हां कुलदीप माणक दी आवाज़ विच ए गीत। गीतकार ने पाली दाते वालिया।

मामा मामा मामा माँ जन्नत दा परछावा, माँ जन्नत दा परछावा। हरभजन मान ते जसपिंदर नरूला दी आवाज विच हुणे तुसी इह गीत सुन रहे सी। आस करदे हां कि अज दा पंजाबी प्रोग्राम तुहानू चंगा लग्या होवेगा। इस दे नाल ही प्रोग्राम दा वेला हुण खत्म हुंदा है। बलविंदर नू इजाजत दिओ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी महक, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं। नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्ति अभी भी लापता हैं। बचावकर्मी नदी के किनारों और अलग अलग पड़ी बस्तियों में जिंदा लोगों की तलाश कर रहे हैं और शवों को निकाल रहे हैं। अभी क्षेत्र में खतरा टला नहीं है। भोटे कोशी नदी प्राणी के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल को बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। श्रीलंका की नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक संबंधों को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोसेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा की शाश्वत समृद्धि को चिन्हित करने के लिए श्रावण पूर्णिमा को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भारत के ज्ञान, विचार और रचनात्मकता का निरंतर वाहक रही है और इसका सकारात्मक प्रभाव आज भी कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने रक्षाबंधन के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने

0: कामना की है कि खुशियों का ये त्योहार प्यार, स्नेह और एकजुटता के बंधन को मजबूत करे और सभी को दया, सद्भाव और आपसी सम्मान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने सभी के लिए खुशी, शांति और समृद्धि की भी कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि रक्षाबंधन का त्यौहार सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। राजस्व सूचना निदेशालय ने असम और मिजोरम में दो तलाशी अभियानों में 76 किलोग्राम ड्रग्स संबंधी दवाएं जब्त की हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में आंधी तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा और बिजली कड़कने की आशंका तथा ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुद्दुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में भी तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. The death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods has risen to 392, while 1,468 people remained missing on both sides of the border. Nepal authorities reported 910 people missing, while officials in Tibet said another 558 people remain unaccounted for, taking the total number of missing people on the two sides of the border to 1,468. Nepalese security personnel have evacuated more than 800 people from affected districts. The catastrophe has triggered a major rescue effort by India, with External Affairs Ministry saying 290 Indian nationals in Nepal remain uncontactable. New Delhi is making urgent efforts to ascertain their whereabouts and coordinate the rescue with the missing Indians, including hydropower workers and tourist groups from different states. External Affairs Ministry has also established a 24-hour control room to assist with tracing and evacuation efforts. India has so far rescued 84 nationals. This includes 63 workers from the Trishuli 1 run-off river hydroelectric project and 21 people from Tamil Nadu. Prime Minister Narendra Modi also spoke to Nepal Prime Minister Balendra Shah and assured him of India's full humanitarian assistance. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has completed 12 years today, marking a significant milestone in transforming the country's financial inclusion landscape. The scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi on this day in 2014. Under the scheme, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. Raksha Bandhan, the festival of special bond between brothers and sisters, is being celebrated today across the country.

0: moved an orange color warning for heavy to very heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over Odisha and Bihar today. The IMD has forecast heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Jharkhand during the day. Indian Grandmaster R. Pragyananda created history becoming the first Indian to win the Grand Chess Tour after staging a stunning comeback to defeat defending champion Fabiano Caruana 15-13 in the final at St. Louis in US last night. In squash, India's Vellavan Senthil Kumar stormed into the final of the PSA Budapest Open after a thrilling 3-2 victory over compatriot Veer Chotrani in the semi-finals last night. Vellavan will now face world number 55 Balázs Farkas of Hungary in the final tonight. US President Donald Trump has signed an executive order directing that Lake Ontario be renamed Lake America amid rising trade tensions between the US and Canada. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ
2: यह आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 10:10 और पूरे 20 सेकंड हो चुके हैं और ये समय है ईमेल पर आधारित आपकी पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। सबसे पहले आपको बताते हैं अपना ईमेल आईडी जिस पर आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना संदेश और अपनी पसंद के गीत के साथ भेजना है। तो नोट कीजिए, हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। और आज के इस सफर में मैं हूं आपका हम सफर, आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। और दोस्तों, ये जैसे ही इस कार्यक्रम का समय होता है आपके ढेर सारे ईमेल हमारे पास आने लगते हैं और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज है भाई बहनों के अटूट प्यार का दिन, रक्षाबंधन का त्यौहार। और मुझे उम्मीद है कि इस समय बहुत सारे लोगों ने राखियां बंधवा ली होंगी या फिर वो जाने की तैयारी में हैं। तो क्यों ना आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने पहले संदेश से करते हैं और साथ ही आपको सुनवाते हैं वो गीत जो हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज राखी स्पेशल है तो क्यों ना हमें राखी का गाना। बिल्कुल, मैं जैसा कह रहा था, लिखते हैं, नमस्कार जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। रक्षाबंधन त्यौहार की अनंत शुभकामनाएं सिद्धार्थ जी और आकाशवाणी के पूरे परिवार को और साथ ही जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और सारे लोगों को। बिल्कुल, आपका आपकी जो शुभकामनाएं हैं वो हमने लोगों तक पहुंचा ली और खुद भी ले ली। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ ही हमारे पास संदेश जो है वो लगातार राजेश वर्मा जी का आया है। मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा, पीहू लिखते हैं कि रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं को और राखी का कोई भी गीत सुनवा दें। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हमें लिखते हैं प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा। तो चलिए देर क्यों करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की राखी के इस गीत के साथ।

जी हाँ दोस्तों, आज की इस सफ़र में मैं हूँ आपका हम सफ़र सिद्धार्थ सिंह। और आपको याद है ना कि कौन सी ईमेल आईडी पर आपको राखी से रिलेटेड कोई भी संदेश है वो भेजना है। और हमारा पता है ip radio delhi @gmail.com। तो स्वीकार कीजिए सिद्धार्थ का नमस्कार।

जी हाँ, ये प्यार का धागा है जो बहना ने भाई की कलाई पर बांधा है, और या टूट बंधन ही तो है। और ये एक ऐसा दिन है जब आप अपने बहन के लिए ये दिन आप डेडिकेट कर सकते हैं। और मैं तो ये कह रहा था कि आप कितनी भी दूर हो, ट्रैफिक कितना भी हो, लेकिन प्लीज़ आलस मत करिएगा और आज अपनी बहन के पास थोड़ा सा वक्त निकाल कर ज़रूर जाइएगा। और यही लिखते हैं कि हार्दिक नमस्कार, अभिनंदन, कार्यक्रम आपकी पसंद में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारी पसंद रक्षाबंधन का कोई भी गीत सुनवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल, अपनी बहनों को डेडिकेट कर रहे हैं आज का दिन। बिल्कुल, इस आपकी पसंद पर हमने रक्षाबंधन का ये गीत सुनवाया। और ये लिखते हैं हमें गाँव चौधरी वास हरियाणा से, मांगेराम, ऋतु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार। जी हाँ, और लगातार आपके संदेश फ्लैश हो रहे हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और लिखते हैं कि प्रिय होस्ट सिद्धार्थ जी नमस्कार, प्लीज प्लीज प्लीज किसी भी 1 2 3 4 5 प्लीज किसी भी प्यारे से राखी के गीत में मेल पढ़ें। जी थैंक यू सो मच, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, विना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, डब्बू सम्राट, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान खुराना कह रहे हैं कि रक्षाबंधन के गीत सुन रहे हैं और आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो हमें भी क्या बात है, हमें भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और ये सारे गीत सुनवा कर। क्यों ना अच्छा लगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो त्यौहार है ना, सच में ऐसा है कि इतना पवित्र त्यौहार है। भाई बहन की बात होती है तो कहीं ना कहीं एक शरारत भी होती है और वो सारी चीज़ें याद आने लगती हैं।

हम बचपन में करते थे। और देखिए बैकग्राउंड में तो हमने प्ले कर ही दिया है, और अरे ये लिखते हैं, ये आज इस गाने का दिन है, मैं आपसे कहूँगा, लिखते हैं कि गीत फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। जी मेरी बहना भी एक हजारों में ही है। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा, गायक किशोर कुमार, संगीत राहुल देव बर्मन, बिल्कुल बिल्कुल हम ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। ये पसंद है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शीख मूसा भाईचान और बहुत सारे साथी इस समय कार्यक्रम को मिलकर सुन रहे हैं। और इसके अलावा हमारे अगले श्रोता लिखते हैं रमेश कुमार जी, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, गुड्डू जी, हाँ आपकी भी इसी गाने की फरमाइश थी, हमें पता था इसलिए हम ये गाना चला चुके हैं। और लिखते हैं कि एक संदेश, सतीश हनेजा जी का संदेश आया सच में दिल को छू लेने वाला, क्योंकि हमेशा से ऐसा संदेश वो भेजते हैं। लिखते हैं कि रक्षाबंधन, लिखते हैं कि रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर राखी बांधने और मिठाई खिलाने का त्यौहार नहीं है, ये उस रिश्ते का उत्सव है जिसमें बचपन की शरारतें, छोटी छोटी नोकझोंक, अनगिनत यादें और एक दूसरे के लिए दिल में छिपी गहरी चिंता होती है। भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है जहाँ प्यार हमेशा शब्दों में नहीं कहा जाता, लेकिन जरूरत पड़ने पर सबसे पहले साथ खड़ा वही होता है। बहन की रक्षा का अर्थ केवल उसकी मुश्किलों से बचाना नहीं, बल्कि उसकी इज्जत, स्वतंत्रता, सपनों और आत्मसम्मान की रक्षा करना भी है। और बहन भी भाई के सुख दुख में उसका हौसला बनकर उसके जीवन को मजबूत करती है। ये कहना है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमल जनेजा।

जी हाँ दोस्तों, आपके लगातार संदेश हमारे पास आ रहे हैं और जिस तरीके से आपके संदेश आ रहे हैं और हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं इस समय कि हमारा जो अगला संदेश आया है, लिखते हैं कि राखी के धागे में प्यार की मिठास रहे, हर रिश्ते में खुशियों का एहसास रहे, हर रिश्ते में खुशियों का एहसास रहे। सिद्धार्थ जी, आपको रक्षाबंधन की बधाई, आपकी आवाज़ यूं ही दिलों के पास रहे। जी हाँ, हमारी आवाज़ आपके दिल के पास ही रहेगी। लिखते हैं फिल्म रक्षाबंधन पर कोई गीत सुनवाइए। भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन ने इस गीत की फरमाइश की है। इसके अलावा हमारा अगला संदेश है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरडी से। लिखते हैं मीना, तेजस, जया, हर्षिता, ये लिखते हैं कि राखी का कोई भी गीत सुनवाएं। और इसके बाद लिखते हैं कि रेशम की डोरी से, बिल्कुल अभी हमने आपको सुनवाया, बहना ने भाई की कलाई पे, खेला बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का ने हमें मैसेज भेजा है। इसके अलावा हरजिंदर सिंह भाटिया जी हमें मैसेज कर रहे हैं। ये क्या मैसेज कर रहे हैं, ये लिखते हैं कि इनको कार्य

बहुत पसंद आ रहा है। आरजे सिद्धार्थ आपको ढेर सारा प्यार और नमस्कार, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप किसी भी तरह आज आप अपनी बहनों से मिलने जरूर जाएं, क्योंकि ट्रैफिक, बहुत से लोग बहाने बनाते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक का बहाना नहीं बनाना है। आज का दिन एकदम किसी की बात नहीं सुननी है और सीधे सीधे अपनी बहन के पास पहुंच जाना है। और देखिए, मैं भी आपको बता दूं कि मैंने भी राखी बंधवाई है और अभी मेरा भी प्रोग्राम है। मेरी बहन का बार बार फोन आ रहा है कि कब आओगे कब आओगे, तो हम बिल्कुल उसको निराश नहीं करेंगे, अब से थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे अपने परिवार के पास, अपनी बहन के पास। और हमारे पास अगला संदेश आया है दर्पण रेडियो श्रोता संघ मानवेड़ा रोड नागपुर से। देवेंद्र भटकर लिखते हैं, जब खुदा ने दुनिया को बनाया होगा एक बात से जरूर घबराया होगा, कैसे रखूंगा ख्याल इतनी बहनों का, तब उसने सबके लिए एक भाई बनाया होगा। जी हाँ, ये जो आपका प्यारा सा संदेश आया है, और कहते हैं कि हर बहन को आज अपनी, और आज एक खास खास एक राखी उन लोगों के लिए भी जो बॉर्डर पे हमारे, जो हमारे सैनिक बॉर्डर पे हैं और अपनी बहनों के पास नहीं आ पाए हैं, उनकी बहन की ओर से ये गीत मैं डेडिकेट कर रहा हूँ अपने सभी फौजी भाइयों को। और आप इस गीत का आनंद लीजिए।

जी हाँ चंदा रे, मेरी बहना से कहना कि भाई, बहन भाई को याद कर रही है। और बहुत सारे इस समय हमारे साथ इस प्रोग्राम में लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारी बहनें जुड़ रही हैं, और सब प्यारे प्यारे संदेश भेज रहे हैं कि किस तरीके से लोग

भाई बिल्कुल, हम आपको राखी के ही गीत सुनवा रहे हैं। हमारे अगले जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं, बाबू शिवा आपकी पसंद फरमाइश प्रोग्राम में, ये कहते हैं कि रक्षाबंधन का कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। और इन्होंने बहुत सारे हमारे जो एक ओंकार टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा लिखते हैं कि बहुत सारे जो ऐसे गीत हैं जो ये सुनना चाहते हैं और इनको बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं, आपको ढेर सारे हम आपको गीत सुनवा रहे हैं। और आज का दिन बिल्कुल राखी का दिन है, तो आपको राखी से रिलेटेड गीत ही सुनवाएंगे। और

रेशम की डोरी से ये संसार बांधा है। ये एक डोरी नहीं है बल्कि एक अटूट बंधन है, भाई और बहन के प्यार का ये अटूट बंधन है। और हमारे अगले श्रोता लिखते हैं रविंद्र मोहनदास जी, कोई भी गीत सुना दें। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी की ये फरमाइश है। इसके अलावा हमारे पास अगली फरमाइश ये भेज रही है अमृतसर से आशा जी, कहती हैं कि इनको ये त्यौहार बहुत पसंद है और काफ़ी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं ये जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। इनको अपने परिवार की याद आती है क्योंकि कहते हैं कि अपने घर को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत बड़े परिवार से आते हैं तो शायद कहीं ना कहीं हम सभी मिस करते हैं। ये आपकी ही नहीं आशा जी, हम सबकी कहानी है, हम सबकी बात है। और इसके अलावा हमारे पास नागलोई से टप्पू जी लिखती हैं कि ये आज वो राखी पे अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें याद लिखते हैं कि द्रौपदी ने कृष्ण को बांधी थी जो डोरी, वो थी सबसे पावन और सच्ची जोड़ी। और लिखते हैं कि जब भी आई बहना पर कोई भारी विपदा, दौड़ आए मोहन तजकर अपनी संपदा, वही समर्पण और वही गहरा विश्वास लाता है ये त्योहार दिलों के पास, युग बदले पर अमर रहा ये पावन नाता, भाई हमेशा बहन का रक्षक कहलाता। जी हाँ, सत्य प्रकाश सनोटिया रोहड़ी दिल्ली से लिखते हैं ये प्यारा सा संदेश हमको। और बिल्कुल आपकी ये बात से हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि ये एक ऐसी बात है कि जो हर भाई के मन में, हर बहन के मन में अपने भाई के लिए है। और लिखते हैं कि आरजे सिद्धार्थ बड़ा ही सुंदर गीत सुना रहे हैं सिद्धार्थ सर, ओके हम कार्यक्रम से चिपके हुए हैं, कोई भी गीत रक्षाबंधन का आप और भी हमें सुनवा दें। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी जी का ये संदेश आया है भाई बहन के प्यार पर, तो बिल्कुल आपके संदेशों पर हमारी नजर है। इसके अलावा कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी और हिमांश हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपकी पसंद पर हम ये गीत प्ले कर रहे हैं।

जी हाँ, आज ये गीत जितने भी हैं रक्षाबंधन के, कहीं ना कहीं एक परिवार को जोड़ते हैं। हमारे साथ एक श्रोता हैं, लिखते हैं कि आदरणीय प्रसारक महोदय जी, आपको हमारी ओर से प्यार भरा आदाब नमस्कार, हमें किसी भी सदाबहार गीत में शामिल कीजिए। लिखते हैं मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही, मेराज जहाँ, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। जी हाँ, हमें भी आपके जब मैसेजेस आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी और बलवीर हमें लिखते हैं, किसी भी गीत में हमें शामिल करें। बिल्कुल, हमने आपको शामिल किया है। और सिद्धार्थ गुंडाने, आपका और हमारा नाम तो कॉमन हो गया सिद्धार्थ जी, तो ये अर्चना गुंडाने, प्रणय कुमार प्रसिद्धि, प्रतिभा गुंडाने, हिरामण शेंडे हमें ये मैसेज लिखते हैं, सब प्रेम आप सभी को नमस्कार, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं आप प्रेषित कर रहे हैं आपकी, बिल्कुल। और आपकी पसंद पे हम अगला गीत सुनवाते हैं आप।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
5: दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद और हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर आधारित फिल्मी गीत। और आज बात हो रही है परिवार की, फैमिली की, रक्षाबंधन की और बहुत सारी बातें जो आप हमें लिखकर भेज रहे हैं। और लिखते हैं कि जो भाई बहन का प्यार है वो अनमोल है और इस अनमोल प्यार के लिए हमें जो संदेश भेजा है, लिखते हैं कि एयरपोर्ट रोड वंदनगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक, संजना, स्वाति और कुमारी, लड्डू चौधरी, देविका जी। ये कहते हैं कि कोई भी गीत सुनवा दीजिए। और इन्होंने लिखा है कि रक्षाबंधन की सबको शुभकामनाएं दी हैं। मैं तो यही कहूँगा कि रिश्तों की डोर में बंधा है प्यार का संसार, भाई की

कलाई पर सजे बहन का विश्वास अपार। ये यूं कहें कि राखी का धागा नहीं, ये प्यार का पैगाम है, भाई बहन के रिश्ते का सबसे खूबसूरत नाम है। और क्यों ना हो, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है, जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं भाई और बहनों के बीच, हम साथ साथ बड़े होते हैं, हम एक साथ एक एक चीज़ों के लिए हर सीक्रेट शेयर भी तो करते हैं। कई बार ऐसे भाई बहन भी होते हैं जो चुपचाप दीदी को या भैया को वो बातें बता देते हैं और बोलते हैं पापा मम्मी को मत बताना, है ना, ऐसा होता है। तो हरियाणा से अंकित, मोनी, प्रिंस, सीताराम और साहिल भाई हमसे जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं कि इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। और एक और संदेश है, लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सिद्धार्थ जी, नमस्कार जी, एनी सॉन्ग प्लीज, थैंक्स, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, हैप्पी रक्षाबंधन। स्वीट एंड शॉर्ट मैसेज, जी हाँ। और आप हमें ये भी तो बताइए कि इस रक्षाबंधन पर आप क्या कर रहे हैं, कैसे अपनी बहन का स्वागत कर रहे हैं या बहनें अपनी भाई का स्वागत कैसे कर रही हैं, क्या क्या गिफ्ट लिए हैं आपने। और ये मैसेज हमें लिखा है आदर्श नगर पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और इसके अलावा सौरव शर्मा और साहनी शर्मा का ये संदेश हमें आया है। अगला संदेश है, आदरणीय सिद्धार्थ जी नमस्कार, नमस्कार, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप हमें दे रहे हैं। बिल्कुल आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं लिखी हैं, हमारा तो मैसेज शामिल नहीं होता है। अरे शामिल तो हो गया, नाराजगी की क्या ही बात है, बेहतरीन प्रस्तुति के साथ साथ बेहतरीन नगमे आप सुनवा रहे हैं, तो आपको नगमे पसंद आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बात सुनकर। ये लिखते हैं, मैं भोपाल गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, ईशान और पूजा परिहार, जी हाँ। और इस बीच हमारे बीच एक संदेश और आया है, कोई भी गीत सुनवा दें, रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। आपको तो मैं यही कहूंगा कि बचपन की शरारतें वो रूठना और मनाना, राखी के धागे में आज भी है वही समाना। जी हाँ, ये संदेश है जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी और बलवीर का बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। और अब हमारा अगला संदेश है, लिखते हैं, रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भैया, मेरे राखी के बंधन को निभाना। जी बिल्कुल, मैंने आपको सुनवा दिया ये गीत, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश, निखिल, प्रिंस और यशस्वी हमें लिखते हैं। इसके अलावा हमें लिखते हैं राघव बघेल, ये लिखते हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। कितना अच्छा लगता है जब आप देश के कोने कोने से हमें सुनते हैं, हमें मैसेज करते हैं और ये हमारी हौसला अफजाई होती है। लिखते हैं अगले हमारे श्रोता, सादर अभिवादन सिद्धार्थ जी, शानदार प्रस्तुति, बिल्कुल थैंक यू सो मच। लिखते हैं, रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, आप गीत सुनवा दें हमारी पसंद का, छत्तीसगढ़ पलारी से। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपका हमने संदेश शामिल कर ही लिया है। और हमारे बीच हरियाणा से अंकित, मुनी, प्रिंस, जी हाँ, साहिल, इनका राम राम जी, बिल्कुल आपको भी राम राम। दिन नवी हसन का जी का नबी हसन है, शानास हैं, नवेद, सुहेल, अनमय, रसीद, इनका संदेश हमें आया है। लिखते हैं, कोई भी गीत सुनवा दें, बिल्कुल गीत आपकी पसंद का हम चला रहे हैं। और यहाँ पर अगला संदेश, जी हाँ, और आपके कई बार कई कई संदेश आप भेजते हैं, आप हमें एक ही संदेश भेजिए, हम आपका ज़रूर शामिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कई सारे संदेश एक ही बार बार करेंगे तो हम शामिल करेंगे, हम बिल्कुल आपको आपका संदेश शामिल करेंगे, हमारी भी यही कोशिश रहती है। सुनिए ये गीत।

था, इसीलिए हम भी आपसे यही कहते हैं कि बंध जाए जो दिल से वो रिश्ता खास होता है, प्यार का बंधन ही तो सबसे खूबसूरत एहसास होता है।

जी हाँ, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। प्यार का बंधन बहुत अटूट होता है, ये जल्दी से नहीं टूटता। और आपसे भी कहेंगे कि इस बंधन की आप भी कद्र करिए, आप कितनी भी दूर क्यों ना हो, एक दिन बहन के लिए ज़रूर निकालिए, थोड़ा चले जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। आज आज फ़ोन पे बात कर, नहीं ये संभव नहीं है, आपको जाना ही होगा, क्योंकि कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, प्यार के बंधन कभी कमजोर नहीं होते। बंध जाए जो दिल से वो रिश्ता खास होता है, प्यार का बंधन ही तो सबसे खूबसूरत एहसास होता है। तो इसी एहसास को जीवित रखिए, और आज का दिन अपनी बहन को ये फील कराइए कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है। हमारे बीच अगला संदेश आया है, लिखते हैं, रिस्पेक्टेड होस्ट सिद्धार्थ जी, वी आल्सो लिसनिंग योर प्रोग्राम विद फैमिली, सो प्लीज़ सी माई मेल आल्सो, थैंक्स। तो आपका मेल हमने शामिल कर लिया है, जॉन डी कैस्ट्रो, रोजी डी कैस्ट्रो, पर डी कैस्ट्रो और विल्स डी कैस्ट्रो ने ये हमें संदेश भेजा है। और इसके अलावा हमारा अगला संदेश हरजिंदर सिंह भाटिया जी का है, और ये लिखते हैं कि सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, एंजल, सोनू और तमन्ना के साथ ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। और हमारे पास एक संदेश आया है, लिखते हैं, सिद्धार्थ बेटा जी, राम राम जी, राम राम आपको और आपके पूरे परिवार को, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भाई बहन का ये पावन रिश्ता सदा प्रेम और खुशियों से भरा रहे। आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज जी, वेद प्रकाश और सूबेदार अमर सिंह हमें ये संदेश प्यारा सा भेजते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस संदेश के लिए। इसके अलावा गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमारी डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार हमको संदेश भेजते हैं और लिखते हैं, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। संदीप मक्कड़ जी हमें लिखते हैं कि कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, और ये जालंधर से हमें संदेश भेजते हैं, ज्योति के साथ और कमल और इन सब के साथ, ये परिवार के संग इस कार्यक्रम का मज़ा ले रहे हैं। जी हाँ, और हमारे अगले जो संदेश जिसने भेजा है, श्रीनगर कश्मीर से ये संदेश हमारे पास आया है, सुदूर कश्मीर से, ये लिखते हैं, साहिर डान उर्फ जान, सिद्धार्थ जी आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूरी दिल्ली को ही क्यों, पूरे देश में हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं, और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, और हमारे पास, जी हाँ, एक संदेश और आ रहा है, लगातार आपके संदेश फ्लैश हो रहे हैं हमारे पास। लिखते हैं कि

सिद्धार्थ जी नाराज हैं चरणदास जी, रक्षाबंधन के दिन बहनों को ईमेल शामिल नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें करते। अरे रेखा जी, आपका ईमेल शामिल कर लिया है, कान पकड़ कर माफी मांगता हूँ आज के दिन आपसे। निर्मला, सुमन, सविता, हमारी जितनी भी बहनें सुन रही हैं, हम आपको बहुत बहुत दिल से प्यार करते हैं और इसीलिए आपकी पसंद के गीत भी सुनवा रहे हैं और आपको ढेर सारी बधाई दे रहे हैं। ये हमें चौधरी वास हिसार से हमारी इन सब बहनों ने ये हमें संदेश भेजा है और आपके संदेश प्यारे प्यारे यूं ही चलते रहेंगे।

और जाने क्यों हमें भी आपसे इतना प्रेम है, क्यों है पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई कनेक्शन तो है ही है, दिल का कनेक्शन है हमारे बीच। फिल्म लिखते हैं संदीप मकर, ज्योति मकर और साहनी जी। हाँ, हम आपका संदेश ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं और आपने दोबारा हमें मैसेज किया है। पंकज शर्मा जी का मैसेज आया है, जगमोहन प्रजापति, किरण और पूरे परिवार के साथ, सुधीर के, नूतन के साथ ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। अनिल मोहन जी पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से लिखते हैं, अनिल जी, उषा जी, टिल्लू जी, मधु जी, कार्यक्रम पसंद आ रहा है, एनी सॉन्ग, हम सॉन्ग आपको सुनवा रहे हैं। इसके अलावा रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, अर्णव, सत्यम, बोहना गाछी, पश्चिम बंगाल से हमें आपने मैसेज किया है कि दूर बिल्कुल। और शशि दार जी, जी हाँ, आपका मैसेज हमने शामिल कर दिया है, हमें पता है कि आप श्रीनगर की वादियों से हमारे श्रोताओं को पुरखलूस शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे संदेशा भेजा हमें। और जी हाँ, इसके अलावा हमारे पास और भी संदेश आ रहे हैं। जी हाँ, अनिल जैन जी का संदेश आया है, ये मालियान सरधना मेरठ से। और धीरे धीरे हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर भी बढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा संदेश हम शामिल कर लें। गीत तो हम आपको सुनवाएं ही, लेकिन संदेश भी आपके चलते रहने चाहिए। मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान, मास्टर जीवियम हमें सुन रहे हैं इस समय। इसके अलावा लिखते हैं, आदरणीय आदाब जी, रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप हमें किसी मधुर गीत में शामिल कर लीजिए। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, आप प्यारे नेमिश श्रोता हैं, आपका संदेश हम कैसे मिस कर सकते हैं। पंकज शर्मा जी लिखते हैं, भाई सिद्धार्थ जी, आप मुझसे नाराज हैं? बिल्कुल नाराज नहीं हो सकते, नाराज होकर जाएंगे कहाँ, हमें तो आपके बीच में ही रहना होगा। तो पंकज जी, आपका संदेश हमने शामिल कर लिया है। सुधीर, नूतन, संदीप जी के साथ आप इस कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। और धीरे धीरे घड़ी की जो सुइयां हैं वो कह रही हैं कि आपसे विदा दी जाए, अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ को कार्यक्रम से विदा दीजिए। मन तो नहीं कर रहा है कि लग रहा है आपसे ढेरों बातें करते रहें, लेकिन आज का जो मेन संदेश है कि आप अपनी बहनों से मिलने ज़रूर जाएंगे और आज के दिन आप उनको निराश नहीं करेंगे। और बहनों के जितने भी नखरे होते हैं ना, बहनें कई बार थोड़ी सी नखरीली होती हैं, तो जितने भी नखरे होते हैं उनके वो आपको उठाने पड़ेंगे।

0: जी हाँ, जाने क्यों ये प्यार का बंधन है, हम आपस में बंधे हुए हैं। और दोस्तों, आपको प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और धीरे धीरे घड़ी की सुइयाँ हमें इशारा कर रही हैं कि हमने एंटरटेनमेंट तो कर लिया, लेकिन अब देश विदेश में क्या कुछ चल रहा है उसको जानने का समय आ चुका है। और अब 11 बजने में 10 सेकेंड बाकी हैं, तो अब से कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे देश विदेश के। तो आइए मिलकर सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं। नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात को गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद कल से इसमें गिरावट आ रही है। एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीम में तटबंधों की 24 घंटे निगरानी कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 3,17,000 करोड़ रुपए है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन की पवित्र परंपरा प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं का अभिन्न अंग रही है। श्री राधाकृष्णन ने सभी के लिए खुशी, शांति और समृद्धि की कामना की। श्री मोदी ने कामना की कि रक्षाबंधन का त्यौहार सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा की शाश्वत समृद्धि को चिन्हित करने के लिए श्रावण पूर्णिमा को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भारत के ज्ञान, विचार और रचनात्मकता का निरंतर वाहक रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। मौसम विभाग ने ओडिशा और बिहार में आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सन्मिता चक्रवर्ती का गाया राग वृंदावनी सारंग में विलंबित एकताल। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंस्पर्स चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 12 बजने को हैं, अब से थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। तो आइए सुनते हैं देश विदेश के समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका के उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। मौसम विभाग ने ओडिशा और बिहार में आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा और बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में भी तेज वर्षा की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 141 अंक बढ़कर 77,075 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

her an dedi. घर आंगन कार्यक्रम के आज की इस खास प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। और दोस्तों, जब रिश्ते विश्वास की डोर से बंधते हैं तब हर दिन एक उत्सव बन जाता है। और रिश्तों की सबसे मजबूत डोर वो होती है जिसे प्यार, विश्वास और सम्मान हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत करते हैं। इसी खूबसूरत विचार के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज संस्कृत दिवस भी है और खास प्रस्तुति एक कदम बुजुर्गों की ओर भी, तो इन सब के बारे में हम और भी बातें करेंगे। लेकिन पहले आज का सवाल आपके लिए, रक्षाबंधन की कौन सी बात सबसे खास है? कोई ऐसी याद, कोई परंपरा या कोई भावना जो इस त्योहार को आपके लिए स्पेशल बनाती हो? अपने विचार हमें भेजिए इस मेल आईडी पर fmgoldga@gmail.com। आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्यार की ये डोर, बुजुर्गों का साथ, अपनी संस्कृति का एहसास, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए घर आंगन।

अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले को, फिल्म थी काजल। और रिश्ते बहुत होते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से नहीं, एक छोटी सी डोर से बांधा जाता है। रक्षाबंधन भी ऐसा ही खूबसूरत पर्व है जो भाई बहन के प्रेम, विश्वास और अपनापन का उत्सव है। राखी की उस नन्ही सी डोर में आखिर इतना अपनापन आता कहाँ से है? शायद बचपन की उन अनगिनत यादों से, जब भाई बहन कभी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं तो कभी सबसे बड़े दुश्मन, कभी खिलौने के लिए लड़ाई, कभी चॉकलेट के लिए झगड़ा और अगले ही पल साथ बैठकर हंसी मजाक। लेकिन बड़े होने के साथ रिश्तों की भाषा बदल जाती है। बहन का फोन आता है, खाना खाया, और भाई पूछता है घर पहुंच गई, और बिना कहे भी दोनों समझ जाते हैं कि सामने वाला ठीक है या नहीं। यही तो रक्षाबंधन का असली अर्थ है। रक्षा केवल भाई की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ी रहने का वादा है। आज की राखी सिर्फ ये कहने का दिन नहीं है कि भाई मेरी रक्षा करेगा, बल्कि ये कहने का दिन भी है कि हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे। तो इस रक्षाबंधन राखी बांधते समय केवल मिठाई और उपहार न दें, एक वादा भी दें, मुश्किल समय में साथ रहने का, दूर रहकर भी हाल पूछने का, और उम्र चाहे जितनी बढ़ जाए बचपन वाली शरारतों को दिल में जिंदा रखने का। क्योंकि राखी की डोर कलाई पर कुछ पल के लिए बंधती है, लेकिन उसका प्रेम दिल में जीवन भर रहता है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि रिश्तों की खूबसूरती साथ रहने में नहीं, दूर रहकर भी दिल के पास रहने में है। राखी की डोर बस एक धागा नहीं, भाई बहन के अटूट विश्वास का वादा है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म छोटी बहन से, और रक्षाबंधन यानी वो दिन जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके सुख सुरक्षा और लंबी उम्र की कामना करती है। लेकिन हर साल कुछ कलाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो राखी के धागे का इंतजार तो करती हैं मगर ड्यूटी की जिम्मेदारियाँ उन्हें घर तक नहीं आने देती। कोई भाई सीमा पार देश की रक्षा कर रहा है, कोई पुलिस की वर्दी पहनकर हमारी सुरक्षा में खड़ा है, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में किसी अनजान की जान बचाने में जुटा है, कोई रेल की पटरियों पर यात्रियों की सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित कर रहा है, कोई मेट्रो विमान या आपदा राहत सेवा में अपने कर्तव्य निभा रहा है। इनकी बहनों के लिए रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि गर्व और इंतजार का संगम होता है। राखी कभी डाक से पहुंचती है, कभी तस्वीरों में बंधती है, तो कभी सिर्फ दुआओं में, लेकिन प्यार वो हर दूरी से बड़ा होता है। और कहते हैं भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि जब कोई सैनिक सीमा पर खड़ा होता है, कोई पुलिसकर्मी रात भर जागता है, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में सेवा देता है, या कोई रेल या विमान सेवा का कर्मचारी अपने कर्तव्य पर डटा रहता है, तब वो सिर्फ अपनी बहन ही नहीं बल्कि पूरे देश के बहनों की सुरक्षा और मुस्कान की रक्षा कर रहे होते हैं। तो इस रक्षाबंधन पर उन सभी भाई बहनों को हमारा स्नेह सम्मान और शुभकामनाएं, जिनके बीच दूरियां तो हैं लेकिन दिलों के रिश्ते पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। यदि आपके भाई सेना बल में या फिर पुलिस, चिकित्सीय सेवा, रेलवे, मेट्रो, विमानन या किसी ऐसी सेवा में हैं जहां ड्यूटी की वजह से वो इस रक्षाबंधन पर घर नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए अपना संदेश हमें भेजिए। और यदि आप स्वयं ऐसी सेवा में हैं तो अपनी प्यारी बहन के नाम अपना संदेश लेकर हमें भेजिए। ईमेल आईडी तो आपको पता ही होगा, fmgoldga@gmail.com। और या फिर आप रक्षाबंधन से रिलेटेड कुछ भी अच्छा सा लिखना चाहते हैं तो हमें लिखकर भेजिए। रक्षाबंधन के इस विशेष अवसर पर आपके इन अनमोल संदेशों को अपने हम प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि रिश्तों की असली डोर दूरी नहीं दिल से बंधी होती है।

अब ये हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश को फिल्म बेईमान से। और दोस्तों 28 अगस्त को मनाया जाता है संस्कृत दिवस। यह दिन हमें उस भाषा से जोड़ता है जिसे भारत की ज्ञान परंपरा की आधारशिला माना जाता है। संस्कृत एक ऐसी भाषा जिसके शब्दों में केवल अर्थ नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की संस्कृतियां भी बसी हैं, इसलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। और सबसे रोचक बात कि संस्कृत का प्रभाव केवल धर्म और दर्शन तक सीमित नहीं है, संस्कृत की संरचना इतनी व्यवस्थित है कि आधुनिक समय में भी इसके व्याकरण और भाषिक संरचना पर शोध किया जाता है। तो संस्कृत दिवस इसलिए केवल संस्कृत बोलने या पढ़ने का दिन नहीं है, ये अपनी जड़ों को पहचानने का अवसर है, युवाओं को संस्कृत सीखने और बोलने के प्रति रुचि बढ़ाना भी है। तो आज के समय में जब हम नई भाषाएं सीख रहे हैं, नई तकनीक अपना रहे हैं और दुनिया से जुड़ रहे हैं, तब अपनी प्राचीन भाषाई विरासत को जानना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक होना अपनी जड़ों को भूलना नहीं बल्कि अपनी जड़ों से शक्ति लेकर आगे बढ़ना है। और चलिए कुछ ईमेल्स भी आ गए हैं तो क्यों ना उसको पढ़ लिया जाए। सबसे पहला ईमेल है नवीन भाटिया जी का, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने लिखी है कि मेरी जो बड़ी बहन है गीता, वो 1991 में अमरावती ट्रेनिंग के लिए गई थी, उन्हें छुट्टी नहीं मिली इसलिए वो वहां जाकर राखी बंधवा लिया। अनिल मेहता जी लिखते हैं कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते और अटूट प्यार का प्रतीक होना ही असली रक्षाबंधन है। और ऐना लिखती हैं, नमस्ते, मेरे लिए राखी की सबसे खास बात सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधना नहीं है बल्कि उस रिश्ते को महसूस करना है जिसमें बचपन की नोक झोंक, ढेर सारी यादें और बिना कहे एक दूसरे का साथ देने का भरोसा होता है। समय के साथ जिंदगी बदल जाती है, दूरियां बढ़ जाती हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता वही मासूमियत बनाए रखता है। और ऐना के बाद चरणदास जी ने भी कुछ लिखा है कि नमस्कार जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, मेरे भैया मेरे अनमोल।

जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर द मेल, और हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कहते हैं अनुभव की कोई कीमत नहीं होती, और इस अनमोल अनुभव का सबसे बड़ा खजाना होते हैं हमारे बुजुर्ग। उन्होंने सिर्फ जिंदगी नहीं जी बल्कि हर सुख दुख, हर उतार चढ़ाव से ऐसी सीखें जुटाई जो आने वाली पीढ़ियों का रास्ता रोशन करती है। ऐसी ही एक सीख है पैसों की समझ और संतोष का महत्व। आज की दुनिया में कमाने की रफ्तार तो बढ़ गई है, लेकिन बचाने की आदत कहीं पीछे छूटती जा रही है। नई चीज़ें खरीदना आसान हो गया है, मगर ज़रूरत और चाहत के बीच का फर्क समझना मुश्किल। ऐसे में अगर किसी से सीखनी हो आर्थिक समझ, तो एक बार अपने घर के बुजुर्गों की ओर जरूर देखिए। उन्होंने हमें सिखाया कि कमाई चाहे कम हो, लेकिन हिसाब हमेशा साफ होना चाहिए। पहले बचत, फिर जरूरत, और उसके बाद ही शौक। यही छोटी सी आदत उन्हें हर मुश्किल समय में मजबूत बनाती थी। बुजुर्गों की एक और खूबी थी, वो चीज़ों की नहीं उनकी उपयोगिता की कद्र करते थे। कपड़े पुराने हो जाएं तो उन्हें संभाल कर पहनते थे, चीज़ें खराब हो तो मरम्मत करवा लेते थे, रिपेयर करवा लेते थे। उनके लिए सादगी मजबूरी नहीं समझदारी थी। और फिर आती है सबसे बड़ी दौलत, संतोष। तो याद रखिए, पैसा जीवन को सुविधाएं देता है, लेकिन संतोष जीवन को सुकून देता है, और सुकून किसी भी बैंक में नहीं मिलता। और आज जब घर के किसी बुजुर्ग के साथ आप बैठें, उनसे पैसों की नहीं उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव की पूंजी ज़रूर मांगिए। यकीन मानिए, वो विरासत किसी भी संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान होगी। उम्र ने जो खामोशी से सिखाया, वो कोई किताब पढ़ा न सकी। दौलत से नहीं, संतोष से जो जीना सीखा, वही सीख जिंदगी कभी भुला न सकी।

अभी हम सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर को फिल्म रेशम की डोरी। और एक और मेल है हमारे सामने, राधा पाठक जी लिखती हैं कि हमारे यहाँ सुबह सुबह दरवाजे पर सोनी सोना बनकर उन्हें खीर से पूजा जाता है, फिर जो खीर बनती है उसी से टीका होता है भाई का और राखी बांधी जाती है।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले को फिल्म बातों बातों में। और एक और मेल है मेरे सामने, श्रीपाल गोयल जी लिखते हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से। भाई बहन के प्रेम, विश्वास और अटूट स्नेह का ये पवित्र त्योहार आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लाए, आपको भी। और राखी पर उन रिश्तों को भी सलाम जिन्होंने भाई का फर्ज निभाया। दोस्तों, रक्षाबंधन का नाम आते ही आंखों के सामने एक भाई एक बहन राखी का खूबसूरत रिश्ता उभर आता है। लेकिन आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे, उन रिश्तों की जिसमें खून का रिश्ता तो नहीं था, फिर भी निभाया गया भाई का फर्ज पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से। जिंदगी में कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो जन्म से भाई नहीं होते, लेकिन मुश्किल वक्त में सबसे पहले हमारे साथ खड़े दिखाई देते हैं। कभी बड़ी बहन अपने छोटे भाई की तरह पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा लेती है, कभी चचेरे, ममेरे या फुफेरे भाई सगे से भी बढ़कर साथ निभा जाते हैं। और कभी पड़ोस का कोई बेटा, बचपन का दोस्त, सहकर्मी या गुरु बिना किसी स्वार्थ के हमारी सुरक्षा, सम्मान और खुशियों की चिंता करता है। रिश्ते सिर्फ जन्म से नहीं बनते दोस्तों, विश्वास से बनते हैं। राखी केवल कलाई पर बंधा धागा नहीं, बल्कि यह उस भरोसे का नाम है जो कहता है, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो इस रक्षाबंधन पर आइए उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करें जिन्होंने किसी न किसी मोड़ पर भाई बनकर हमारा हाथ थामा, क्योंकि दुनिया में सबसे अनमोल वही रिश्ता है जो बिना किसी अपेक्षा के साथ बस निभाता जाता है।

और अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को फिल्म थी अनपढ़। और दोस्तों आज के खास सेगमेंट एक कदम बुजुर्गों की ओर को भी हमें नहीं भूलना है, तो बुजुर्गों की प्रेम कहानियां साथ निभाने के असली मायने। दोस्तों कहते हैं प्यार सिर्फ आई लव यू कह देने का नाम नहीं होता, प्यार वो होता है जब बिना कहे सामने वाले की दवा का समय याद रहे, जब चश्मा ढूंढने से पहले हाथ उसी तरफ बढ़ जाए, और जब 70 की उम्र में भी कोई पूछे चाय में चीनी कम रखूँ ना। जरा सोचिए आजकल रिश्ते कुछ मिनटों में नाराजगी भी नहीं झेल पाते, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने तो पूरी जिंदगी साथ निभाया है। सुख दुख तंगी अमीरी बीमारी सेहत हर मौसम में एक दूसरे का हाथ थामे रखा। कई दादाजी आज भी बाजार जाते समय दादी जी के लिए उनकी पसंद की इमली या चूड़ियां ले आते हैं। कई दादी जी आज भी सबसे पहले अपने जीवन साथी की थाली सजाती हैं। ये छोटे छोटे काम शायद दुनिया को नजर ना आए, लेकिन यही तो प्रेम की सबसे बड़ी भाषा है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार बड़े बड़े उपहारों से जताया जाता है, लेकिन हमारे बुजुर्ग सिखाते हैं कि प्यार रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में बसता है। दवा समय पर दे देना, थक जाने पर बिना कहे पानी का ग्लास पकड़ाना, और हर मुश्किल में सिर्फ इतना कहना कि मैं हूं ना। आज जब दुनिया बहुत तेज दौड़ रही है, शायद हमें थोड़ा रुककर अपने घर के उन दो चेहरों को देखना चाहिए जिनकी प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, बस उसमें शोर नहीं सुकून है। तो आज घर जाइए, अपने दादा दादी नाना नानी या मम्मी पापा से पूछिए कि आपकी पहली मुलाकात कैसी थी। यकीन मानिए आपको सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि रिश्तों की पूरी किताब सुनने को मिलेगी, क्योंकि सच्चा साथ वही है जहां उम्र चेहरे पर बढ़ती है लेकिन अपनापन दिल में हमेशा जवां रहता है। सफेद बालों में भी मोहब्बत का रंग गहरा है, हर झुर्री में उम्र नहीं साथ का पहरा होता है, जो हाथ आखिरी सांस तक थामे रहे, असल में वही प्रेम जीवन का सबसे सुनहरा चेहरा होता है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म थी थोड़ी सी बेवफाई। और दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि आज बेटियां या बहनें सिर्फ रक्षा की अपेक्षा नहीं करती, बल्कि अपने भाइयों की सबसे मजबूत रक्षा कवच भी बन रही हैं। वो मुश्किल समय में उनका हौसला बनती हैं, सही सलाह देती हैं, परिवार की जिम्मेदारियां निभाती हैं और कई बार माता-पिता की तरह उनका ध्यान भी रखती हैं। सोचिए, कितने घरों में बहनें अपने भाई की पढ़ाई में मदद भी करती हैं, उसके सपनों को पूरा करने के लिए अपना समय और मेहनत लगाती हैं। जब भाई किसी परेशानी में होता है तो सबसे पहले उसकी बहन ही कहती है, चिंता मत करो, मैं हूं ना। और आज की बेटियां आत्मनिर्भर हैं, शिक्षित हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वो ये साबित कर रही हैं कि सुरक्षा केवल शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि विश्वास, समझ, साहस और साथ निभाने से भी मिलती है। रक्षाबंधन का असली संदेश भी यही है कि ये केवल भाई का बहन के प्रति कर्तव्य नहीं, बल्कि दोनों का एक दूसरे के लिए अटूट विश्वास और साथ निभाने का वादा है। रिश्ते बराबरी से और प्रेम से और भी सुंदर बनते हैं। तो जरा आज अपने जीवन की उस बहन को धन्यवाद कहना मत भूलिए जिसने कभी आपकी हिम्मत बढ़ाई, आपका मनोबल संभाला या बिना कहे आपका

अभी हम सुन रहे हैं किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा। और इसी के साथ आज की खास प्रस्तुति को देते हैं यहीं विराम। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं आप सबको, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मंजुला को इजाजत, नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन। घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और 1545 लोग लापता हैं। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे

0: भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाकरा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित अनुमेय सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक बढ़कर 77,093 पर और निफ्टी 15 अंक बढ़कर 24,106 पर पहुंच गया। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वाश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कुछ रिश्ते अधूरे होकर भी पूरे होते हैं। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म से, और आज की हमारी फिल्म है जो

फिल्म नहीं, एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि रिश्तों, यादों, बिछड़ने और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की कहानी है। जी हाँ, फिल्म है इजाजत। ये एक ऐसी फिल्म जिसमें कोई खलनायक नहीं है, कोई जोरदार संवादबाजी नहीं है, फिर भी हर खामोशी कुछ कहती है। और ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 1987 में। और दोस्तों, मैं बता दूं, आज आपके साथ इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी दोस्त शोभा शर्मा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में, और स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आज रक्षाबंधन के त्यौहार है, तो उसकी भी मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। चलिए फिल्म की ओर रुख करते हैं। साल 1987 में ये फिल्म जो थी, इसे निर्देशित किया था गुलजार साहब ने। मुख्य भूमिकाओं में थे रेखा, नसरुद्दीन शाह और अनुराधा पटेल। और कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में। महेंद्र यानी नसरुद्दीन शाह एक रात स्टेशन पर रुकते हैं, और अचानक उसकी मुलाकात होती है अपनी पूर्व पत्नी सुधा से, जिसकी भूमिका निभाई है रेखा ने। दो लोग जो कभी एक दूसरे के बेहद करीब थे, अब उनके बीच सिर्फ और सिर्फ रह गई हैं तो यादें। लेकिन सवाल ये है कि क्या रिश्ता खत्म हो जाने के बाद प्यार भी खत्म हो जाता है, या फिर कुछ रिश्ते कागज़ पर खत्म होते हैं, दिल में नहीं। गुलजार साहब ने इस फिल्म को बहुत अलग ढंग से बुना। कहानी बंगाली लेखक सुबोध घोष की कहानी जतुग्रह से प्रेरित थी, लेकिन गुलजार साहब ने इसे अपने अंदाज में पेश किया है। यहीं से शुरू होती है महेंद्र, सुधा और माया की कहानी। जी हाँ, एक कहानी तीन किरदारों पर है और इन्हीं की कहानी है। कहानी आगे बढ़ेगी, बहुत कुछ हम इस फिल्म के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं इस फिल्म का एक यादगार गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट

0: कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है इजाजत। और अब लौटते हैं इस कहानी के बारे में। जी हाँ, कहानी के बारे में बहुत कुछ हम बता भी चुके हैं। चलिए कहानी के बारे में बताते हैं कि महेंद्र की ज़िंदगी में सुधा जो थी, उसकी पत्नी जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे मिली थी, उससे पहले थी माया। माया यानी अनुराधा पटेल। माया और महेंद्र एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन माया शादी को अपने रिश्ते की अनिवार्य नहीं मानती, कि ज़रूरी नहीं मानती, मंजिल की शादी होना ज़रूरी है। उधर परिवार और परिस्थितियों के दबाव में महेंद्र की शादी सुधा से हो जाती है। सुधा महेंद्र को चाहती है, वह अपने पति के साथ एक सामान्य वैवाहिक जीवन जीना चाहती है। पर महेंद्र जो होता है वो अतीत की यादों में खोया होता है और माया में अब भी मौजूद होता है, उसके बारे में सोचता है। महेंद्र और सुधा का रिश्ता इसलिए धीरे धीरे टूटने लगता है। आखिरकार दोनों अलग हो जाते हैं और फिर कई सालों के बाद एक रेलवे स्टेशन पर एक वेटिंग रूम में मिलते हैं। दोनों को अपनी बातें याद आती हैं, दोनों के पुराने रिश्ते होते हैं जो कि आमने सामने हो जाते हैं, पर अब उनके पास पुरानी शिकायतें नहीं होती बल्कि यादें होती हैं और एक दूसरे का वो सम्मान कर पाते हैं। वाकई में फिल्म बहुत ही अच्छी है, पूरी भावनाओं पर कैद है, किस तरह से इंसान की भावनाएं सही होती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि तीनों किरदार जब कहानी से आप देखेंगे तो तीनों सही लगते हैं, पर फिर भी एक मनमुटाव हो जाता है क्योंकि भावनाएं बहुत कुछ कहती हैं। और इस फिल्म में रेखा, नशरुद्दीन शाह और अनुपमा पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। वाकई में फिल्म लाजवाब थी, अपने ज़माने की सुपरहिट मूवी रही। और इसमें आपको एक बात बता दें, इस कहानी में सिर्फ यही तीन किरदार नहीं थे, एक किरदार और भी था जो दिखाई नहीं देता फिर भी पूरी फिल्म में मौजूद रहता है, वो है इस फिल्म का संगीत। बाकी इस फिल्म के जो भी गीत हैं आज भी यूँ कहें कि बिल्कुल ताज़े लगते हैं। और फिल्म इजाज़त का जो संगीत था वो दिया था महान संगीतकार आरडी वर्मन ने, यानी हमारे प्यारे पंचमदा ने, और गीत लिखे थे गुलजार ने। और इस फिल्म के जो मुख्य गीतकार हैं वो सब आशा भोंसले जी ने गाए थे। बहुत ही प्यारे प्यारे गीत इस फिल्म में, तो चलिए इस फिल्म का एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं, वाकई में आपको भी बहुत कुछ याद आ जाएगा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है इजाज़त। इस फिल्म के बारे में हम क्या कहें, इसका संगीत भी लाजवाब और कहानी भी एक भावनाओं के इर्द गिर्द घूमती है और बहुत कुछ कहती है, दिल की भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त करती है। इस फिल्म की अगर एक और बात कहें तो इस फिल्म में जो गुलजार साहब हैं उनको बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिला पुरस्कार मिला, और सुबोध घोष को बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और इसके सभी गीत जो हैं वाकई बहुत पसंद किए गए, और आशा भोसले की आवाज़ यूँ कहें कि इन गीतों में बहुत ही लाजवाब लगती है। वाकई उनकी आवाज़ तो वैसे भी बहुत ख़ास है, और इनको इस फिल्म में फिल्म के कारण राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए। इस फिल्म की एक बात कहें तो यूँ कहें कि गुलजार की कविता, दूसरी तरफ पंचमदा का संगीत और उस पर आशा भोंसले की आवाज़, वाकई में कमाल कर लिया। ऐसा भाव रचा जो आज भी पुराना नहीं लगता, जब भी हम उनके गीत सुनते हैं तो वाकई झूम उठते हैं। और जो ये वाला जो गीत है मेरा बहुत ही फेवरेट है, तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और सबको बिल्कुल अपनी ज़ुबान पर उनकी होगा ही होगा ये गीत। तो सुनते हैं इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

जो थी वो आज की फिल्म थी इजाजत। गुलजार की कलम, पंचम दा का संगीत, आशा भोसले की आवाज़ और रेखा और नसरुद्दीन शाह की अदाकारी वाकई लाजवाब थी। और एक ऐसी कहानी थी जिसका आखिरी शब्द अलविदा नहीं बल्कि इजाज़त है। जी हाँ, रेखा और नसरुद्दीन शाह, जो कि अपनी यादें पुरानी संजोए रखती है रेखा, वो उससे इजाज़त लेती है कि अब हम दोनों खुशी खुशी अलग हो जाएं। और इसी तरह से ये फिल्म ख़त्म होती है और वाकई अगर आप देखेंगे तो आप ज़रूर पसंद करेंगे। चलिए, हम भी अब आपसे कहना चाहेंगे कि मैं भी आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की। तो मुझे यानी शोभा शर्मा को दीजिए इजाज़त, नमस्कार, परंतु जाइएगा कहीं ना, एक प्यारा सा गीत और आपके इंतज़ार में इसी फिल्म का यानी इजाज़त फिल्म का।

तो उस फिल्म का ये गीत इजाज़त फिल्म का वाकई बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाता है। ये ऐसे लगता है जैसे किसी पुराने रिश्ते की अलमारी खोल दी हो और उसमें हम सब पुरानी जो यादें हैं उनको संजो रहे हो। तो आज की इस एक ही फिल्म से मैं बस इतना ही, और फिल्म की

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी ए खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। दक्षिण पश्चिमी चीन दे सिचुआन सूबे विच अज 5.1 तीव्रता दे भूचाल तो बाद नेपाल विच हड़ दी ताजा चेतावनी जारी की गई। भारत वल्लों नेपाल च फसे भारतीयां नूं कढ़न लई कोशिशां तेज। सरकार ने भाखड़ा नंगल डैम की कंध 1.77 इंच झुकी होने दे सोशल मीडिया ते चल रहे एक जाली वीडियो का खंडन किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान चौपाल विच हिस्सा लैण ते रखड़ी दे मौके ते किसानां नाल गल्लबात करन लई पंजाब विच। प्याज दीआं कीमतां नूं स्थिर रखण लई सरकार वल्लों कीते जा रहे यत्तां तहत प्याज नूं सड़की आवाजाई राहीं पंजाब ते चंडीगढ़ समेत भारत दे होरनां स्थानां तक पहुंचाया जा रहा है ते भारत दे दोहरे ओलंपिक तमगा जेतू नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल लई क्वालीफाई कर लिया है।

0: पिछले 12 साल विच वड्डा प्रभाव पिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री मोदी ने कहा कि जन धन योजना देश भर विच माली समावेश नूं अगे वधाउण अते लोकां नूं मजबूत बनाउण विच अहम भूमिका निभा रही है। भारत विच इस समय 7 थावां ते 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर चालू ने, जिन्हां दी कुल स्थापित समर्था 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग मुताबिक 9 होर रिएक्टर निर्माणाधीन ने। परमाणु ऊर्जा भारत दे विकास दे राह दा इक अहम हिस्सा बन के उभरी है, जो ना सिर्फ बिजली उत्पादन विच सगो सेहत संभाल, खेतीबाड़ी अते वख-वख सनअती वरतों विच भी योगदान पाउंदी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल दे उत्तरी रेंज ने आईएसआई दी हमायत प्राप्त पाकिस्तान आधारित एक कथित जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। दिल्ली आधारित एक जोड़े नूं गिरफ्तार किया है, जिसते 2024 तो सोशल मीडिया राही पाकिस्तानी इंटेलीजेंस ऑपरेटिव्स पीआईओज ले काम करने का इल्जाम है। दिल्ली पुलिस मुताबिक जोड़े ने कथित तौर से पाकिस्तान आधारित हैंडलरां नूं लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की, जिस विच भारतीय सिम कार्ड प्राप्त करना अते उन्हां नूं दुबई राही पाकिस्तान भेजना शामिल है। सिम कार्डा की वरतों कथित तौर से पाकिस्तानी संचालकों वालों वट्सएप खातों को एक्टिवेट करन अते भारतीयों नाल संपर्क करन लई कीती गई सी। महाराष्ट्र के नासिक तो 450 टन तो वध प्याज नाल पहली कांदा एक्सप्रेस आज सवेरे दिल्ली पहुंच गई है। खपतकार मामले बारे मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने मौसमी मांग की म्याद दौरान टुकवी उपलब्धता और सहायक कीमत स्थिरता को यकीनी बनाने लिए बफर स्टॉकों की एक योजनाबद्ध टीचा मुखी निकासी शुरू की है। मंत्रालय ने कहा कि कांदा एक्सप्रेस पहलकदमी बफर प्याज को उत्पादक खेतरों तो खपत खेतरों तक ले जाने लिए एक प्रभावशाली लॉजिस्टिक उपाय है। सप्लाई को सड़की आवाजाई राही होर प्रमुख खपत केन्द्र जिवें कि अमृतसर, चंडीगढ़, जम्मू, चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ ते पटना तक पहुंचाया जा रहा है। आज देश भर विच रखड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रखड़ी के त्यौहार मौके सारे नूं वधाई दित्ती है। पंजाब विच जेल विभाग ने जेल कैदियों नूं भैणां भरावां दे प्यार ते सत्कार दा त्यौहार रखड़ी मनाउण दी इजाजत दित्ती है। विभाग ने राज दीआं सारीआं जेलां विच प्रबंध कीते ने ते कैदियों दीआं भैणां ते भरावां नूं रखड़ी बणन दी इजाजत दित्ती है। इस दे नाल ही सुरक्षा चिंतावां दा वी ध्यान रख्या गया, जदों कि परिवारक मैंबरां नूं त्यौहार मनाउण लई आसान पहुंच दित्ती गई है। उधर सरहदी लोक सेवा समिति पंजाब वालों रखड़ी का त्यौहार भारत पाकिस्तान सरहद ते देश दी रख्या लई तैनात सीमा सुरक्षा बल दे जवानां नाल उत्साह नाल मनाया। भारत के दौरे ओलंपिक तमगा जेतू नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल लिए क्वालीफाई कर लिया, जो अगले महीने ब्रसल्स विच होएगा। चोपड़ा ने स्टैंडिंग विच 12 अंक इकट्ठे किए। चोपड़ा दी दो कारगुजारियां डायमंड लीग फाइनल विच जगह पक्की करने लिए काफी सन। आखिर च खास खबर एक बार फिर, दक्षिण पश्चिमी चीन दे सिचुआन सूबे विच अज 5.1 तीव्रता दे भूचाल तो बाद नेपाल विच हड़ दी ताजा चेतावनी जारी कीती गई। भारत वल्लों नेपाल च फसे भारतीयों नूं कढ़न लई कोशिशां तेज। सरकार ने भाखड़ा नंगल डैम दी कंध 1.77 इंच चुकी होण दे सोशल मीडिया ते चल रहे एक जाली वीडियो दा खंडन कीता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान चौपाल विच हिस्सा लैण ते रखड़ी दे मौके ते किसानां नाल गल्लबात करन लई पंजाब विच। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं महताब आलम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना मुल्क भर में माली शमूलियत को तेजी से आगे ले जाने और लोगों को बाख्तियार बनाने के सिलसिले में अहम रोल अदा कर रही है। नेपाल तिब्बत में आए अचानक तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 469 हो गई है। सरहद के दोनों अतराफ 1,500 से ज्यादा लोग लापता हैं। वजारत खारजा ने इतला दी है कि नेपाल में 290 भारतीय शहरियों से राबता नहीं हो पा रहा है। सैलाब से मुतासर इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। चीन के सिचुआन सूबे में 5.1 की शिद्दत वाले जलजले के बाद नेपाल में सैलाब से मुतालिक ताज़ा वार्निंग जारी की गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज से अमरीका का दौरा कर रही हैं, जो 6 रोज तक जारी रहेगा। और पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के विलावन सेंथिल कुमार का मुकाबला हंगरी के ब्लास फ्राकास से होगा।

0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नेपाल में भयानक सैलाब के बाद अब बिहार में सैलाब का खतरा कम हो गया है। बुध की रात को गंडक दरिया के पानी के बहाव में इजाफे के बाद कल से पानी कम होना शुरू हो गया है। नायब वजीर आला और आबी वसायल के वजीर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि फिलहाल दरिया का बहाव मामूल पर है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियाती इकदाम के तौर पर गंडक दरिया से मुतासरा सभी 8 जिलों को अलर्ट रखा गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन अमरीका के 6 रोजा दौरे पर रहेंगी, जो आज से शुरू हो रहा है। अमरीका के अपने दौरे के दौरान वो शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। शिकागो में वजीर खजाना सरकर्दा और मुमताज सरमायाकारों के साथ एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी और प्राइवेट सेक्टर के सरकर्दा सीईओज, सुदूर और सीनियर नुमाइंदों के साथ बातचीत करेंगी। एशविल में मोहतरमा सीतारमन G20 की अमरीकी सदारत में G20 के उदराए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग में भारतीय वक्त की सरबराही करेंगी। इस मीटिंग में जो 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी, अहम आलमी इकतसादी और मालियाती उमूर पर तबादले ख्याल की गरज से G20 के मेंबर मुल्कों के उदराए खजाना, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और सीनियर हुक्काम माशी अफसरान शिरकत करेंगे। भाइयों और बहनों के दरमियान खुसूसी प्यार और मोहब्बत भरे रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और भाई के लिए दुआएं करती हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहनों की हिफाजत और उनकी मदद का अहद करते हैं और उन्हें तहाई पेश करते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। भारत के विलावन सेंथिल कुमार कल रात सेमीफाइनल में अपने हमवतन खिलाड़ी वीर चोटरानी को एक बेहद दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से शिकस्त देकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब विलावन आज रात फाइनल में हंगरी के मकामी और आर्मी नंबर 55 बलाज फ्राकास का सामना करेंगे। आखिर में खास खास खबरें एक बार और। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना मुल्क भर में माली शमूलियत को तेजी से आगे ले जाने और लोगों को बाख्तर बनाने के सिलसिले में अहम रोल अदा कर रही है। नेपाल तिब्बत में आए अचानक तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 469 हो गई है। सरहद के दोनों अतराफ 1,500 से ज्यादा लोग लापता हैं। वजारत खारजा ने इतला दी है कि नेपाल में 290 भारतीय शहरियों से रबता नहीं हो पा रहा है। सैलाब से मुतासर इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। चीन के सिचुआन सूबे में 5.1 की शिद्दत वाले जल्जले के बाद नेपाल में सैलाब से मुतालिक ताज़ा वार्निंग जारी की गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज से अमरीका का दौरा कर रही हैं, जो 6 रोज तक जारी रहेगा। और PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के विलावन सेंथिल कुमार का मुकाबला हंगरी के बलाज फ्राकास से होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says Jan Dhan Yojana is playing a significant role in advancing financial inclusion and empowering people. Death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods rises to 469. Over 1,500 people remain missing on both sides of border. External Affairs Ministry informs 290 Indian nationals in Nepal remain uncontactable. Rescue and evacuation efforts underway in flood-hit areas. Fresh flood warning issued in Nepal as 5.1 magnitude earthquake hits Sichuan province of China. Finance Minister Nirmala Sitharaman to be on a 6-day visit to US beginning today. And India's Vilavan Senthil Kumar to take on Balazs Farkas of Hungary in the final of PSA Budapest Squash Open tonight.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमरीका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमरीका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटे कोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि घाट के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 2400 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
4: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के

0: वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
2: अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान

का त्योहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में पांचवां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार का पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त दोपहर के 2:30 हो चुके हैं और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी दोस्त चेतना शर्मा। स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार और सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, एक ही कलाकार, हम हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसा कलाकार जो फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ है। जब हम बात करते हैं बॉलीवुड के सुनहरे दौर की, यानी 60 के दशक की, 70 या फिर 80 के दशक की, तो हमारे दिमाग में ना एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों के पोस्टर्स जो है ना वो आने लगते हैं। और कुछ ऐसी

हकीकत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हम बात करें निर्माता निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रमोद चक्रवर्ती का जन्म 15 अगस्त 1929 को ढाका में हुआ। महज 17 से 20 वर्ष की आयु में आंखों में सिनेमा के सपने लिए मुंबई वो आ पहुंचे। शुरुआत में ना कोई जान पहचान थी और बिल्कुल अनजान शहर, वो भी बेहद भीड़ से भरा हुआ। छोटे मोटे काम कर कर दिन वो गुजारा करते थे, लेकिन सिनेमा के जो सपना था ना, जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का जो सपना था और जुनून था, उन्हें मरने नहीं दिया प्रमोद जी ने। उन्होंने मशहूर निर्देशक राज खोसला के साथ फिल्म मिलाप 1955 में आई ये फिल्म, और फिल्म CID जो कि 1956 में थी, इन फिल्मों में उन्होंने बतौर असिस्ट काम किया। और ऐसे ही जैसे हमने बात करी CID फिल्म की, तो आइए CID फिल्म से शमशाद बेगम की आवाज़ में सुनते हैं इस गीत को।

जी हाँ दोस्तों, हमने बताया कि बतौर असिस्ट काम किया प्रमोद चक्रवर्ती ने इस फिल्म में राज खोसला के साथ, और सीआईडी फिल्म से गीत रहा शमशाद बेगम की आवाज़ में, और इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने। और

संगीत दिया ओ पी नैयर ने, बेहद खूबसूरत गीत फिल्म सीआईडी से। और 1956 में बनी सीआईडी फिल्म के बाद आया साल 1958 का। जी हाँ, जब उन्होंने गुरुदत्त और जॉनी वॉकर के साथ सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर फिल्म 12 ओ क्लॉक में बतौर निर्देशन डेब्यू किया।

0: नहीं मैं खो गया यहीं कहीं जवां है रुस्तमा हंसी कहां है दिल किसे।
1: जी हाँ दोस्तों, ये गीत रहा 1958 में बनी फिल्म 12 o'clock से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बेहद खूबसूरत गीत और संगीत दिया इस गीत को ओपी नैयर ने। आप जुड़े हुए एक ही कलाकार से और आज के कलाकार हैं निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, 1958 और की बात चलते हैं 1962 की तरफ। प्रमोद जी ने अपने प्रोडक्शन हाउस प्रमोद फिल्म्स की नींव रखी 1962 में। 1964 में आई उनकी फिल्म जिद्दी। जी हाँ, इस फिल्म में जॉय मुखर्जी ने काम किया। आशा भोसले के साथ उन्होंने बेहद एक ये सफल फिल्म दी और खूबसूरत उन्होंने निर्देशन दिया इस फिल्म में। लेकिन 1966 में जो फिल्म आई लव इन टोक्यो, उसने तो इतिहास ही रच दिया।

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने की सुना 1966 में बनी फिल्म जापान, जी हाँ, लव इन टोक्यो फिल्म से। और अगर निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती के निर्देशन के कुछ खास बातों पर ध्यान दें तो विदेशों में जो शूटिंग है, जी हाँ, वो पहले भारतीय निर्देशकों में से थे जिन्होंने विदेशों में, जैसे कि जापान में, व्यापक रूप से शूटिंग की। और हेलीकॉप्टर से उन्होंने बहुत सारे शॉट लेने का भी प्रैक्टिकल

एक प्रैक्टिस की, और हर जोनर पर, जी हाँ, हर एक फिल्म उन्होंने, हर एक टाइप की फिल्म्स को बनाने का पूरा पूरा उनको श्रेय जाता है। और सबसे ज़्यादा जैसे कि रोमांटिक और कॉमेडी से भरपूर फिल्म की बात की जाए तो तुमसे अच्छा कौन है, एक्शन और थ्रिलर से भरपूर फिल्म की बात की जाए तो वो रही वॉरेंट, और सस्पेंस, जी हाँ, पासपोर्ट फिल्म को हम कैसे भूल सकते हैं, हर तरह का सिनेमा उन्होंने बनाया। और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी के साथ तो उनकी काफ़ी ट्यूनिंग को पसंद किया जाता था, वो काफ़ी इनके साथ में कंफर्टेबल रहते थे। उनकी शानदार फिल्में रहीं जुगनू, नया ज़माना, ड्रीम गर्ल और आज़ाद, ऐसी सुपर डुपर फिल्में प्रमोद चक्रवर्ती जी ने हमें दी। तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की इस फिल्म, जी हाँ, जुगनू फिल्म से इस गीत को सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं एक ही कलाकार से और कार्यक्रम में मैं हूँ आज आपके साथ चेतना। हम बात कर रहे थे मशहूर निर्माता निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती के बारे में। जी हाँ, उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपने पसंद किया होगा। लेकिन अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन आपसे मिलूंगी मैं कुछ ही मिनटों में लेकर कार्यक्रम। जी हाँ, लेकर कार्यक्रम मिलेंगे हम मैटिनी मेलेडी से। लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए इंद्रप्रस्थ चैनल और मुस्कुराते रहिए। पुरानी फिल्मों के जो गीत हैं उनका मज़ा लेते रहिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार और स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त दोपहर के 2:59 और 40 सेकंड हुए हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और ठीक 3 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज़।

आप जुड़ गए हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज के साथ। दोपहर के 3 बज चुके हैं और लगभग आधे घंटे के इस कार्यक्रम में करेंगे 70 के दशक के कुछ गीतों की बातें और उस दशक में बनी कुछ फिल्मों के बारे में जानेंगे। मैं हूं आपके साथ चेतना।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप गीत सुन रहे हैं। जी हाँ, 1970 के दशक में बनी फिल्म उमराव जान से। कयाम ने इस फिल्म को जो है, इस गीत को जो है वो संगीत दिया और बेहद सफल फिल्मों में से रही ये फिल्म भी। बेल बॉटम्स पैंट्स, जी हाँ, बड़े बड़े कॉलर वाली शर्ट्स से हमें याद आता है, जी हाँ, वो 1960 और 70 का दशक है। बड़ा सा आँखों पर चश्मा और कानों में गूंजती हुई आर डी बर्मन की कुछ धुनें, जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे हम बिल्कुल उसी वाले दशक में पहुंच गए हैं, जैसे एक टाइम मशीन की घड़ी को पीछे घुमा दिया जाता है और हम लैंड हो गए 1970 के दशक में। वो दौर था जब भारतीय सिनेमा ने एक नई करवट ली। एक तरफ राजेश खन्ना का जादुई रोमांस था, तो दूसरी तरफ एंग्री यंग मैन बनकर उभरे अमिताभ बच्चन।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे 1970 के दशक में बनी कुछ फिल्मों के बारे में। हम बात कर रहे थे दशक में कौन से हीरो थे जिन्होंने अपने ड्रेसिंग सेंस से लोगों के दिलों पर एक छाप सी छोड़ी। अगर बात की जाए 70 के दशक की वाकई में, तो राजेश खन्ना, जी हाँ, अभिनेता राजेश खन्ना के साथ काफ़ी फिल्में इस दशक में देखने के लिए मिली। कटी पतंग, अमर प्रेम जैसी फिल्मों ने देश के हर युवा को देखा जाए तो प्यार करना सिखाया, और राजेश खन्ना का सिर झुकाकर मुस्कुराने की जो अदा थी उस पर तो पूरा देश ही फिदा था।

हाँ दोस्तों, अभी आपने गीत सुना सलील चौधरी के संगीत में बना हुआ, और ये रही फिल्म आनंद मुकेश की आवाज़ में। 70 के दशक की अगर बात की जाए तो हम राहुल देव बर्मन को, यानी हमारे प्यारे पंचम दा को हम कैसे भूल सकते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आदि बर्मन पंचम दा ने इस दशक में कोई नया तड़का ना डाला हो। इंडियन म्यूज़िक में वेस्टर्न रॉक हो, जैज़ हो या कैबरे म्यूज़िक का जो तड़का लगाया ना, वो 1970 से लगना शुरू हो गया था। और इन गीतों पर हर कोई झूमने के लिए जो ना बिल्कुल आमादा हो गया था कि भाई ऐसा संगीत था कि 1970 के दशक में हमें ऐसे गीत भी मिले।

जी हाँ दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं मैटिनी मेलेडीज़ के गीतों के साथ। जी हाँ, गोल्डन ईरा की जो गीत थे उनसे हम जुड़े हुए हैं समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार। 3:17 हो चुके हैं और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। एक तरफ 1970 के दशक में थी दम मारो दम, जी हाँ महबूबा ओ महबूबा जैसी धुनें ने एक तरफ इतना शोर मचा रखा था कि बस, लेकिन दूसरी तरफ तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, बहुत ही भावुक और शांत संगीत। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन सभी आवाज़ों ने पंचम दा के गीत जो है ना उन्हें अमर कर दिया। चलिए सुनते हैं 70 के दशक में इस अगले गीत को।

जी हाँ दोस्तों, 1970 का दशक। जी हाँ, ये रहा गोल्डन ईरा मैटिनी मेलोडीज का। 70 का दशक मल्टी स्टारर फिल्मों का था। अमर अकबर एंथनी की बात की जाए, शोले फिल्म या फिर यादों की बारात जैसी फिल्मों ने सिनेमा घरों में इतिहास रचा। टॉकीज के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती थी टिकट्स के लिए, ब्लैक में टिकटें खरीदी जाती थी, और रोमांस का दौर था वो, उसकी बात ही कुछ अलग थी। इस दशक के अंत तक बप्पी लहरी

और मिथुन चक्रवर्ती के साथ भारत में डिस्को युग की भी शुरुआत हो चुकी थी। और दोस्तों कहें कि 1970 का दशक जो था ना, वो रंगीन और मस्ती भरी यादों को तरोताज़ा करता है। नगमे बेहद खूबसूरत थे 70 के दशक में। जी हाँ, एक मिक्स सा, एक संगीत कहें कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें भावनाएं भी थी, जैज भी था, एक डिस्को भी था, हर एक तरीके का म्यूज़िक संगीत हमें इस दशक में सुनने के लिए मिला।

महबूब की मेहंदी फिल्म से गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार दोपहर के 3:24 हो चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं मैटिनी मेलोडीज़ के साथ में। और कार्यक्रम जो है ना वो अंतिम पड़ाव पे है। आपको छोड़े जा रही हूँ इस आखिरी गीत के साथ, जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त चेतना को अनुमति दें। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त दोपहर के 3:29 और पूरे 30 सेकंड हुए हैं। अब से कुछ ही देर में यानी 3:30 पर आप जुड़ेंगे उर्दू के कार्यक्रम उर्दू मजलिस से, जिसमें आज का स्पेशल प्रोग्राम रहेगा रक्षाबंधन पर। 4 बजे आप जुड़ेंगे समाचारों से और 4:10 तक आप समाचारों के साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल जो स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त है वो 3:30 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

सामेन, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। इन त्यौहारों में मोहब्बत और पाकीज़गी से भरपूर एक त्यौहार रक्षाबंधन है, जिसको राखी का त्यौहार या सलोनो भी कहते हैं। ये त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार मोहब्बत और इंसानियत का सबक देने वाला त्यौहार है। राखी सिर्फ धागा नहीं है, बल्कि धागों की ये वो मजबूत डोर है जो दिलों को जोड़ती है, रिश्ते में मिठास पैदा करती है, मोहब्बत को फरोग देती है। यानी रंग बिरंगे धागों की ये मुकद्दर

दूसरे के करीब लाने का काम किया है। इसी खूबसूरत जज्बे की एक मिसाल है रक्षाबंधन। राखी का यह छोटा सा धागा देखने में तो मामूली जरूर है, मगर इसके साथ जज्बात की एक पूरी दुनिया वाबस्ता है। इसमें बहन की मोहब्बत है, भाई के लिए उसकी दुआ है, भाई की तरफ से हिफाजत का अहद है, और सबसे बढ़कर एक दूसरे को सुख दुख में शरीक रहने का एक जज्बा है। लेकिन अगर हम रक्षाबंधन को सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधने की रस्म समझें, तो शायद हम इस त्योहार के असल मायने को बहुत महदूद कर देंगे। रक्षाबंधन दरअसल मोहब्बत, एतमाद, वफादारी, हिफाजत और बाहमी जिम्मेदारियों का त्योहार है। अगर हम तारीख की सफहात पलटें, तो पता चलता है कि हिंदुस्तान मुआशरे में हिफाजती धागा या मुकद्दस धागा बांधने की रिवायात बहुत पुरानी है। मुख्तलिफ मजहबी रस्मों और सामाजिक तहजीब में इस धागे को हिफाजत, दुआ और नेक तमन्नाओं की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। यानी धागा हमारे यहाँ सिर्फ एक धागा नहीं रहा है, यह कभी दुआ बना है, कभी अहद बना है, कभी रिश्तों की निशानी बना है और कभी लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का जरिया। रक्षाबंधन से मुतालिक कई कदीम और आवामी दास्तान भी हिंदुस्तानी मुआशरे में मशहूर हैं। श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी रवायात हो या दूसरी आवामी दास्तान, इन तमाम कहानियों में एक बुनियादी जज्बा नजर आता है और वो है मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े होना। हिंदुस्तानी तारीख से जुड़ा रानी कर्णावती और बादशाह हुमायूं का वाकया भी अक्सर रक्षाबंधन के हवाले से बयान किया जाता है। हालांकि इस वाकये की तारीख, हैसियत और इसकी कुछ तफसील के बारे में मुहक्किकीन के दरमियान इख्तिलाफात पाया जाता है, लेकिन आवाम की याददाश्त में यह किस्सा भाईचारे और हिफाजत की अलामत के तौर पर जिंदा रहा है और यही हिंदुस्तानी तहजीब की दिलकशी है। यहाँ तारीफ सिर्फ किताबों में महफूज नहीं रहती, बल्कि लोक रवायतों, किस्सों और यादों के जरिए नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती रहती है। आमतौर पर यह बहन और भाई के बीच का त्यौहार है, लेकिन इसका दायरा सिर्फ खून के रिश्तों तक महदूद नहीं है। अपने सगे भाई बहन एक दूसरे के साथ ये त्यौहार मनाते हैं, मगर जो लोग खून के रिश्तों से नहीं जुड़े होते लेकिन एक दूसरे को अपना भाई बहन मानते हैं, वो लोग भी इस राखी को मनाते हैं। यहाँ तक कि बहनें अपनी हिफाजत करने वाले कुछ अहम लोग जैसे कि फौजी, पुलिस और बुजुर्गों को भी अपनी हिफाजत और इज्जत की अलामत के तौर पर राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत हिंदू रीति रिवाज से हुई है, लेकिन वक्त के साथ यह तहजीबी कल्चरल त्यौहार बन चुका है और किसी एक मजहब तक महदूद नहीं है। सिख और जैन बिरादरी में भी यह त्यौहार मोहब्बत, हिफाजत और रिश्तों की इज्जत के तौर पर मनाते हैं। हिंदुस्तान और दीगर मुल्कों में मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और दूसरे मजहब के लोग अपनी मुंह बोली बहनों से राखी बंधवाते हैं और उनकी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरती यह है कि यहाँ एक ही त्यौहार मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अंदाज में मनाया जाता है। रक्षाबंधन भी इससे मुस्तस्ना नहीं। राजस्थान में सिर्फ भाई को ही नहीं बल्कि भाभी की चूड़ियों पर भी राखी बांधी जाती है, जिसे लूम्बा राखी कहते हैं, जिसे बनाने का तरीका भी कुछ खास और अलग होता है। इसे एक लटकन की तरह डिजाइन किया जाता है। इसमें गोटा पट्टी का काम, रंग बिरंगे रेशम के धागे और मोती और शीशों का इस्तेमाल किया जाता है। मगरबी बंगाल, वहां पर रक्षाबंधन को झूलन पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ की राखी भी अपनी शानदार कारीगरी के लिए जानी जाती है। महाराष्ट्र के किनारा पट्टी इलाकों में इसे नराली पूर्णिमा कहते हैं, जहाँ समुन्द्र देवता की पूजा की जाती है। इसे बनाने के लिए नारियल के रेशों और ऊन से खास राखी बनाई जाती है। यूपी और बिहार में पूजा का पवित्र लाल पीला धागा और उसमें हल्दी चंदन लगाकर सबसे पाक और कल्चरल राखी तैयार की जाती है, जिसे मोली राखी के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, भाई की नजरें उतारती हैं, मिठाइयाँ खिलाती हैं और दुआएं दी जाती हैं, और भाई अपनी बहन को तोहफे पेश करते हैं। लेकिन इस रस्म के पीछे सिर्फ एक दिन की खुशी नहीं होती। कई घरों में यह मायके की याद, भाई बहन की मोहब्बत और खानदानी रिश्तों की तजदीद का मौका होता है। भाई बहन जो शायद रोजमर्रा की मसरूफियत में एक दूसरे को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते, इस दिन फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगर हम अपनी बहनों की हिफाजत की बात करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई मुश्किल के वक्त में अपनी बहन का साथ खड़ा हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि बेटी को तालीम मिले, लड़की को अपनी पहचान बनाने का मौका मिले। इसी सिलसिले में भारत सरकार की कई पहलें तालीम, सेहत, हिफाजत, खुद मुख्तारी पर जोर देती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पैगाम इसी सोच को मजबूत

0: बताता है कि बेटी को सिर्फ मजबूत महफूज रखना ही नहीं बल्कि उसे पढ़ाना आगे बढ़ाना भी समाज की जिम्मेदारी है। अगर राखी का मतलब हिफाजत है तो किसी बेटी को स्कूल तक पहुंचाना भी हिफाजत है। अगर राखी का मतलब मुस्तकबिल की फिक्र है तो उसकी तालीम में मदद करना भी हिफाजत है। और अगर राखी का मतलब उसके चेहरे पर मुस्कान देखना है तो उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका भी देने उसी जज्बे का हिस्सा है। इसी तरह राखी के दिन भाई अपनी बहन को तोहफा देता है, लेकिन अगर उस तोहफे के साथ साथ उसके मुस्तकबिल की फिक्र भी जुड़ जाए तो इस रिश्ते का मतलब और गहरा हो जाता है। किसी बहन को महज सहारा देना बल्कि उसे इस काबिल बनाना कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके, यही असल मजबूती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने करियर, तालीम, रोजगार और दूसरी जिम्मेदारियों में इस कदर मसरूफ हैं कि कई बार एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाते। भाई किसी दूसरे शहर में नौकरी कर रहा है, बहन किसी और शहर में तालीम या रोजगार के सिलसिले में रह रही है। ऐसे में राखी कभी कभी डाक के जरिए पहुंचती है, कभी कूरियर के जरिए और कभी वीडियो कॉल के जरिए। टेक्नोलॉजी के फासले तो कम कर दिए हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, रिश्ते मोबाइल की स्क्रीन से नहीं दिल की गहराई से जिंदा रहते हैं। वीडियो कॉल चेहरे को करीब ला सकती है, मगर दिल की दूरी को सिर्फ मोहब्बत और खुलूस ही कम कर सकता है। इसीलिए रक्षाबंधन हमें सिर्फ राखी बांधने का नहीं बल्कि रिश्तों की तजदीद का मौका देता है। रक्षाबंधन का पैगाम सिर्फ भाई बहन तक ही महदूद नहीं है, हमारी गंगा जमुना तहजीब में रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत और इंसानियत पर रही है। हमारे शहरों, कस्बों और गांवों में मुख्तलिफ मजाहिब के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते आ रहे हैं। ईद की सिवैयाँ हों या दिवाली की मिठाई, होली के रंग हों या रक्षाबंधन की राखी, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होना हमारी साझी तहजीब का खूबसूरत पहलू रहा है। रक्षाबंधन इसी साझी तहजीब के हवाले से हमें ये पैगाम देता है कि इंसानी रिश्ते मजहबी सरहदों से बड़े होते हैं। मोहब्बत की कोई जबान नहीं होती, एतमाद का कोई मजहब नहीं होता और इंसानियत की कोई सरहद नहीं होती। इस रक्षाबंधन पर हम सिर्फ एक रस्म अदा ना करें बल्कि अपने रिश्तों की तरफ दोबारा पलट कर देखें। जिनसे हम नाराज़ हैं उनसे बात करें, जिनसे दूर हैं उन्हें याद करें, जिन्हें हमारी ज़रूरत है उनके लिए वक्त निकालें, अपने भाई बहन के ख्वाबों को समझें, उनकी कामयाबी में अपनी खुशी तलाश करें और रिश्तों में मोहब्बत, खुलूस और एतमाद को जगा दें। क्योंकि राखी की असल ताकत उस धागे में नहीं बल्कि उस जज्बे में है जो धागे को बांधने वाले दो दिलों में मौजूद होता है। हमें यह याद दिलाता है कि ज़िंदगी में कितनी भी मसरूफियत क्यों ना हो जाए, रिश्तों की कदर कभी कम नहीं होनी चाहिए। सिर्फ कलाई पर राखी ना बांधिए, मोहब्बत की डोर बांधिए, एतमाद की डोर बांधिए, एहतराम की डोर बांधिए और एक ऐसा अहद कीजिए कि वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, फासला चाहे कितना भी बढ़ जाए, मगर दिलों के दरमियान का ये रिश्ता कभी कमज़ोर ना पड़े।
1: समीन, अभी आप मोहतरमा इशरत चौधरी से उनकी तकरीर सुन रहे थे। मौजू था रक्षाबंधन, इंसानी रिश्तों की मजबूत डोर।

रक्षाबंधन पर अभी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत नगमा। सामीन, रक्षाबंधन यानी राखी का ये खूबसूरत त्यौहार बरसात की यादों का एक तोहफा है और सावन की रिमझिम बारिशों के दिनों में ये त्यौहार आता है। हरियाली छाई होती है और दिल को लुभाने वाला हंसी समा होता है। दरअसल ये त्यौहार बहनों को अपने भाइयों के तई अपनी बेलौस मोहब्बत के इजहार का मौका फराहम करता है। यानी पुरकशिश रेशम के धागों से बनी राखी वो अपने भाइयों की कलाई पर बांधती हैं और बदले में वो उनसे अपनी हिफाजत या रक्षा की ख्वाहिशमंद होती हैं। भाई भी नहायत खुशी और फख्र से बहनों से राखी बंधवाते हैं और उन्हें अपनी मोहब्बत और उनके तहफ्फुज़ का यकीन दिलाते हैं। बहन तिलक की थाली सजा कर लाती है, भाई के तिलक लगाती है, मुँह मीठा कराती है और भाई बहन को कोई तोहफा या रुपये देता है। रक्षाबंधन के हवाले से हमारी ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इससे कबल आइए शोभना राव की आवाज़ में सुनते हैं एक खूबसूरत गज़ल। कलाम है जिगर मुरादा।

समीन भाई बहन का रिश्ता एक मुकद्दस रिश्ता है जो हर रिश्ते से बढ़कर है। इसमें जो मिठास है वो किसी रिश्ते में नहीं। इसकी महक बहुत अनोखी, निराली और दिलकश है। राखी के रंगीन कच्चे धागों में वो ताकत है जो हालात का रुख मोड़ सकते हैं, अमन आश्ती का पैगाम दे सकते हैं। राखी का त्यौहार मुकद्दस रिश्तों के जज्बों के इजहार के अलावा सबके लिए खलुस व मोहब्बत का एक पैगाम है। इस मौके पर बहन भाई चाहे कितने भी दूर हों, फासले जगह के हों या दिलों के, राखी दूरियों को ख़त्म करके उन्हें करीब ले आती है और ये अटूट बंधन मोहब्बत का गहरा रंग चढ़ा देता है। और आइए अब जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में सुनते हैं ये खूबसूरत गज़ल।

समीन रक्षाबंधन हमारे मुल्क का एक अहम और खूबसूरत त्यौहार है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र, खुशी और कामयाबी के लिए दुआ करती है। भाई भी अपनी बहन की हिफाजत और उसकी खुशियों का ख्याल रखने का वादा करता है। ये त्यौहार हमें याद दिलाता है कि बहन भाई का रिश्ता सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि मोहब्बत, एतमाद और एक दूसरे के सहारे का रिश्ता भी है। ज़िंदगी में चाहे कितनी ही मसरूफियत क्यों ना हो, हमें अपने रिश्तों के लिए वक्त ज़रूर निकालना चाहिए।

सामीन, अभी आप रक्षाबंधन के हवाले से हमारा ये खसूसी प्रोग्राम सुन रहे थे। करती वो पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। शाम के 4 बजने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता हैं। नेपाल के सुरक्षाकर्मियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षाकर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भारतीय नागरिकों की स्थिति और उनकी सलामती के बारे में नई जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय के संबंधित विभागों ने नेपाल भेजी जाने वाली राहत सामग्री के बारे में जानकारी दी है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वित्त मंत्री सीतारामन शिकागो में प्रमुख निवेशकों

साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमरीका व्यापार और निवेश साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा होगी। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। सरकार के मूल्य नियंत्रण वाला प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिल्ली के एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। दंपत्ति पर वर्ष 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपत्ति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देशभर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 311 अंक बढ़कर 77,265 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 85 अंक की बढ़त से 24,176 दर्ज हुआ। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, वक्त शाम के 7:10 हुए हैं और आइए जान लेते हैं गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित जानकारियाँ। लापता व्यक्ति का नाम है श्रीमती पूजा, पत्नी कृष्ण निवासी। ये ग्राम बिसरक जनपद गौतम बुद्ध नगर से लापता है। आयु 20 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, शरीर की बनावट कमजोर, चेहरे का रंग गेहुआ और आंख नाक कान औसत। अगर आप इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी को प्राप्त करते हैं तो प्रभारी निरीक्षक थाना बिसरक गौतम बुद्ध नगर को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम है श्रीमती नीलम, आयु 28 वर्ष, शरीर की बनावट औसत और कद 5 फीट 2 इंच। आप इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करते हैं तो थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम है राघव दीक्षित, पुत्र अजय कुमार दीक्षित। ये 16 अगस्त 2025 से अपने निवास स्थान से लापता हैं। आयु इनकी 23 वर्ष, शरीर की बनावट औसत, कद 5 फुट 7 इंच। अगर आप इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं तो आप जितेंद्र कुमार निरीक्षक थाना फेज 3 नोएडा को सूचित कर सकते हैं। अगले लापता व्यक्ति का नाम है सोनम और इन्हें निवास स्थान पर आखिरी बार 16 जुलाई 2026 को देखा गया। आयु 18 वर्ष, शरीर की बनावट औसत और कद 5 फुट। इनसे संबंधित जानकारी आप थाना बिसरक गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद को दे सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति का नाम राखी, इन्हें आखिरी बार इनके निवास स्थान हरोला सेक्टर 5 में 17 जून 2026 को देखा गया। आयु 19 वर्ष, शरीर की बनावट मजबूत, कद 5 फुट 3 इंच, रंग गेहुआ। इनसे संबंधित जानकारी आप उप निरीक्षक गौतम रोहित कुमार थाना फेस 1 नोएडा गौतम बुद्ध नगर को दे सकते हैं।

लापता व्यक्ति का नाम श्री नरेश त्यागी, पुत्र वेद प्रकाश त्यागी। इन्हें आखिरी बार न्यू पटेल टाउन बिस्रक गाजियाबाद में देखा गया। आयु 60 वर्ष, शरीर की बनावट औसत और कद 5 फुट 8 इंच। विशेष पहचान में ये मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। अगर आप इनसे संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करते हैं तो आप न्यू पटेल टाउन थाना बिस्रक जनपद गौतम बुद्ध नगर को सूचित कर सकते हैं। हुए व्यक्ति का नाम कपिल कुमार, पुत्र कंवरपाल और आयु इनकी 23 वर्ष, रंग सांवला और कद 6 फीट। आप इनसे संबंधित जानकारी गौतम बुद्ध नगर थाना को दे सकते हैं। अगले लापता व्यक्ति का नाम प्रियंका और आयु 22 वर्ष, शरीर की बनावट सामान्य, कद 5 फुट। अगर आप इनसे संबंधित किसी भी जानकारी को प्राप्त करते हैं तो आप बिस्रक गौतम बुद्ध नगर को दे सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी लापता व्यक्तियों से संबंधित। अगर आप इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करते हैं तो आप बताए गए निरीक्षक थाना में दे सकते हैं या फिर आप किसी भी नज़दीकी थाने में ज़रूर सूचित करें। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त शाम के 4:15 होने को है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवानी।

0: शब्दों से संसार चल रहा, शब्दों से इंसान, शब्दों से ही स्वरूप बन रहा, शब्दों से सम्मान, शब्दों से सौहार्द बढ़ रहा, शब्दों से घमासान, शब्दों में पकवान बसे हैं, शब्दों में विषपान, शब्द बनाए शब्द बिगाड़े, शब्द बुने और शब्द उजाड़े, शब्द आदि है शब्द अंत है, शब्द में गीता और कुरान, शब्दों में संघर्ष छिपा है, शब्दों में विश्राम, शब्दों की तो रीत निराली, शब्दों में स्थित वेद पुराण। तो आइए आज फिर कुछ पुराने शब्दों से मिलते हैं और देखते हैं जब परंपरा आधुनिकता से मिलती है तो कितने नए अर्थ खिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूं आपके साथ अमोल और मेरी को प्रेजेंटर मनुश्रेया। आज 28 अगस्त है और आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके लिए भाषा क्या है, सिर्फ बोलने का तरीका या उससे कहीं ज्यादा?
1: अमोल, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब हम रोज देते हैं बिना उसके बारे में सोचे। हम जिस भाषा में किसी दोस्त को आवाज़ देते हैं, जिस भाषा पर घर पर प्यार जताते हैं, गुस्सा करते हैं, या जिस भाषा में पहली बार कोई कविता अच्छी लगती है, वह भाषा धीरे धीरे हमारी मेमोरी का हिस्सा बनती है।
0: और मनुष्य, आज की पूरी बातचीत इसी बात के आसपास घूमेगी क्योंकि 28 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, आज विश्व संस्कृत दिवस है। लेकिन हम संस्कृत को सिर्फ एक पुरानी भाषा मानकर उसकी तारीफ नहीं करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी कहानी क्या है, भारतीय संस्कृति और साहित्य में उसकी जगह क्या रही।
1: और 28 अगस्त की तारीख साहित्य से भी जुड़ी है। आज ही के दिन 1896 में फराग गोरखपुरी का जन्म हुआ था। तो आज के इस एपिसोड में बात होगी पोइट्री, सिनेमा और भाषा की खूबसूरती की।
0: एंड मनुष्य, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आज तो राखी भी है। तो एक बात तो तय है, आज भाई बहनों की थोड़ी चुगली तो बनती है।
1: बिल्कुल अमोल, भाई बहन का रिश्ता भी कमाल का होता है। एक दूसरे को परेशान करने का हक भी सबसे पहले, तो दूसरी तरफ कोई परेशानी की स्थिति हो उसमें सबसे पहले साथ देना भी होता है।
0: और राखी आते ही एक सवाल हर भाई के मन में जरूर आता है, इस बार बहन के

0: लिए क्या गिफ्ट लिया जाए।
1: और हर बहन के मन में चलते देखते हैं इस बार क्या गिफ्ट आते हैं। आखिर राखी है, एक्सपेक्टेशंस तो बनती है।
0: लेकिन इन मजाक मस्ती के पीछे एक बहुत प्यारी सी बात भी है। भाई बहन का रिश्ता शायद उन रिश्तों में से है जहाँ प्यार जताने के लिए बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती।
1: हाँ, कभी छोटी सी लड़ाई, कभी बेवजह की नोकझोंक, और फिर कब ऐसे हो जाते कि जैसे कोई लड़ाई ही नहीं हुई।
0: रिश्ता थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, लेकिन हमेशा अपना।
1: और इसी रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात है साथ।
0: और इसी प्रेम के एहसास को बहुत खूबसूरत सी एक गीत अपने शब्द देता है, फिल्म हरे राम हरे कृष्णा का ये गीत, फूलों का तारों का।

0: नशा, अगर कोई लिसनर अभी हमसे पूछे कि संस्कृत दिवस पर सबसे पहली बात क्या जाननी चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे?
1: मैं कहूंगी कि सबसे पहले संस्कृत को एक सब्जेक्ट की तरह देखना बंद कीजिए। संस्कृत की परंपरा बहुत विशाल है। वैदिक साहित्य, उपनिषद, दर्शन, व्याकरण, काव्य, नाटक और अलग-अलग ज्ञान परंपराओं में इसका इस्तेमाल हुआ। इसलिए संस्कृत की कहानी केवल भाषा की कहानी नहीं, बल्कि विचार और साहित्य की भी कहानी है।
0: और मनुष्य, इसकी सबसे फैसिनेटिंग चीज़ों में से एक है इसकी ग्रामेटिकल ट्रेडिशन। पाणिनि का नाम आते ही भाषा को स्ट्रक्चर के स्तर पर देखने की एक बहुत सोफिस्टिकेटेड परंपरा सामने आती है।
1: सही कहा अमोल। पाणिनि की प्रसिद्ध व्याकरण किताब अष्टाध्यायी को देखकर आज का लैंग्वेज स्टूडेंट ये महसूस कर सकते हैं कि ग्रामर एक स्कूल में पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं, बल्कि लैंग्वेज के पीछे पैटर्न्स, रूल्स और रिलेशनशिप्स होते हैं जिसको हम सिस्टमैटिकली पढ़ सकते हैं।
0: बिल्कुल। और मनुष्य, संस्कृत की बात हो और कालिदास का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल। कालिदास इसलिए भी दिलचस्प हैं क्योंकि उनके साहित्य में प्रकृति और मानवीय भावनाएं बहुत खूबसूरती से मिलती है। मेघदूत में बादल को मैसेंजर बनाना आज भी कितना क्रिएटिव लगता है। आज हमारे पास इंस्टेंट मैसेजिंग है, तब इमेजिनेशन से ही क्लाउड को मैसेंजर बना दिया।
0: और आज का यक्ष शायद क्लाउड पर मैसेज अपलोड कर देता
1: और शायद रिप्लाई का इंतजार करते करते स्टेटस भी लगा देता। लेकिन मजाक से अलग देखे तो बेसिक ह्यूमन इमोशंस वही है, दूर किसी व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने की इच्छा। टेक्नोलॉजी जरूर बदली, मनुष्य की वो जरूरत नहीं।
0: अच्छा, तो मनुष्य, यूथ के लिए संस्कृत का एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए? ग्रामर?
1: ये जरूरी नहीं है अमोल। आई फील क्यूरियोसिटी एक बेटर एंट्री पॉइंट है। कोई छोटी कहानी पढ़िए, किसी श्लोक का अर्थ समझिए या फेमिलियर शब्दों का ओरिजिन खोजिए। पहले लैंग्वेज से डर हटाइए, फिर धीरे धीरे डेप्थ में जाइए।
0: और टेक्नोलॉजी ने एक्सेस भी आसान किया है।
1: बिल्कुल। आज

0: आजकल डिजिटल टेक्स्ट, ऑनलाइन रिसोर्सेस, प्रोनंसिएशन रिसोर्सेस की वजह से आज कोई भी घर से शुरुआत कर सकता है।
1: तो मनुष्य, आज के विश्व संस्कृत दिवस का मैसेज अगर एक लाइन में देना हो?
0: सो आई वुड से परंपरा को सिर्फ याद मत कीजिए, उसे पढ़िए, समझिए, उससे सवाल कीजिए और अपने समय में उसका नया अर्थ खोजिए।
1: और शायद यही वजह है कि हाँ, आज हम संस्कृत को अतीत से निकाल कर माइक्रोफोन तक ला रहे हैं।
0: तो संस्कृत की इस खूबसूरत यात्रा में थोड़ा विराम लगाते हैं और माहौल को थोड़ा संगीत से सजाते हैं। सुनिए दिल्ली छे का चर्चित गीत मसकली।

0: तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, मन से माइक्रोफोन तक। और आज का सेगमेंट एक ऐसे स्टोरी टेलर की बात होगी जिनकी स्टोरी सिर्फ कैमरे के सामने या पीछे तक सीमित नहीं रही, बल्कि साहित्य, पत्रकारिता, टेलीविजन और सिनेमा, इन सभी रास्तों से होकर गुजरी है।
1: हम बात कर रहे हैं अतुल गंगवार जी की, जिनकी बातचीत हो रही है संतोष द्विवेदी जी से।
2: श्रोताओं नमस्कार। राष्ट्र के निर्माण में साहित्य, संगीत, सारी चीजों का अपना एक योगदान होता है, जो कि युवाओं को गढ़ते हैं, उनके सपनों को एक आकार देते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज हम जुड़ने वाले हैं नेशनल अवार्ड विनर अतुल गंगवार जी के साथ, जो कि फिल्म निर्माता भी हैं, निर्देशक भी हैं और एक सजग पत्रकार के तौर पर भी आप समाज में अपना योगदान देते हैं। अतुल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी धन्यवाद, आभार।
2: अतुल जी, आपने एक लंबी यात्रा तय की है, नेशनल अवार्ड तक आप पहुंचे हैं। तो जब आपने शून्य से जो यात्रा शुरू की थी, जो आज शिखर तक पहुंची है, तो इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? उस युवा अतुल को कैसे एक बार याद करके हमारे युवा श्रोताओं को बताएंगे कि जब उन्होंने फिल्म, डॉक्यूमेंट्री इस विधा में कदम रखा था और आज आप नेशनल अवार्ड विनर हैं, आपको राष्ट्रपति महोदया से पुरस्कार मिलने वाला है, कैसे फील कर पा रहे हैं एक युवा अतुल और एक फिल्म मेकर अतुल गंगवार?
3: एक बहुत लंबी यात्रा है सच में ये, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो लोग कुछ सोचते हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, मैं अगर अपनी कल्पना करूं, जब मैं युवा था तो मन में कहीं ना कहीं ये था कि कुछ ऐसा करूं जो देश के लिए, समाज के लिए, मेरी फैमिली के लिए कुछ ऐसा करूं कि लोगों को

0: लगे कि हाँ, क्योंकि युवाओं के बारे में लोगों को मानना है कि उनके पास कई बार अपनी सोच नहीं होती, या तो बहुत स्टूडियस होते हैं तो पढ़ाई में लगते हैं तो पढ़ते रहते हैं, या फिर राजनीति अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, या फिर अलग अलग तरीके से मतलब युवाओं के बारे में। और जैसे आज हमें लगता है कि आज हम देखते हैं आज के माहौल में तो लोग कुछ जेंजी को बड़ा अच्छा पॉजिटिव मान रहे हैं, कुछ लोग मान रहे हैं भ्रमित है, दिशाहीन है। तो हर युग में ऐसा ही हुआ है, मेरे समय में भी ऐसा ही था। हमारे जो वरिष्ठ होते थे, हमारे माता पिता या हमारे बड़े रिश्तेदार, उनको लगता था कि भाई लड़का क्या करेगा, सरकारी नौकरी ना मिले तो क्या जीवन है। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, जीवन बहुत है। मेरे पिताजी पत्रकार थे तो मुझे लगता था कि रास्ते और भी हैं। तो उस समय टेलीविजन क्योंकि नया नया आया था, तो टेलीविजन नया आया था तो उसमें स्कोप था, प्रिंट में नहीं था उतना, क्योंकि भाई वहाँ धुरंधर लोग थे और बड़ी सारी और चुनौतियां थी। और मेरे पिताजी का कहना था कि मैं खुद पत्रकार हूँ तो मेरे को तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ कि मैं कह सकूँ तुम मेरे बेटे हो। तो ये चैलेंज था। तो हमने अपनी दिशा बदल ली, क्योंकि हर युग में युवा बागी होता है। तो हमने कहा चलो छोड़िए, अब प्रिंट में आएंगे ही नहीं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले गए। तो हमारी मुलाकात हुई, हमारे एक मित्र ने हमें रिकमेंड किया, तो हमने बैक फिल्म ज्वाइन किया। तो वहां से हमने अपना सफर शुरू किया, उन्होंने हम पे भरोसा किया। तो धीरे धीरे एक सफर यहाँ से शुरू हुआ। और मुझे लगता है कि जिस फील्ड में हम हैं, और मुझे लगता है अगर युवाओं को भी अगर सिनेमा के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में, फिल्म निर्माता के क्षेत्र में, अगर इसमें कुछ भी करना है तो एक खुला दिमाग और एक खुली सोच रखकर चलना चाहिए। अपने मन में बड़ी इच्छा थी और ये पैशन भी था सिनेमा के बारे में, बचपन से बड़ा शौक था। तो हमने जब टेलीविजन मिला तो हमने उसको खूब एंजॉय किया। लोग कहते थे 8 घंटे की शिफ्ट होती है, हम 16 घंटे 24 घंटे हम वहीं रहते थे। जब तक हमारी शादी नहीं हुई तब तक हमने कभी घंटे काउंट ही नहीं किए कि इतने घंटे नौकरी करने तो इतने घंटे में करना चाहिए। लोगों से बहुत सीखने को मिला, क्योंकि इस फील्ड में सबसे बड़ी चीज है आपको बहुत लोग मिलते हैं। और अगर आप सीखने की इच्छा करें तो ऐसे ऐसे व्यक्तित्व मिले, ऐसे ऐसे लोग मिले जो मेरे लिए एक समय में आप समझिए सपना थे। मैं जब अपना पहला प्रोग्राम एज ए प्रोड्यूसर अदवी कॉकटेल प्रोड्यूस कर रहा था तो निदा फाजदी साहब से मेरा परिचय हुआ, निदा फाजदी साहब के साथ, टॉम वॉल्टर साहब के साथ परिचय हुआ। ये लोग वो थे जिन्होंने जीवन को बहुत जीवंतता के साथ जिया हुआ था। उनके पास इतने अनुभव, इतने किस्से थे जीवन के बारे में जो मुझे हमेशा एनर्जाइज करते थे। जब मेरा मॉरल डाउन भी होता था, मुझे लगता था यार क्या कर रहा हूँ, थक गया हूँ, सफलता नहीं मिल रही, तो मैं सोचता था यार निदा साहब कैसे सोचते हैं, टॉम वॉल्टर साहब कैसे सोचते हैं। फिर मैं कई सारे एक्टर्स, क्योंकि उस शो में बड़े लोग आते थे, जॉनी वॉकर साहब, पता नहीं आज की पीढ़ी परिचित है कि नहीं, मुकरी साहब, जगदीप, हसन कमाल साहब, बड़े शायर, बशीर बद्र साहब, ऐसे लोग आते थे। तो बड़ा सीखने को और बड़ा जानने को मिलता था। तो वो एक एनर्जी जो मिलती गई, जब मैंने ये निदा साहब वाली डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस की तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि जो 26 साल का सफर सन 2000 से लेकर आज 2026 तक, ये जो निदा साहब के साथ एक रिश्ता बना, जो एक सफर तय किया, मुझे लगता है कि 26 साल बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इतने बड़े आसमान में एक छोटा सा तारे की तरह अपना भी एक मुकाम हमें मिला है, हमारी टीम को मिला है।
1: जी बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। जैसे आपने शुरुआत की पत्रकारिता से, मीडिया की शक्ति तो है ही, जिन लोगों को हम टीवी पर देखते हैं उनके साथ आप रूबरू हो सकते हैं। तो जैसे कल आपके रोल मॉडल निदा फाजली साहब या टॉम वॉल्टर साहब, या जैसे आपने और नाम गिनाए वो रहे, वैसे आज आप पे अब जिम्मेदारी है आज की युवा पीढ़ी को रास्ता दिखाने का। जैसे आपने कहा भी कि रास्ते और भी हैं, तो ये रास्ते और भी हैं, अगर कोई युवा आपसे जानना चाहे तो कौन कौन से रास्ते बताएंगे आप उसको?
0: मतलब एक चीज और भी बताता हूँ कि मैं जब पढ़ता था तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी था। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन डूसू का मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा 92 में। मैं अगर अपने जीवन को कभी विविधता में भी देखता हूँ तो राजनीति, फिर टेलीविजन, फिर डॉक्यूमेंट्री, फिर प्रोग्राम एंटरटेनमेंट, सहारा में लंबे समय रहना, कुछ शोज को एंकर भी करना, बतौर एक्टर भी काम करना, तो मुझे लगता है कि जब मैं ये सारी चीजें देखता हूँ, और मुझे लगता है कि जब स्टूडेंट्स जब शिकायत करते हैं, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है, मेरा हमेशा से मानना ही है कि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। सबसे पहले तो यूथ को, जो युवा है, जो जो व्यक्ति किसी प्रोफेशन में आना चाहता है, उसको ये तय करना चाहिए कि उसके मन में क्या है। उसके परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक लड़ाई सबसे पहली ना अपने घर में शुरू होती है। मैं जब पॉलिटिक्स में था तो मेरे पिताजी को लगता था यार तुम जीवन में कुछ कर पाओगे क्या, कहीं कुछ मिलेगा क्या, डिग्री तुम्हारी तुम्हें कुछ दे पाएगी क्या, है ना। मैंने लिटरेचर में एमए भी किया लेकिन नहीं उसका इस्तेमाल हुआ। तो आज का जो दौर है उतना चिंता वाला नहीं है, क्योंकि आज ऑप्शन और अपॉर्चुनिटीज बहुत है। जब हम आए थे तब टेलीविजन क्योंकि नया था तो उस मीडियम में हमें काम मिल गया, करते करते सीखते सीखते हम आगे भी बढ़े, लेकिन एक्सपेंसिव चीजें थी उस समय। अगर हम सिनेमा के क्षेत्र में आते तो फिल्म पे काम करना होता था, तो फिल्म पे अगर आप काम कर रहे हैं तो 400 फीट का रोल है तो 10-12 हज़ार रुपए का आएगा, तो आपको कोई प्रोडक्शन करना है तो पैसा लगता था। फिर बाद में टेप्स पर आ गया,

0: जोश भरा। मैं याद करता हूँ किस्मत फिल्म का जो गीत है, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है ना। तो आज भी अगर हम इस मीडियम की बात करें तो ये अपने आप में बहुत सशक्त मीडियम है, देश के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, देश में आपके अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए। तो सिनेमा का हमेशा से योगदान रहा है समाज में। आप अगर याद करें तो कई ऐसी फिल्में बनी जिन्होंने सामाजिक जो आंदोलन है उनको हवा दी, उनको सशक्त बनाया, है ना। अगर आज़ादी की लड़ाई की बात करें, समाज में बड़े सारे परिवर्तन भी किए। और आज भी हम देखते हैं कि कई फिल्में इस तरीके की आती हैं जो छोटी छोटी समस्याओं को, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, क्योंकि सिनेमा कहें, रंगमंच कहें, यह एंटरटेनमेंट है और ये मैसेज एंटरटेनमेंट के साथ ही देता है। हमेशा से सिनेमा का योगदान रहा है। अब इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच होती है, अपनी अपनी बात को कहने का एक तरीका होता है। तो मेरा हमेशा से मानना ही है कि भाई युवाओं को इस माध्यम का सशक्त इस्तेमाल करना चाहिए। आज अपॉर्चुनिटी भी है उसके पास, क्योंकि उसके पास अपनी सोच को एक्सप्रेस करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए उसके हाथ में एक मोबाइल है। अगर आप वहां से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके माध्यम से अपने को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना काम दिखा सकते हैं, चीजें कर सकते हैं और लोगों को अपने बात से, अपने विचार से प्रभावित कर सकते हैं। मेरी लेकिन हमेशा से युवाओं से एक ही चीज रहती है कि आप सोचें, समझें और चिंतन करें। आज क्या है उससे ज्यादा आप ये सोचें भविष्य कैसा होगा। आज आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद मिलेगा। अगर हमारे से पहले वाले लोग अगर ऐसा नहीं सोचते कि आने वाला भारत कैसा होगा, आने वाला हिंदुस्तान कैसा होगा, तो फिर हम हर बार नई शुरुआत करते। तो आज हमारी युवा पीढ़ी के पास भी ये जवाबदारी और ये दायित्व है कि वो कुछ ऐसा करे जो आने वाले समय में देश के हित में, समाज के हित में हो, तो इस तरीके से उसको इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा देश के लिए भी और उसके लिए भी।
1: बिल्कुल अतुल जी, आपने बहुत अच्छी बात की। और सिनेमा भी समाज का एक तरीके से आईना ही होते हैं। तो मैं आपसे एक चीज और आगे बढ़ के जानना चाहूंगा, जो युवा हमें भी सुन रहे हैं और उनमें से कोई व्यक्ति अभिनेता बनना चाहता है, फिल्म मेकिंग से जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या तरीका होगा?
0: सबसे पहली बात तो बहुत सारे ऑप्शन और अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अगर आप अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है दिल्ली के अंदर, वहां पर आप आ सकते हैं, वहां पर आप काम कर सकते हैं, अभिनय कैसे करें वो सीख सकते हैं। पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट है, FTIA करके फिल्म इंस्टीट्यूट है, वहां पर आप जा सकते हैं, वहां पर भी आपको अभिनय और सिनेमा की टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। दिल्ली NCR के आसपास के लोगों के लिए रोहतक में एक बड़ा अच्छी यूनिवर्सिटी है, सुपुवा करके, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, जहां पे आपको सिनेमा, टेलीविजन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, काफी सारी विधाएं आपको वहां सिखाई जाती हैं। एक तो इस तरीके के इंस्टीट्यूट है, आप वहां जाकर सीख सकते हैं। दूसरा, आप अपने आप से भी सीख सकते हैं, देश में, समाज में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करें, उस चीज़ को देखें और किस तरीके का सिनेमा देश में, विश्व में बन रहा है उसको देखें। और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ें, क्या लिखा गया है, साहित्य पढ़ें, क्योंकि उसी में से आपको चीज़ें मिलती हैं, उसी में से आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं, किरदार मिलते हैं, और उसमें कुछ चीज़ों में आप अपने आप को विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, राजनीति से शुरू हुआ मैं, मेरे पास कोई, जैसे कहते हैं ना कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी टेलीविजन में आने की भी, मेरे पास ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं थी कि मैं कभी अभिनय भी कर पाऊंगा या कभी मैं प्रोडक्शन करूंगा या कभी मैं डॉक्यूमेंट्रीज डायरेक्ट करूंगा, ये कभी नहीं था। मैं काम करता गया, ऑब्जर्व करता गया, सीखता गया। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि सर पर बोझ ना ले, क्या है ये, मतलब इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, आपके अंदर अगर कुछ भी है, कुछ सोचते हैं, कुछ कहते हैं, आप राइटर बन सकते हैं, अच्छी कहानियां लिख सकते हैं। मतलब मेरी कहानी पे फिल्म भी बनी है, एक और कहानी दी रखी है, तो उम्मीद है कि अगले 2-4 महीने में उस पर भी फिल्म शुरू होगी। तो ये कहीं सीखा नहीं है मैंने, लेकिन आज की जनरेशन फॉर्चुनेट है कि उसके पास ये बड़े सारे एवेन्यूज खुले हुए हैं कि जहां पर वो सीख सकती है। लेकिन सीखने के बाद भी दिल और दिमाग आपका ही काम आएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ।
1: जी बिल्कुल, जैसे दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो इस सूरत को अगर आपको बदलना है तो जैसे अतुल गंगवार साहब ने कहा, पढ़ें और उसके बाद फिर एक्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अतुल गंगवार जी की क्रिएटिव जर्नी से जुड़े इस सफर के बाद अब जरा म्यूजिक का मूड बनाते हैं। सुनिए तू किसी रेल सी फिल्म मसान से।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आइए अब सुनते हैं निमिषा साई की टॉक, जिसमें वो बात करेंगी ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट इन रिलेशनशिप्स की।
1: मैं हूं निमिता, आप सबकी जैसी ही एक युवा जो आज भी ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट जैसे दो भारी भरकम शब्दों को समझने की कोशिश कर रही है। मैं आप सबको एक सिनेरियो के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। एक सेकंड के लिए ये इमेजिन करो कि आपके फोन वाइब्रेट करता है, मैसेज है, कहाँ हो, आप लिखते हो फ्रेंड्स के साथ और रिप्लाई आता है, कौन से फ्रेंड्स, फोटो भेजो। अब बताओ ये केयर लगता है या थोड़ा सा कंट्रोल। ऑनेस्टली मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि दोनों ही प्यार जैसे लगते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, कैसे पता चले कि कोई चीज प्यार है या पोजेशन। एंड आई प्रोमिस देयर विल बी नो लेक्चर्स, बस एक सोच जो होपफुली एपिसोड खत्म होने के बाद भी आपके साथ रह जाएगी। पहले बात करते हैं ट्रस्ट की, क्योंकि सबसे ज्यादा यही वर्ड कंफ्यूज करता है। हम सोचते हैं ट्रस्ट का मतलब है पार्टनर के पासवर्ड पता हो, लाइव लोकेशन पता हो, हर फ्रेंड का बैकग्राउंड चेक हो। लेकिन फनी बात यह है कि जितने ज्यादा प्रूफ मांगोगे ट्रस्ट उतना कम होता जाएगा। अजीब है ना, रियल ट्रस्ट एक्चुअली कुछ और है। ये है, मुझे पता है कि तुम सही हो, चाहे मैं देखूं या ना देखूं, बिना प्रूफ के, बिना चेक करे। और हाँ, इनसिक्योर फील होना इज वेरी नॉर्मल, सबको होता है। लेकिन डिफरेंस तब आता है जब हम अपनी इनसिक्योरिटी का बोझ दूसरे इंसान पर डाल देते हैं। तुम ये मत करो, उससे बात मत करो, मुझे प्रूफ दो। वो ट्रस्ट नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स को दूसरों के रूल्स बना देना है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई इनसिक्योरिटी फील हो, शायद सवाल ये पूछने वाला होगा, ये फीलिंग मेरी है या मैं इसे अपने पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रहा हूँ। एक चीज जो लोग बहुत कम पूछते हैं खुद से, वो ये है, मेरे पार्टनर को मुझसे प्यार तो है, पर क्या वो मेरी रिस्पेक्ट भी करता है। अलग सवाल है ना, और ज्यादा जरूरी भी। रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ पोलाइट बात करना नहीं है दोस्तों, ये है किसी की ओपिनियन सुनना जब वो डिफरेंट हो, किसी का नो एक्सेप्ट करना, किसी के करियर, दोस्त, टाइम, सबको स्पेस देना विदाउट मेकिंग इट अ कॉम्पिटिशन। एक लाइन जो हम सुनते रहते हैं, अगर वो मुझसे प्यार करता है तो वो तो ये चीज ऑटोमेटिकली करेगा, ये सुनने में जितना रोमांटिक लग रहा है एक्चुअली में उतना ही ज्यादा घातक प्रेशर है सामने वाले पे, क्योंकि आप सामने वाले को चॉइस नहीं दे रहे हो, आप उसकी चॉइस छीन रहे हो। एंड एक बात, डिसएग्रीमेंट का मतलब रिलेशनशिप फेल होना नहीं है, दो लोग अलग सोच

0: रख सकते हैं, अलग फील कर सकते हैं। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि फाइट में कौन जीता, सवाल ये होना चाहिए कि फाइट के बाद भी क्या हम एक दूसरे के डिग्निटी को बरकरार रख पाए। क्योंकि जब रिस्पेक्ट निकल जाती है एक रिलेशनशिप से, तो प्यार भी पोजेशन लगने लगता है। इसी के साथ एक रियल चीज पे आते हैं, टू बी ऑनेस्ट ये मुझे भी फील होता है, और वो है जेलसी। सबको होती है, टोटली नॉर्मल है, जेंजीज ने तो इसके लिए नया वर्ड भी ढूंढ लिया है। पार्टनर किसी की रील पे कमेंट करता है, किसी कलीग की तारीफ करता है, और अंदर से एक अलार्म बज जाता है, कुछ तो गड़बड़ है बॉस। यहाँ तक तो सब नॉर्मल है, फील करना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम उस फीलिंग को इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना देते हैं। फर्क समझना बहुत जरूरी है। मुझे थोड़ा इनसिक्योर फील हो रहा है, ये आपकी फीलिंग है, पर तुम उससे बात नहीं करोगे क्योंकि मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है। ये तो आप सामने वाले को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हो ना। पहले वाला आपके पार्टनर से एक कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक कर सकता है, और दूसरे वाला सामने वाले की फ्रीडम को एंड। और शायद ट्रस्ट का सबसे असली टेस्ट, सबसे रियल टेस्ट यही है, जब आप उसे कंट्रोल करने का ऑप्शन रखते हुए भी ना करो, उसे बात करना, कम्युनिकेट करना चूज करो। अब आते हैं जरूरी बात पर। कभी हम इतने इन्वेस्टेड हो जाते हैं रिलेशनशिप में कि हम उसके रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, पर कुछ चीजें प्यार के नाम पे जस्टिफाई कभी नहीं हो सकती। बार बार डिसरिस्पेक्ट करना, लोगों के सामने इंसल्ट करना, साइलेंट ट्रीटमेंट से पनिश करना, हर बात पे सामने वाले को गिल्ट ट्रिप करना, एंड बाउंड्रीज, बाउंड्रीज क्या होती हैं ये सब बोलना। एक सिंपल तरीका याद रखना जरूरी है, फाइट्स नॉर्मल है, आर्ग्यूमेंट्स नॉर्मल है, डिफरेंसेस इन ओपिनियन भी नॉर्मल है, बट वॉट इज नॉट नॉर्मल इज डिसरिस्पेक्ट, अब्यूज एंड डर। अगर कभी चूज करना पड़े रिश्ता बचाना है या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, तो माई फ्रेंड्स दिस शुड नेवर बी अ चॉइस। गो फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट वंस एंड फॉर ऑल, क्योंकि हेल्दी प्यार आपसे आपको खो देने की डिमांड कभी भी नहीं करता। अब आप मुझसे पूछेंगे कि निमिता आपने ये सब तो बता दिया कि क्या क्या आई ओपनर्स है एक रिलेशनशिप के, बट एक्चुअली में हेल्दी रिलेशनशिप होता कैसा है? शायद ये हर सेकेंड साथ रहने के बारे में नहीं है। मे बी दिस इज मोर अबाउट हैविंग योर ओन पर्सनल स्पेस, योर ओन ड्रीम्स, फ्रेंड्स, एक लाइफ जिसे आप चेरिश कर सके आउटसाइड ऑफ रिलेशनशिप। एवरी डे यू वेक अप एंड चूज ईच अदर, ये कह पाना है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, मैं तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे तुम्हारी बात सुननी है, सिर्फ अपनी बात सुनानी नहीं है। क्योंकि रिलेशनशिप का गोल दो लोग मिलकर एक इंसान बन जाना नहीं है, गोल ये है कि क्या दो इंसान एक दूसरे की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं साथ मिलकर। तो चाहे आप किसी को डेट कर रहे हो, किसी रिश्ते में हो, या बस समझने की कोशिश कर रहे हो कि प्यार होता कैसे है, दिस वन लाइन माई फ्रेंड्स, प्लीज रिमेम्बर दिस। ट्रस्ट रिश्ते की सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट उसे डिग्निटी देता है, और थोड़ा सा स्पेस उसे सांस लेने की जगह। और अगर एक लाइन में कहना हो तो शायद यही है, मैं तुम्हें अपना बनाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रह के भी तुम रहो। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना ये, जो हम अक्सर भूल जाते हैं। रिलेशनशिप्स में खुद को खोना नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट ग्रोइंग टुगेदर। एंड इसीलिए आई लीव यू विद माई लास्ट मैसेज कि प्यार करते रहो, बातें करते रहो, और सबसे जरूरी खुद को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दो जितनी दूसरों को देते हो।
1: उम्र के इस गुजरते पड़ाव में कविता लिखना जब शुरू किया मैंने, लेखनी से हुई दोस्ती मेरी, जिंदगी का नया रूप जिया मैंने। भावों को शब्दों में पिरोया, शब्द वाक्य बनते रहे, वाक्य बनते गए पूरी लेखनी, लेखन अपने आप बनते रहे। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार शायद हमारे कई लिसनर्स प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही कर रहे होंगे। इस हफ्ते सिनेमा और ओटीटी में क्या नया है?
2: और आज हम सिर्फ रिलीज लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा ये भी समझेंगे कि ऑडियंस किसी टाइटल की तरफ खिंचती क्यों है। इज इट स्टार पावर, नॉस्टैल्जिया, ट्रेलर, फ्रेंचाइज या सोशल मीडिया बस?
1: दोस्तों थिएटर की बात करें तो टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स भी इस हफ्ते काफी चर्चा में है। यश की वापसी के साथ फिल्म का स्केल और उसका डार्क वर्ल्ड दोनों ही अटेंशन खींच रहे हैं।
2: सही कहा अमोल, और टॉक्सिक की खास बात ये भी है, सिर्फ एक बड़े स्टार की आने वाली फिल्म बनकर नहीं आ रही, बल्कि गीतू मोहनदास का डायरेक्शन, क्राइम एक्शन और ये डार्कर ट्रीटमेंट फिल्म को एक अलग आइडेंटिटी देने की कोशिश करता है।
1: और साथियों यश को भी इस बार एक बिल्कुल अलग तरह के कैरेक्टर में देखना इंटरेस्टिंग होगा।
2: और ट्रेलर के बाद सबसे बड़ी सवाल तो यही था कि लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन और कहानी दोनों

0: ऑडियंस के साथ कितना कनेक्ट कर पाती है।
1: मनुष्य यानी इस वीकेंड टॉक्सिक के लिए सिर्फ ओपनिंग नंबर्स नहीं, ऑडियंस का रिएक्शन भी देखने लायक रहेगा।
0: बिल्कुल, इसके अलावा मिर्ज़ापुर द फिल्म और द डॉग स्टार्स जैसे अलग अलग जॉनर्स और मार्केट्स में आने वाले टाइटल्स इस पीरियड की थिएट्रिकल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है।
1: और यही आज के सिनेमा लैंडस्केप की खासियत है, एक ही वीकेंड में ऑडियंस को नॉस्टैल्जिया ड्रिवन हिंदी स्टोरीज, रीजनल स्टोरी टेलिंग और इंटरनेशनल जॉनर सिनेमा जैसे बिल्कुल अलग ऑप्शंस मिल सकते हैं। OTT ने तो ऑप्शंस की संख्या और बढ़ा दी, और रीमेक कल्चर, बॉलीवुड और बाकी इंडस्ट्रीज में रीमेक्स हमेशा चर्चा में रहते हैं। मनुष्य कुछ लोग कहते हैं रीमेक की जरूरत ही क्या है, ओरिजिनली देख लो, लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी कहानी को नए समय, नए कलाकारों और नए कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ दोबारा बताया जाए तो क्या उसमें वैल्यू हो सकती है?
0: अमोल, मुझे लगता है रीमेक अपने आप में ख़राब नहीं, सवाल ये है कि नया वर्जन ओरिजिनल के साथ क्या करता है, क्या वह नया पर्सपेक्टिव देता है या इमोशनल कॉन्टेक्स्ट, या सिर्फ वही चीज़ दोहराता है।
1: अब थोड़ा ब्रेक लेकर अब इस सेगमेंट को एक बहुत ही लोकप्रिय गीत के हवाले करते हैं, फिर से उड़ चला रॉकस्टार का।

0: अब चलते हैं 28 अगस्त के उस पन्ने की तरफ, जहां आज से 130 साल पहले एक ऐसे शायर ने जन्म लिया था जिसने उर्दू शायरी को अपनी अलग आवाज़ दी। नाम था रघुपति सहाय और साहित्य की दुनिया उन्हें फिराक गोरखपुरी के नाम से जानती है।
1: फिराक का जन्म 28 अगस्त 1896 में गोरखपुर में हुआ था। उनका बचपन में ऐसे माहौल में बीता जहाँ साहित्य और भाषा से उनका रिश्ता बहुत शुरुआती उम्र से बना। आगे चलकर उन्होंने शिक्षा हासिल की, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौर को देखा और अपनी ज़िंदगी में साहित्य के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक हलचलों को भी बहुत करीब से महसूस किया।
0: मनुष्य यानी फिराक सिर्फ कमरे में बैठकर कविता लिखने वाले शायर नहीं थे। उनकी ज़िंदगी उस दौर से होकर गुजरी जब देश एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था।
1: उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा भी लिया और इसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
0: और फिर उनकी शायरी की दुनिया आती है। फिराक की कविता में प्रेम है, विरह है, अकेलापन है, लेकिन उसके साथ भारतीय जीवन और संस्कृति

0: की एक गहरी छाप भी दिखाई देती है।
1: उन्होंने आलोचना और साहित्य पर भी लिखा और उनकी शायरी अपनी शायरी के माध्यम से प्रेम और इंसानी भावनाओं को बहुत गहराई से व्यक्त किया।
0: उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे बड़े सम्मानों से भी सम्मानित किया गया।
1: जिस अकेलेपन, प्रेम, इंतजार, इमोशनल कन्फ्यूजन को आज हम मैसेजेस, सॉन्ग, सोशल मीडिया पोस्ट में देखते हैं, इंसान ने इन सभी भावनाओं को बहुत पहले भी महसूस किया। फर्क सिर्फ इतना था, उस समय के माध्यम अलग थे।
0: और शायद आज 28 अगस्त को उन्हें याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उनकी शायरी को सिर्फ कोट बनाकर शेयर ना करें, उसे पढ़ें, उसका अर्थ समझें और देखें कि उसमें हमें अपना कौन सा एहसास दिखाई दे सकता है। क्योंकि अच्छे शायर गुजर जाते हैं
1: लेकिन उनके शब्द नहीं गुजरते।
0: और फिराक के शब्दों के साथ भी यही हुआ, उनकी आवाज़ें उनके समय से निकल कर आज तक पहुँचती है। फिराक के शब्दों से निकल कर अब थोड़ा संगीत की तरफ चलते हैं, सुनिए द जर्नी सॉन्ग फिल्म पीकू से।

0: दोस्तों अब जरा माहौल को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्योंकि अब वक्त है क्विक बस का।
1: जहाँ आपको मिलेगी एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, कल्चर और दुनिया भर की कुछ ऐसी खबरें जो शायद आपने मिस कर दी हो।
0: अगर वीकेंड पर कुछ नया देखने का प्लान है तो आज OTT पर कई नई टाइटल रिलीजेस हुई हैं। इनमें बॉबी देओल की बंदर भी शामिल है।
1: हॉलीवुड से भी OTT लवर्स के लिए अपडेट है। रॉबर्ट डे नीरो एडम स्कॉट स्टारर थ्रिलर द विस्पर मैन आज स्ट्रीमिंग पर आ गई है।
0: और बॉलीवुड से खबर है कि एक्टर मनोज बाजपेयी ने पुणे के पास 4.5 करोड़ जमीन खरीदी है, यानी फिल्म के साथ साथ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी जारी है।
1: क्विक बस में एक इंस्पायरिंग खबर, NSG ने अपना पहला महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स शुरू किया।
0: 12 हफ्तों के इस प्रोग्राम में महिला पर्सनल को काउंटर टेरर ऑपरेशंस, मार्कमैनशिप और हॉस्टेज रेस्क्यू जैसी स्पेशलाइज्ड स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी।
1: यानी देश की सुरक्षा में महिला शक्ति की एक और मजबूत दस्तक।
0: अगर वीकेंड पे अब और कुछ देखना है तो स्पोर्ट्स की बात करें, चेस प्लेयर R प्रगनंदा ने ग्रैंड चेस टूर जीतकर इतिहास रच दिया।
1: तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग अपडेट्स। टाइम फॉर
0: फ्रेंड्स, अब बारी है आपके। अब बताइए कि आज का युववाणी कार्यक्रम आपको कैसा लगा। आप हमें अपने फीडबैक भेज सकते हैं yuvvani.feedback@gmail.com पर। और हाँ, हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलेगा,
1: क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें हर बार कुछ नया, बेहतर और आपके और करीब लाने की प्रेरणा देता है।
0: तो जुड़े रहिए, सुनते रहिए और अपनी आवाज हम तक पहुंचाते रहिए।
1: मैं हूँ मनुष्या,
0: सुनते रहिए युववाणी। मैं हूँ अमोल।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

0: सूर्य की घड़ी में 5 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। पहले हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, ठीक उसके बाद आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता हैं। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई त्रासदी के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है जो अन्य देशों के नागरिक हैं। श्री जायसवाल ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित इलाकों से बचाया गया। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास जारी हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। श्री जायसवाल ने बताया कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों की स्थिति और उनकी सलामती के बारे में नई जानकारी दी है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतों भी कम होने लगी हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ोयोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की

अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिल्ली के एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। दंपत्ति पर वर्ष 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपत्ति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। खेलों में भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोट रानी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोक
1: संगीत
0: संगीत
1: पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी सुनने वाले सभी बहनों भाइयों को नमस्कार।
0: नमस्कार। तो शाहिद भाई, देखिए, लोक संगीत हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे वास्तविक पहचान है
1: बिल्कुल
0: और
1: सही कह रही हैं
0: धड़कन है।
1: वीनस, बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: और इसी की वजह से ही हमारी जो धरोहर है, हमारा जो लोक संगीत का जो पहचान है, जितने भी त्यौहार आते हैं, अवसर आते हैं, मौसम आते हैं, हर चीज़ के, हर त्यौहार पर, हर पर्व पर, हर मौसम पर लोक संगीत है।
1: जी हाँ,
0: और कितने खूबसूरत है इसका
1: हर
0: एहसास।
1: पहर पे, हर दिन पे, हर संस्कार पे हमारे यहाँ जो है कि लोक संगीत है, और वो एक संदेश देते हैं और सबको जोड़ने का भी काम करते हैं।
0: बिल्कुल, जितने भी, जैसे बात करें जन्म की, विवाह की, और अभी तो चल रहा है सावन, और सावन में तो झूलों की बात हो गई, श्रावण मास की बात हो गई, भगवान शिव की
1: भाई
0: पूजा आराधना भी
1: अर्थात
0: कर ली
1: कि
0: हमने।
1: त्योहारों की तो यूं कह लें कि शुरुआत ही यहाँ से होती है, और आज
0: आज
1: भी एक
0: तो
1: खास
0: खास
1: त्योहार है और
0: त्यौहार।
1: वो है रक्षाबंधन। तो सभी बहनों भाइयों को रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत बधाइयाँ।
0: बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं, और खूब मज़े से आप आज का त्यौहार मनाएं। हमारी सारी बहनें और सारे भाई लोग एक दूसरे को खूब एक साथ त्यौहार पे तोहफे दीजिए, एक दूसरे के साथ खूब मज़ा करिए, नाच गाने कीजिए, और बस खुश रहिए।
1: बड़ी चीज़ ये है कि एक दूसरे की भावनाओं को और इस त्योहार के संकल्प को साकार करिए। तो इसी के साथ विनस बहन, हम अपने बहनों भाइयों को सुनाते हैं एक अच्छा सा राखी।

0: तो जुग जुग जी हमारे प्यारे भैया सान सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं और सारे भाइयों को हमारी तरफ से ढेर सारी प्रार्थनाएं इस त्यौहार के साथ। और बहुत ही खूबसूरत गीत हमने सुना, कलाकार थी आशा और कृष्णा भार्गव। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल भी विलंब नहीं करेंगे और सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत त्यौहार से। क्योंकि देखिए सखी सहेलियां मिलती हैं तो खूब सारी बातें करती हैं, पहनती ओढ़ती हैं, तो एक दूसरे से बातें बताती हैं, आज मैंने ये पहना है, तुमने किस रंग का लिया लिया है, चूड़ी कंगन साड़ी और कपड़ों की बातें बस। तो
1: जी
0: सुनते
1: हाँ,
0: हैं।
1: और बिना देखिए बिना साज श्रृंगार के, बिना अरमानों के त्योहार कहाँ होता है।
0: बिल्कुल
1: और
0: नहीं
1: वही
0: होता।
1: वही कुछ ऐसा ही जो है कि ये प्रकट कर रही हैं वीणा ढिल्लन। तो सुनवाते हैं ये राग।

0: बहुत ही मज़ेदार गीत हमने सुना और मज़ा आ गया हमको सुन के। और ये कलाकार थे हमारी वीणा डिल्लोर और उनकी सखियाँ। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और क्या सुनवाने वाले हैं शाहिद भाई आप आगे?
1: बिल्कुल, आप सही कह रही हैं मीना बहन। ये सविता शर्मा भी जो है ना, कुछ अच्छा सुनवाने वाली हैं। और वो कह रही हैं कि हमसे बलम की ऐसी बिगड़ी, तो इसको हमारे जो है कि श्रोता को पसंद भी करते हैं, तो उनको सुनवाते हैं ये अब।

0: तो भाई सविता शर्मा के गाए हुए इस लोकगीत के साथ ही आज का लोकरंजनी कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक शिव नंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: खेल के मैदान पर हर पल बदलता समीकरण, कहीं जीत के लिए आखिरी मिनट तक जंग, तो कहीं फाइनल की ओर बढ़ते कदम, और कहीं अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती। नमस्कार, आप सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी और मैं हूं आपका साथी प्रतीक आनंद, और मेरे साथ हैं
2: मैं हूं आकाश। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले रुक करेंगे हॉकी विश्व कप 2026 का, जहां महिला वर्ग में भारत और जर्मनी के बीच पांचवे स्थान के प्लेऑफ मुकाबले पर होगी हमारी खास रिपोर्ट। साथ ही महिला हॉकी के सेमीफाइनल मुकाबलों बेल्जियम बनाम नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रेलिया का भी पूरा हाल जानेंगे।
1: इसके बाद पुरुष हॉकी में भारत और बेल्जियम के बीच सातवें स्थान के प्लेऑफ मुकाबले का प्रीव्यू, और पुरुष सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स बनाम स्पेन तथा अर्जेंटीना बनाम जर्मनी की भिड़ंत पर होगी खास चर्चा।
2: इसके अलावा सुब्रतो कप 2026, ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स, बुडापेस्ट ओपन स्क्वॉश, दिल्ली प्रीमियर लीग और खेल जगत की दूसरी अहम खबरें भी होंगी हमारे साथ।
1: तो खेल के हर मैदान की हर हलचल से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं हॉकी विश्व कप 2026 से, जहां महिला वर्ग में भारत और जर्मनी के बीच खेले गए पांचवें स्थान के प्लेऑफ मुकाबले की रिपोर्ट लेकर मौजूद हैं आकाश।
2: भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH महिला विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन के साथ अपने अभियान का समापन किया। भारत ने कल यानी 27 अगस्त गुरुवार को नीदरलैंड्स के एम्स्टेलविन में खेले गए पांचवें स्थान के प्लेऑफ मुकाबले में विश्व की पांचवीं रैंकिंग वाली जर्मनी को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ विश्व की 9वीं रैंकिंग वाली भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में पांचवां स्थान हासिल किया। ये 1974 में आयोजित महिला हॉकी विश्व कप के उद्घाटन संस्करण में चौथे स्थान पर रहने के बाद विश्व कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत की इस जीत में इशिका ने 43वें मिनट जबकि नवनीत कौर ने 44वें और 47वें मिनट में गोल किए। जर्मनी की ओर से लिन क्रिंक्स ने 59वें मिनट में एकमात्र गोल किया। मुकाबले की शुरुआत में दोनों टीमों ने सतर्क रवैया अपनाया। शुरुआती दौर में जर्मनी के पास गेंद पर अधिकांश नियंत्रण रहा, लेकिन भारतीय टीम ने धीरे धीरे अपनी लय हासिल की। 5वें मिनट में बलजीत कौर और साक्षी राणा ने दाहिने फ्लैंक्स से शानदार तालमेल दिखाया। दोनों ने गेंद को कप्तान सलीमा टेटे तक पहुंचाया, लेकिन जर्मनी के डिफेंस ने भारतीय कप्तान को गोल करने का मौका नहीं दिया। दोनों टीमों ने सर्कल में प्रवेश तो किया, लेकिन साफ सुथरे शॉट लगाने में कामयाब नहीं हो सकी। 11वें मिनट में जर्मनी गोल के करीब पहुंचा, जब जोहाना हाचिनवर्ग ने रिवर्स हिट का प्रयास किया, लेकिन भारतीय डिफेंडर ने समय पर स्टिक लगाकर खतरा टाल दिया। 15वें मिनट में वीडियो रेफरल के बाद जर्मनी को पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला। बीचू देवी ने शुरुआती खतरे को शानदार ढंग से रोका। इसके बाद जर्मनी को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन जर्मन खिलाड़ी आपसी तालमेल में चूक गए और गेंद खेल से बाहर चली गई। दूसरे क्वार्टर में भारत के पास बढ़त बनाने का अच्छा मौका आया। दीपिका ने नवनीत कौर को गेंद दी और नवनीत ने लाल रेमसियामी को सेट किया, लेकिन उनका प्रयास गोल पोस्ट के बाहर चला गया। इसके बाद जर्मनी को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन इंजेक्शन सही नहीं रहा और भारतीय

0: पेनल्टी कॉर्नर मिला। नवनीत कौर के पहले सीधे प्रयास को जर्मनी के रनर ने रोक दिया, जिसके बाद भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। इस बार नवनीत ने शानदार ताकत के साथ गेंद को जर्मन डिफेंस के दायरे में भेजते हुए भारत की बढ़त 2-0 कर दी। तीसरे क्वार्टर में मिली बढ़त के बाद भारत ने अंतिम क्वार्टर में भी अपनी आक्रामकता जारी रखी। 47वें मिनट में कप्तान सलीमा टेंटे ने बेसलाइन के पास नवनीत कौर को गेंद दी। नवनीत ने बेहतरीन कौशल का प्रदर्शन करते हुए दो जर्मन डिफेंडरों को छकाया और गेंद को गोल में डाल दिया। ये नवनीत का मैच में दूसरा गोल था और भारत ने मुकाबले में 3-0 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली। जर्मनी ने वापसी की कोशिश जारी रखी। 50वें मिनट में लिन क्रिंक्स का डिफ्लेक्शन मामूली अंतर से गोल से बाहर चला गया। हालांकि 59वें मिनट में क्रिंक्स ने जर्मनी के लिए एक गोल जरूर किया और स्कोर 1-3 कर दिया, लेकिन भारतीय डिफेंडर ने अंतिम क्षणों में शानदार संयम बनाए रखा और जर्मनी को दोबारा मुकाबले में लौटने का मौका नहीं दिया। अंतिम सीटी के साथ भारत ने जर्मनी को 3-1 से हराकर FIH महिला विश्व कप हॉकी 2026 में 5वां स्थान हासिल कर लिया। भारत की इस जीत पर भारत की गोलकीपर सविता ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: खुशी भी थी और वो उसमें इमोशनल भी थे, क्योंकि आज बहुत अच्छी हॉकी खेली और सबको यही था कि काश ये हॉकी हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली होती तो आज हम सेमीफाइनल खेल रहे होते। बट हर चीज से सीखा जाता और ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच के बाद हमने यही सीखा कि हमें सिर्फ खुद पे फोकस रखना है। और तीनों गोल इतने क्लासिक गोल थे कि वर्ल्ड क्लास गोल थे और ये एक अच्छी फीलिंग के साथ हम नेक्स्ट टूर्नामेंट में जाना चाहते हैं कि एशियन गेम हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है, क्योंकि वहां डायरेक्ट हम ओलंपिक क्वालिफाई करने पे फोकस रखेंगे। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमने इस टूर्नामेंट में सीखा है कि खुद पे फोकस रखना है। ओपोनेंट को हम डेफिनेटली एक रिस्पेक्ट है, बट मेन जो है हमें हमारी टीम पे फोकस रखना है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है उस पे हमें काम करना है। आज हर एक प्लेयर बहुत अच्छा खेला है, बट नवनीत ने जितने अच्छे गोल किए हैं तो वो बस यही था कि दीदी काश मैं उस दिन कर देती ऑस्ट्रेलिया वाले दिन। तो हमने यही बोला कि हर एक प्लेयर का कभी कभी दिन नहीं होता है। नवनीत हमेशा जब भी टीम को जरूरत रही है हमेशा नवनीत ने अच्छे स्कोर किए हैं, अच्छे पीसी बनाए हैं और नेशनल कप में आपने देखा और आज के मैच में देखा। तो बीइंग ए सीनियर यही था कि हमें इस चीज को गुड वे में लेके जाना है और ये सेम कॉन्फिडेंस हमें एशियन गेम में काम आएगा।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम की इस जीत पर कोच शोड मरीने ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: दिस मोमेंट नाउ इज टू एंजॉय व्हाट द गर्ल्स हैव अचीव्ड, दैट दे हैव रिटन अ हिस्ट्री एंड विद अ यंग टीम, सो आई थिंक दैट इज अमेजिंग। बट या देन नेक्स्ट थिंग इज ऑलरेडी वेटिंग एंड वी नीड टू रिकवर नाउ एंड टेक दिस गुड एक्सपीरियंस टू द नेक्स्ट टूर्नामेंट, टू द एशियन गेम्स। इट गिव्स अ बूस्ट इन कॉन्फिडेंस एंड आई कैन कीप टेलिंग प्लेयर्स लाइक वी कैन डू इट। I know we can, but at the end you have to experience it, and that's what we did now. Of course, I'm not going to share. I don't want to make the opponents better, but one thing, it will be all with 90% about ourselves and not about the opponents. What do we need to do well? And that's also how we approach every match and also today, and you see what it can result or what it can lead to. Now, that's not one player. We are one team. I'm not going to name one player, but yeah, if you have 11 debutants, then it's very, you can guess yourself. Now, and I'm thinking now, like if I have to name one today, Twangi played her first match at the World Cup. That's not easy. That's very difficult, and I think she did today really well. And so compliments for her.
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में 6 मुकाबले खेले, जिसमें उसे 2 जीत, 3 ड्रॉ और 1 हार मिली। भारत की एकमात्र हार मौजूदा चैंपियन नीदरलैंड्स के खिलाफ हुई। इसके अलावा भारत ने विश्व रैंकिंग में उससे ऊपर की टीमों पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले ड्रॉ खेले। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी सबसे बड़ी जीत भी दर्ज की। जर्मनी के खिलाफ 3-1 की जीत के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम ने न केवल विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया, बल्कि एक मजबूत और आत्मविश्वास से भरे अभियान का शानदार अंत भी किया।
3: जी हाँ, इसी के साथ नजर डालते हैं बाकी खेले गए सेमीफाइनल्स पर। कल महिला विश्व कप में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया और वहीं दूसरे सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स ने बेल्जियम को 1-0 से शिकस्त दी। दोनों ही टीमें अब कल फाइनल में भिड़ती दिखेंगी। इसी के बाद अब नज़र डालते हैं आज खेले जाने वाले मुकाबलों पर।
4: सबसे पहले बात करते हैं भारत और बेल्जियम के मुकाबले की। भारत और बेल्जियम के बीच 7वें-8वें स्थान का मुकाबला 28 अगस्त को भारतीय समय अनुसार रात 9:45 पर बेल्जियम के बेल्फियस हॉकी अरीना में खेला जाएगा। यह मुकाबला टूर्नामेंट में दोनों टीमों का अंतिम मैच होगा। भारतीय टीम ने विश्व कप की शुरुआत पूल डी में की थी। पहले मैच में भारत ने वेल्स को 3-1 से हराया। इसके बाद इंग्लैंड से भारत को 2-4 की हार मिली, लेकिन तीसरे मैच

में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर भारत ने अगले चरण में जगह बनाई। दूसरे चरण में भारत का सामना नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना से हुआ। भारत को नीदरलैंड से 1-3 और अर्जेंटीना से 3-5 की हार मिली। अर्जेंटीना के खिलाफ भारत ने मुकाबले के शुरुआती हिस्से में संघर्ष किया, लेकिन अर्जेंटीना की आक्रामकता के सामने भारतीय डिफेंस दबाव में आ गया। इस हार के बाद भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया और अब 7वें स्थान के लिए खेलेगा। भारत के लिए अब तक सबसे ज्यादा 6 गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए हैं। भारत पुरुष हॉकी विश्व कप का 3 बार पदक विजेता रहा है। भारत ने 1971 में कांस्य, 1973 में रजत और 1975 में स्वर्ण पदक जीता था। 1975 का विश्व कप भारत का एकमात्र विश्व कप खिताब है। 1975 के बाद भारत विश्व कप में पोडियम पर वापस नहीं आ सका। भारत ने 2025 में एशिया कप जीतकर 2026 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। फाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया था। दूसरी ओर बेल्जियम ने पहली बार 2018 में भुवनेश्वर में विश्व कप जीता था। उस फाइनल में बेल्जियम ने नीदरलैंड्स को शूटआउट से हराकर खिताब अपने नाम किया था। 2026 उसका 8वां पुरुष हॉकी विश्व कप अभियान है। बेल्जियम की शुरुआत भी मजबूत रही। पूल बी में बेल्जियम ने फ्रांस को 3-2 और मलेशिया को 5-3 से हराया, जबकि जर्मनी के खिलाफ उसे 1-0 से हार मिली। दूसरे चरण में बेल्जियम ऑस्ट्रेलिया और स्पेन से 1-1 से ड्रॉ खेल सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सका। विश्व कप से ठीक पहले बेल्जियम ने 2025-26 FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब भी जीता था। उसने 16 में से 13 मैच जीते थे। इस मुकाबले में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बेल्जियम की मजबूत रक्षा पंक्ति और पेनल्टी कॉर्नर को रोकना होगा। वहीं भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह और मिडफील्ड में हार्दिक सिंह जैसे खिलाड़ियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। दोनों टीमों के लिए यह विश्व कप का आखिरी मुकाबला है, इसलिए बिना किसी अगले मैच के दबाव के आक्रामक हॉकी देखने को मिल सकती है। बात करें भारत बनाम बेल्जियम की टक्कर की, तो 2024 पेरिस ओलंपिक्स में बेल्जियम ने भारत को 2-1 से हराया था। 2024-25 प्रो लीग में भारत ने बेल्जियम को 4-3 से हराया था। आंकड़े दर्शाते हैं कि मुकाबला रोमांच से भरा रहेगा। अब बात करते हैं पुरुष विश्व कप के दोनों सेमीफाइनल्स की। पहले सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। यह मुकाबला 28 अगस्त को भारतीय समय अनुसार रात 9:30 से नीदरलैंड्स के वैगनर हॉकी स्टेडियम एम्स्टलवीन में खेला जाएगा। मेजबान और 3 बार की विश्व चैंपियन नीदरलैंड्स ने पूल ए में शानदार शुरुआत की थी। उसने न्यूजीलैंड को 5-1 और अर्जेंटीना को 3-1 से हराने के बाद जापान को भी 4-1 से हराया। दूसरे चरण में भारत को 3-1 से हराया और इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला। इस तरह नीदरलैंड्स ने दूसरे चरण की पूल ई में 7 अंक हासिल किए और सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। 2026 में नीदरलैंड्स का लक्ष्य लगभग 28 साल बाद फिर से विश्व कप ट्रॉफी जीतने का होगा। नीदरलैंड्स के खिताब साल 1973, 1990 और 1998 में आए थे। इसी के साथ उसे घरेलू मैदान और दर्शकों का फायदा भी मिलेगा। नीदरलैंड्स की टीम ने अब तक प्रतियोगिता में काफी आक्रामक खेल दिखाया है। वहीं बात करें स्पेन की, तो स्पेन ने पूल सी में दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड को हराया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसे 1-0 की हार मिली। दूसरे चरण में स्पेन ने जर्मनी को 2-1 से हराया और बेल्जियम के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला। दूसरे चरण में स्पेन 4 अंकों के साथ पूल एफ में दूसरे स्थान पर रहा और सेमीफाइनल में पहुंचा। स्पेन ने पुरुष विश्व कप में इससे पहले 2 बार रजत पदक जीते हैं। उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन 1978 और 1998 वे में आया था, जब वह फाइनल तक पहुंचे लेकिन खिताब नहीं जीत सके। इसलिए 2026 में फाइनल में पहुंचना स्पेन को फिर से विश्व कप खिताब के बेहद करीब ले जाएगा। स्पेन ने टूर्नामेंट में मजबूत रक्षात्मक खेल दिखाया है। यह मुकाबला गेंद पर नियंत्रण, पेनल्टी कॉर्नर और गोल के मौकों को भुनाने की क्षमता पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं दूसरे सेमीफाइनल की, जहां जर्मनी और अर्जेंटीना की टीमें आमने सामने होंगी। मुकाबला 29 अगस्त को भारतीय समय अनुसार रात 12 बजे से बेल्जियम के बेल्फियस हॉकी अरीना में खेला जाएगा। जर्मनी साल 2002, 2006 और 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप जीत चुका है, साथ ही साथ वर्तमान में डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन भी है। जर्मनी ने पूल बी में मलेशिया को 5-1 और बेल्जियम को 1-0 से हरा के फ्रांस के खिलाफ
खिलाफ 1-1 का परिणाम हासिल किया। दूसरे चरण में स्पेन से मिली 2-1 की हार के बाद उसने ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराया। इस प्रदर्शन ने उसे सेमीफाइनल तक पहुंचाया। 2023 में भारत में हुए पिछले विश्व

कप के फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर खिताब जीता था। इसलिए 2026 में सेमीफाइनल तक पहुंचकर जर्मनी लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जर्मनी के पास अनुशासित रक्षा पंक्ति और तेज बदलाव की ताकत है। और अगर बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना ने पूल ए में जापान को 3-0 और न्यूजीलैंड को 7-1 से हराया, जबकि नीदरलैंड से उसे 3-1 से हार मिली। दूसरे चरण में इंग्लैंड को 3-1 और भारत को 5-3 से हराकर उसने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत के खिलाफ मुकाबले में अर्जेंटीना के टॉमस डोमेने ने शानदार प्रदर्शन किया और टीम की आक्रामक ताकत का परिचय दिया। टॉमस अब तक प्रतियोगिता में 8 गोल्स दागकर टॉप स्कोरर्स की सूची में शीर्ष पर हैं। अर्जेंटीना के लिए 2026 का सेमीफाइनल खास तौर पर महत्वपूर्ण है। पुरुष विश्व कप में अर्जेंटीना का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2014 में कांस्य पदक रहा था। 2014 में उसने पहली बार विश्व कप पदक जीता था। इसलिए अगर अर्जेंटीना 2026 में फाइनल में पहुंचता है, तो वह अपने इतिहास में पहली बार विश्व कप के फाइनल में खेलेगा। अर्जेंटीना ने पूरे टूर्नामेंट में आक्रामक हॉकी और गोल करने की क्षमता से प्रभावित किया है, इसलिए इस सेमीफाइनल में मुकाबला काफी करीबी रहने की उम्मीद है। कुल मिलाकर 28 अगस्त भारतीय हॉकी प्रशंसकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। शाम को भारत 7वें स्थान के लिए बेल्जियम से भिड़ेगा। रात में नीदरलैंड्स और स्पेन के बीच पहला सेमीफाइनल होगा, जबकि आधी रात के बाद जर्मनी और अर्जेंटीना दूसरे सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। भारत की नजर अब विश्व कप को जीत के साथ समाप्त करने पर होगी, जबकि नीदरलैंड्स, स्पेन, जर्मनी और अर्जेंटीना की नजर फाइनल के टिकट पर है। आइए अब सुनते हैं सुब्रतो कप पर हमारे सहयोगी अभिनव कुमार झा की खास रिपोर्ट।

0: एक खेल का मैदान, वहाँ खिलाड़ियों का जुझारूपन, सैनिकों का अनुशासन और दर्शक दीर्घा में बैठे स्कूली बच्चों का जोश, कुछ ऐसे ही अनूठे दृश्यों का साक्षी बना कल दिल्ली का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम, जहाँ कल शाम 27 अगस्त को खेला गया 65वें सुब्रतो कप के जूनियर गर्ल्स अंडर 17 का फाइनल मैच, जिस मैच में ग्रुप स्टेज और नॉकआउट की बाधा पार करके पहुंची थी मिजोरम की राजधानी ऐजोल से आई स्प्रिंगफील्ड हायर सेकेंडरी स्कूल और झारखंड के गुमला से आई सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल। दोनों ही टीम्स ट्रॉफी की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। अगर हम उनके फाइनल तक के सफर पर एक नजर डालें तो जहां मिजोरम ने अपने 4 लीग मैच और 2 नॉकआउट मैचेस में सिर्फ 4 गोल कंसीड किए थे और 41 मारे थे, वहीं दूसरी ओर झारखंड ने 38 गोल किए थे और सिर्फ 2 गोल खाए थे, तो मुकाबला शुरू होने से पहले कहना काफी कठिन था कि कौन सी टीम आज सुब्रतो कप पर कब्जा करेगी। बहरहाल आखिर रोशन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। विसल की आवाज के साथ मैच का आगाज हुआ और देखते ही देखते झारखंड की टीम ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। मैच के 21 मिनट पूरे होते ही पहला गोल और 43वें मिनट में दूसरा गोल कर झारखंड की मनीषा दुंग ने ये फाइनल मुकाबला झारखंड की ओर मोड़ दिया और झारखंड 2-0 से मिजोरम को हराकर विजेता घोषित हुई। जब उनके ट्रॉफी जीतने पर हमने झारखंड की कोच और टूर्नामेंट के बेस्ट कोच अवार्ड से सम्मानित बीना करकेटा से बात की तो उन्होंने कहा,
1: खुशी तो महसूस हो रहा है, इतना बड़ा माहौल, इतना बड़ा टूर्नामेंट हमारे लिए जूनियर लेवल के लिए बहुत बड़ी एक्सपोजर है ये गेम, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम लोग बहुत खुश रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड खुश हैं, क्योंकि 2022-2023 में भी गोल्ड मेडल इसी स्कूल के बच्चे लिए थे और ये तीसरा उनका गोल्ड मेडल रहा है, स्कूल का नाम, अपना झारखंड का नाम रोशन किया है।
0: इसी साल छत्तीसगढ़ में हुए ट्रैवल गेम्स के फाइनल मुकाबले में रनर अप रही झारखंड की कोच ने कैसे उस हार से सीखकर 5 महीने बाद हुए सुब्रतो कप को अपने नाम किया, आइए सुनते हैं।
1: उप विजेता रहे, हालांकि उसमें थोड़ी सी टेक्निकली चूक रह गई, होस्ट टीम को हाफ ग्राउंड खिलाया बट एक काउंटर अटैक हमारे लिए महंगा पड़ा, इसलिए उससे मैंने सीखा, इसलिए हमेशा अपना 3 डिफेंडर को मैंने पीछे रख रहा था, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी। वो
0: कोई भी लक्ष्य यूं ही नहीं मिल जाता, लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए संपूर्ण समर्पण और कठिन परिश्रम, जिसका जीता जागता स्वरूप बनी टूर्नामेंट की गोल्डन ग्लव विनर झारखंड की गोलकीपर खुशबू कुमारी, जिन्हें मैच के दौरान शोल्डर पर गहरी चोट लगी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मैच खत्म होने तक अपने टीममेट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही।
2: सर मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट में मुझे बेस्ट गोलकीपर मिला है, तो मुझे

0: खुशी हो रहा है और ये क्रेडिट मैं अपनी टीम को देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे से बॉल भी मिस हो जाता था तो वो लोग मुझे मोटिवेट करते थे कि कोई नहीं होगा। ये जब हाफ टाइम हुआ उसके बाद जब साइड चेंज हुआ उस टाइम 1v1 आया मूवमेंट और एक प्लेयर मेरे को इधर पे मार के चली गई, तो अभी से शोल्डर पे, तो भी मैं अपनी टीम के लिए मैं मजबूत रही क्योंकि हम लोग को हारना नहीं था, हम लोग को ये टूर्नामेंट जीतना था, इसलिए मैं कंटिन्यू रखी।
1: हमने झारखंड की कप्तान बीना कुमारी से उनके टीम के सैक्रिफाइस और कप्तान बनने के बारे में बात की।
2: हम लोग तो पहले से माइंड सेट करके आया था क्योंकि हम लोग 22 और 23 में हमारे सीनियर्स विन किए थे, इसलिए हम इस बार आए तो हम लोग को भी लगा नहीं हम लोग आए तो इस बार हम लोग भी करके जाएगा, इसलिए हम लोग ने आखिरी लास्ट तक लड़ा और हम लोग सोचा कुछ भी हो जाए आगे बॉल अटैक करके रहेंगे। हॉस्टल में रहते एक साथ में तो कभी कभी त्योहार भी आता है या छुट्टी भी मिलता है तो हमारे कोच बोलता है कि तुम लोग अगर कुछ पाना चाहते हो तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो हम लोग ने कभी कभी छुट्टी मिलता तो हम लोग घर नहीं जाते थे, अगर एक सप्ताह का मिलता था तो 2 दिन घर जाते थे फिर वापस आ जाते थे और प्रैक्टिस पे लग जाते थे।
1: ये कब पता चला कि जो झारखंड की टीम सुब्रतों में जाएगी उसके लिए कैप्टन आपको चुना जा रहा है और क्या फील था वो?
2: मुझे तो पता नहीं था कि मुझे कैप्टन चुना जाएगा, बट ये तो कोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे चुने, बट मुझे चुना गया तो मुझे अच्छा लगा और मैं चाहती थी कि मैं कैप्टनशिप कर रही हूँ तो मैं अच्छा टीम कमांड करूंगी।
1: फाइनल के बाद हुए अवार्ड सेरेमनी में फेयर प्ले अवार्ड जीता काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने, बेस्ट स्कूल का अवार्ड अपने नाम किया माता मनी हायर सेकेंडरी स्कूल छत्तीसगढ़ ने और गोल्डन बॉल अवार्ड जीता रनर अप टीम की कप्तान थ्वाम दीव पुई ने।
3: माय नेम इज थ्वाम दीव पुई, आई एम अ कैप्टन ऑफ एनसीसी मिजोरम टीम, वी प्ले वेरी वेल बट दिस इज नॉट आवर टाइम एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय टीममेट एंड कोच एंड गॉड।
1: हर अवार्ड विनर को 50,000 रुपए, रनर अप को 3,00,000 रुपए और चैंपियन को 5,00,000 रुपए का कैश प्राइज दिया गया। जब हमने मिजोरम की कोच के लाल रुवाई जेली से बात की तो उन्होंने अपने टीम प्लेयर्स को डॉटर से संबोधित किया।
4: आर प्लेयर्स नॉट प्लेयर्स, माय डॉटर दे आर प्लेइंग रियली गुड बट दे आर स्ट्रॉन्गर फास्टर, सो वी कंसीड द फर्स्ट गोल बिकॉज़ ऑफ दैट, दे आर फास्टर देन अस, बट माय डॉटर दे आर रियली प्लेइंग गुड, नेक्स्ट ईयर वी हैव टू वर्क आउट मोर हार्डर सो वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर टू लिफ्ट द ट्रॉफी।
1: सुब्रतो कप बस एक फुटबॉल का टूर्नामेंट नहीं है बल्कि इसे नेशनल टीम तक जाने के लिए एक महत्वपूर्ण सीढ़ी के तौर पर माना जाता है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1960 में हुई जिसका नाम भारत के पहले भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया, जिसके पश्चात ये हर साल आयोजित की जाती है। इस आयोजन के विषय में हमें विस्तार पूर्वक बताया सुब्रतो कप के ऑनररी सेक्रेटरी जनरल विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर ने।
5: आपको दिख रहा है कि आज फाइनल हो रहा है बट इसकी जर्नी जो है आज से 8 से 10 महीने पहले शुरू हो गई थी, जब बच्चों ने अपने तालुका लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल से खेल के स्टेट की फाइनल एक टीम आई, वो 36 टीम यहाँ इकट्ठी हुई और ये 18 को किक ऑफ हुआ जब स्टार्टअप इसका इनॉग्रेशन हुआ। पिछले 10 दिन से बच्चे परिश्रम कर रहे हैं, जो बेस्ट है वो आज ग्राउंड पे है, झारखंड और एनसीसी की टीम पावल सेट हो गया, स्टेज सेट है। अगला जो हमारा एडिशन है वो अंडर 15 बॉयज का जो बेंगलुरु में होने वाला है 1 से 9 सितंबर तक, फॉलोड बाई 15 से 24 सितंबर
1: आगे बातचीत में उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों का सफर यहाँ से नेशनल टीम तक कैसे पूरा होता है।
5: ड्यूरिंग द सुब्रतो टूर्नामेंट AIFF के स्काउटिंग पार्टनर्स साई के और हमारी सुब्रतो टीम वो सब बच्चों को देखते हैं, परखते हैं, उनको स्काउट करते हैं सो दैट जो फ्यूचर में उनको इंडक्ट किया जा सके या तो क्लब्स के लिए या इंडियन टीम के लिए।
1: आयोजन की शुरुआत हुई एयरफोर्स के मार्चिंग दस्ते के साथ जिन्होंने अपने कोऑर्डिनेशन और परेड से सभी का ध्यान अपने ओर आकर्षित किया। इसके तुरंत बाद द एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क धोलाकुआ के 5th क्लास के बच्चों ने मनभावक परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद चीफ गेस्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने गेस्ट ऑफ ऑनर इंडियन फुटबॉलर ज्योति एन बुरेट को सम्मानित किया।
6: वेल इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट्स इन द कंट्री and I think it's being given the honor that it deserves. Very happy to see the turnout here and the organization that's been done for this tournament. It's really good for the future of Indian football, especially women's football, and it's my honor to be here to witness this game.
1: जब इनसे पूछा गया कि इन बच्चों को देखकर आपको अपने बचपन में खेले हुए दिन याद आ रहे हैं तो उन्होंने कहा,
6: मैं इस एज में एक्चुअली खेलती नहीं थी तो इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों इतने यंग एज से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। सब अगर हम यंग एज से स्टार्ट करें तो उनकी फ्यूचर बहुत ही ब्राइट, सो आई विश हमारे टाइम में ऐसे भी होता था जैसे यंग एजेस में स्कूल्स फुटबॉल ऑफर करते, बट अब इट्स जस्ट अ ग्रोइंग स्पोर्ट और ये बहुत अच्छी चीज है।
1: एक टूर्नामेंट किसी के लिए

जीत लाती है तो किसी के लिए सीख, और हार से सीख कर आगे कैसे बढ़ा जाए हर खेल यही दर्शाता है। तो उसी संदेश के साथ मुझे यानी अभिनव कुमार झा को प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: जी हाँ, सुब्रतो कप तो चल ही रहा है, साथ ही साथ बात कर लेते हैं चेस की। बताइए आकाश।
1: ग्रैंड चेस टूर 2026 के फाइनल्स में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने शानदार वापसी करते हुए अमेरिकी ग्रैंड मास्टर फैबियानो कारुआना को 15-13 से हराकर पहली बार ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। अमेरिका के सेंट लुइस में खेले गए इस फाइनल के निर्णायक दिन प्रज्ञानानंदा 6 अंकों से पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने लगातार 2 रैपिड गेम जीतकर मुकाबले का रुख बदल दिया और इसके बाद ब्लिट्ज में अपनी बढ़त कायम रखते हुए खिताब पर कब्जा कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही प्रज्ञानानंदा ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं तीसरे स्थान के मुकाबले में वेस्ली सॉ ने विंसेंट कीमर को 18-12 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है।
0: जी हाँ, ये तो रही चेस की बात। बात करें अगर स्क्वॉश की, तो बुदापेस्ट ओपन की बात करें, हंगरी की राजधानी में खेले जा रहे हैं पीएसए बुदापेस्ट ओपन में कल सेमीफाइनल के मुकाबले खेले गए, जहां पहले सेमीफाइनल में वेलेवन सेंथिल कुमार ने अपने हमवतन वीर चोत्रानी को 3-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में भारत के लिए वेलेवन सेंथिल कुमार ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। मुकाबला लगभग 68 मिनट चला। तीसरी वरीयता प्राप्त वीर चोत्रानी ने पहला गेम 11-9 से जीतकर अच्छी शुरुआत की, लेकिन सेंथिल कुमार ने शानदार वापसी करते हुए दूसरा गेम 11-8 और तीसरा गेम 11-7 से जीत लिया। चौथे गेम में वीर ने जबरदस्त पलटवार किया और सेंथिल कुमार को केवल 1 अंक देते हुए गेम 11-1 से अपने नाम कर लिया। इसके बाद निर्णायक पांचवा गेम बेहद रोमांचक रहा। वीर के पास 5 मैच जीतने के 2 अवसर आए, लेकिन सेंथिल कुमार ने दोनों मैच पॉइंट बचाए और अंत में गेम 12-10 से जीतकर मुकाबला 3-2 से अपने नाम कर लिया। अंतिम स्कोर रहा 9-11, 11-8, 11-7, 1-11, 12-10। सेंथिल कुमार अब तक का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा है। पहले दौर में भी उन्होंने इंग्लैंड के विल साल्टर को हराया, जिसके बाद पांचवी वरीयता जर्मनी के राफेल कांड्रा को 3-1 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में भी उनका सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त विश्व नंबर 18 मलेशिया के एन योव एनजी से हुआ, जहां सेंथिल कुमार ने 11-2, 11-9, 11-8 से शानदार 3-0 से जीत दर्ज की। अब दूसरे सेमीफाइनल की बात करें, इसमें मिस्र के मुस्तफ़ा एलिसर्टी और मेज़बान हंगरी के बलाज फरकाज आमने सामने थे। घरेलू दर्शकों को निराशा ज़रूर लगी, लेकिन बलाज फरकाज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथी वरीयता प्राप्त और विश्व नंबर 41 एलिसर्टी को सीधे गेमों में हरा दिया। फरकाज ने मुकाबला 11-4, 11-3, 11-7 से अपने नाम किया। अब इनका फाइनल मुकाबला आज 28 अगस्त को खेला जाएगा, जो कि बुदापेस्ट में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं दिल्ली में चल रही डीपीएल की, दिल्ली प्रीमियर लीग की, जहां आज दिल्ली प्रीमियर लीग मेंस में दूसरा क्वालिफायर खेला जाना है, जहां सेंट्रल दिल्ली किंग्स के सामने होगी पुरानी दिल्ली 6। साथ ही साथ डीपीएल वुमेन्स में भी आज दिन में खेले गए अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स वुमेन को 60 रनों से कड़ी शिकस्त दी। इसी के साथ डायमंड लीग फाइनल्स 2026 के लिए एथलेटिक्स में काफ़ी एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है, जिनके नाम हैं श्रीलंका के रुमेश थरंगा पाथिराज, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स, त्रिनिदाद टोबागो के कैशॉन वॉलकॉट और यूएसए के कर्टिस थॉमसन और भारत के नीरज चोपड़ा। इसी के साथ दोस्तों, घड़ी की सुइयां

0: इजाज़त दे रही नहीं दे रही आपके साथ ज़्यादा साझा कर सकें हम खबरें। इसी के साथ हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं प्रतीक आनंद और
1: मैं आकाश,
0: हमें दीजिए इजाज़त।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल नदी के किनारों और बस्तियों में जीवित बचे लोगों और बाढ़ में बह गए शवों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी के उद्गम स्थल के पास बाढ़ के मलबे से बनी झील और तिब्बत के एक बांध के टूटने की खबर ने एक बार फिर बाढ़ की आशंका को बढ़ा दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ त्रासदी के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित इलाकों से बचाया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की जिन्हें नेपाल से बचाया गया। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा और कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी अब कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और उम्मीद है कि इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी का उत्पादन होगा। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देशभर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया।

प्रशंसा कृता। भारतस्य वेलावान सेंथिल कुमारः गतरात्रौ पीएसए बुडापेस्ट ओपन स्क्वैश स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रे स्वदेशीयं क्रीडकं वीर चोटरानी इत्यमुं रोमांचकद्वन्द्वे पराजित्य अन्तिमचक्रे स्वस्थानं निश्चितवान्। वेलावान अद्य रात्रौ आयोज्यमाने अन्तिमचक्रे हंगेरी देशस्य स्थानीय प्रसिद्ध क्रीडकेन बालाज फारकश इत्यमुना सह प्रतिस्पर्धिष्यति इति वार्ताः।

मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: राम संसार सुनने वाले सभी बहनों भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: विनेश बहन,
1: आज का जो कार्यक्रम है, ग्राम संसार हो चाहे हमारी लोक रंजनी हो चाहे हमें कृषि जगत हो, हर कार्यक्रम में हम जानकारी लेके आते हैं और मनोरंजन भी कराते हैं और खास दिनों के बारे में भी बातचीत
0: जी
1: करते हैं।
0: हाँ, और ये खास दिन आज का जो है वो खास में भी बहुत खास है। एक तो ये आज जो है कि रक्षाबंधन है, भाई बहन के प्यार का, रिश्तों का त्यौहार है। इसकी हम बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। और साथ में आज जो है ये संस्कृत दिवस भी है।
1: बिल्कुल
0: संस्कृत दिवस जो है वो हम मनाते हैं महर्षि पाणिनि की याद में। और बड़ी चीज़ यह है कि ज्ञान विज्ञान वेदों की कह लें कि जननी के रूप में संस्कृत भाषा जो है कि बहुत सारी संस्कृतियों सभ्यताओं को परिष्कृत करती हुई आई है। दुनिया की कह लें कि सबसे प्राचीनतम भाषा है, देव भाषा है। और इसके संरक्षण, इसके प्रोत्साहन और इसके प्रसार के लिए हम ये दिन मनाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि संस्कृत शब्द जो संस्कृत हमारी जो सबसे बड़ी मूल हमारा जो भाषा है जहाँ से हमारी सारी भाषाएं निकली हैं,
0: जी हाँ,
1: तो ये
0: जननी है,
1: बिल्कुल
0: भाषा
1: हमारी
0: जननी।
1: भाषा जननी है, तो हमें इसको सबसे पहले सम्मान दिया जाता है और इसीलिए आज का जो दिन है बहुत खास है और हमारा जो ये है संस्कृत विश्व दिवस।
0: जी हाँ,
1: ठीक है, तो वेदों में भी बहुत ज़्यादा संस्कृत भाषा के बारे में कहा गया कि वाङ्मये मनसि प्रतिष्ठा मनो से वाचि प्रतिष्ठम, मतलब कि आध्यात्मिक शांति और ज्ञान के लिए हमारे मन और वाणी के लिए जो बीच एक संतुलन बनता है वो हमारी संस्कृत भाषा से बनता है।
0: जी हाँ,
1: और संस्कृत दिवस श्रावण श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, यानी कि आज के दिन, क्योंकि
0: इसीलिए इसको
1: आज
0: श्रावणी भी कहते
1: कहा
0: हैं।
1: जाता है।
0: हाँ, और इस दिन जो है ना ऋषि मुनि तर्पण यज्ञोपवीत और इस तरह की जो है कि ना बड़े आयोजन करते थे। और ये परंपरा ही जो है हमारी संस्कृति को समृद्ध बनाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये संस्कृत को देववाणी अर्थात देवताओं की भाषा भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत भाषा की रचना ब्रह्मा जी ने की थी और उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले ऋषियों को इसका ज्ञान दिया था,
0: जी हाँ
1: इसीलिए ये एक दिव्य भाषा की भी रचना मानी जाती है।
0: जी हाँ, और इसकी शुरुआत अब जो है ये दिवस मनाने की जो परंपरा है वो साल 1969 से शुरू हुई है और इसको हम लगातार मनाते चले आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हम अपने बहनों भाइयों को देते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले विनस बहन अब कराते हैं अपने बहनों भाइयों का मनोरंजन।
1: बिल्कुल, बातें तो करते ही रहेंगे।

0: बहनों भाइयों, अभी आपने देशभक्ति गीत सुनी, देश हमारा रहे सलामत, ऋषिपाल चौहान और मनशाराम चौहान की आवाज़ में। और वीनस बहन, आप कुछ बता रही थी कि आज कुछ ख़ास दिन भी है।
1: बिल्कुल, खास तो हमेशा ही दिन रहता है, लेकिन आज कुछ और खासम खास है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि आज रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ना, हर भाई बहन के लिए सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। मतलब पूरे साल बहनें इंतज़ार करती है इस एक दिन का, जब वो भाइयों से त्यौहार लेती हैं, त्यौहार पे तोहफे लेती हैं,
0: जी बाकी
1: और
0: सारे त्योहारों से बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: अलग है,
1: अलग हो
0: इसका
1: जाता
0: मिजाज अलग
1: है।
0: है, इसका टोन अलग है। और बड़ी चीज़ है कि इसमें जो भावनाएं हैं ना, उनका उनकी तारतम्यता, उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा जा सकता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: क्योंकि ये हर साल, मतलब जैसे कि हमने बात करी, सावन चल रहा है, सावन में आज का जो पूर्णिमा है, हमने पूर्णिमा के जो एक दिन है ना, वो बहुत ही शुभ होता है। उस दिन हर पूर सब कुछ आसन नहीं खूबसूरत और बहुत ही पावन होता है। तो ये त्यौहार भी बहुत ही पवित्र और सूत्र से बंधा हुआ है।
0: ये दिव्य त्यौहार
1: बिल्कुल
0: है, इसे
1: बिल्कुल,
0: कह लीजिए।
1: रक्षाबंधन का त्यौहार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है और इसलिए भी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि ये विश्वास और स्नेह के साथ साथ रक्षा के संकल्प से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि रक्षाबंधन यानी रक्षा सूत्र, धागा, जो कि हर बहनें अपने भाइयों के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए मना बांधती हैं, और उनसे ये बात करती हैं कि हमेशा मेरा भाई मेरे साथ
0: बिल्कुल,
1: जुड़ा
0: आपने
1: रहेगा,
0: बिल्कुल
1: और
0: सही
1: मेरे
0: बात
1: साथ,
0: बताई
1: मेरी
0: है।
1: हर मुश्किल में मेरे साथ में बना रहेगा। और भाई भी पीछे नहीं हटता है, वो भी कहता है, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं
0: ठीक
1: हूँ
0: है,
1: भाई बन के तेरे साथ, हमेशा सर को सहारा दूंगा, साथ दूंगा, और तेरी रक्षा भी करूंगा। तो ये इसलिए बहुत खास है, और इससे जुड़ी हुई कई ऐसी कहानियाँ होती हैं, जैसे कि ज़्यादातर कृष्ण और द्रौपदी के बारे में तो सबको पता है, सबको ये कहानी मालूम है कि जब हमारे कृष्णा जी ने वध किया था अपने सुदर्शन चक्र से, तो उनकी उनकी उंगली में चोट लग गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी चुनरी से उनकी उनकी वो उस चोट को दग दिया था, और उनको उस टाइम संभाला था। तो उस बात का जो ऋण था ना, वो उनके ऊपर था। और जब उनकी समय पर आया, जब परिस्थिति आई, तो कृष्ण भगवान ने रक्षा की हमारी
0: जी
1: द्रौपदी
0: हाँ,
1: की।
0: और चीरहरण के
1: और
0: वक्त जो
1: ऐसी
0: है
1: कई
0: कि
1: ऐसी
0: वो
1: कहानियां हैं, कई ऐसे तथ्य हैं। और जैसे अगर हम बात करें कि ये कहानी का जो ये जो हमारी जो त्यौहार है रक्षाबंधन का, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है?
0: आइए इस पे हम एक जो है कि वार्ता सुनवाते हैं। रक्षाबंधन परिवार, सामाजिक एकता और ग्रामीण संस्कार। जानकारी दे रही ज्योति चौधरी, जो कि खुद एक शिक्षिका है।
2: रक्षाबंधन का नाम आते ही आंखों के सामने एक दृश्य उभर आता है। एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। आंखों में आंसू है, पर होठों पर मुस्कान है। यह धागा कच्चा जरूर होता है, पर इसमें बंधा रिश्ता किसी भी लोहे की जंजीर से अधिक मजबूत होता है। सोचिए जरा, एक कच्चे धागे में इतनी ताकत आती कहाँ से है? यह ताकत आती है उस विश्वास से, उस स्नेह से, जो सदियों से हमारे परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो वह केवल धागा नहीं बांधती, वह अपने भाई से यह वचन मांगती है कि वह हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहेगा। और भाई भी उस धागे को बांधते ही मन यह प्रण ले लेता है, जब तक मेरी सांसें हैं, तेरी रक्षा मेरा धर्म है। मुझे अपना बचपन याद आता है। घर के आंगन में सुबह से ही चहल पहल शुरू हो जाती थी। माँ पूजा की थाली सजाती, कहीं से मिठाई

की खुशबू आती और हम भाई बहन एक दूसरे को छेड़ते हुए राखी के त्योहार का इंतजार करते थे। वह जो नोक झोंक होती थी, वह जो लड़ाई झगड़े होते थे, वे आज भी याद आते हैं तो होंठों पर मुस्कान आ जाती है। कवित्री नायाब की एक पंक्तियां हैं, आओ बैठो तुम्हें सुनाऊं एक खास रिश्ते के अफसाने बताऊं। है एक नाजुक सी डोर से बंधा, मगर रिश्ता पूरा पक्का है अटपटा या चटपटा, जाने वो स्वाद जिसने इसे चखा है। खूब धुलाई मार पिटाई, थोड़ी मोहब्बत ज्यादा लड़ाई, दिन भर करते एक दूजे परवार, दिल में रखकर खूब प्यार। फिर न जाने क्यों एक दूजे को इतना सताते हैं, और फिर नोक झोंक दिन भर की रोज सिराने रखकर सो जाते हैं। इस रिश्ते के उतार चढ़ाव लहरों से भी ज्यादा हैं, फिर भी एक डोर ने इसको मंजिल तक बांधा है। दुनिया से एक दूजे को महफूज रखते हैं, पर टांग खींचने को जेबों में भरकर किससे जरूर रखते हैं। लफ्ज बर नहीं सुनते बाहर खिलाफ, और घर में एक दूजे की पोल खोलते हैं। धोखा फरेब ये कैसी बातें हैं, रिश्ते ऐसे प्यार के कभी ना टूटते हैं। कभी वार है कभी प्यार है, समझ में आता नहीं शायद यही स्नेह का आकार है। दिल से जाता नहीं यही स्नेह का आकार है। ये तो है हमारे परिवारों का असली रूप। परिवार सिर्फ एक छत के नीचे रहने वाले लोगों का समूह नहीं है। परिवार वह जड़ है जिससे हम अपनी पहचान पाते हैं, अपने संस्कार पाते हैं। आज के इस दौर में जब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, जब भाई बहन अलग अलग शहरों में अलग अलग देशों में जाकर बस गए हैं, तब रक्षाबंधन जैसे त्योहार ही हमें याद दिलाते हैं कि दूरियां चाहे कितनी भी हों, रिश्तों की डोर कभी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। एक माँ अपनी बेटी को ससुराल विदा करते वक्त जो आशीर्वाद देती है, एक पिता अपने बेटे को जो सीख देता है कि बहन की इज्जत अपनी जान से बढ़कर रखना, यही वो संस्कार हैं, यही वो विरासत है जो हम अपनी अगली पीढ़ी को सौंपते हैं। अब अगर हम बात करें पौराणिक समय की और विचार करें कि रक्षाबंधन का ये परंपरा जो है वो शुरू कहाँ से हुई, तो यदि पुराणों की बात करें तो यह कहानी सबसे पुरानी है। जब राजा बलि को पहली बार राखी बांधी थी माता लक्ष्मी ने, हुआ क्या था, भगवान विष्णु ने स्वर्ग लोक बचाने के लिए कि इंद्र लोक राजा बलि छीन ना ले, वामन अवतार धरकर राजा बलि के पास पहुंच गए। राजा बलि ने तभी 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे किए थे। वामन अवतार बने भगवान विष्णु ने उनसे 3 पग धरती मांगी थी, जबकि राजा बलि को उनके गुरु शुक्राचार्य ने बता दिया था कि ये सामने वामन अवतार जिसे तुम बोना ब्राह्मण समझ रहे हो, यह और कोई नहीं, ये तो जगदीश्वर स्वयं भगवान विष्णु है। लेकिन राजा बलि ने संकल्प ले लिया था तो उन्होंने मना किया कि अब जब भगवान विष्णु ने यानी वामन अवतार ने मुझसे भिक्षा में 3 पग धरती मांगी है तो मैं उन्हें इनकार नहीं करूंगा। भगवान विष्णु ने पहले ही पग में पूरी धरती को नाप लिया, दूसरे पग में पूरे स्वर्ग और पूरे आकाश को माप लिया। जब तीसरे पग की बारी आई तो उन्होंने राजा बलि से पूछा, बताओ तीसरा पग कहाँ रखें। राजा बलि ने कहा, प्रभु आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर धारण करें। और प्रभु ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा तो राजा बलि पाताल लोक को चले गए। लेकिन भगवान विष्णु राजा बलि की कर्तव्य परायणता थी, या जो संकल्प लेने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, उससे वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया और खुद बन बैठे पाताल लोक के द्वारपाल। अब जब माता लक्ष्मी को पता चला कि प्रभु तो बैकुंठ लौटे ही नहीं, तो उन्हें वापस बैकुंठ लौटा लाने के लिए माता लक्ष्मी एक गरीब नारी का रूप धारण करके राजा बलि के पास गई, उन्हें राखी बांधी और उनसे बदले में अपना पति वापस मांग लिया। ऐसे ही यदि हम बात करें भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा की, ये तो सबको ही पता है कि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए सुदर्शन चलाया। सुदर्शन चलाते हुए उनकी उंगली पर थोड़ी चोट लगी और द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी का पल्लू फाड़कर उन्हें वो रक्षा सूत्र बांधा, और भगवान ने भी उस रक्षा सूत्र की मर्यादा का पालन करते हुए दुशासन के दरबार में द्रौपदी की लाज की रक्षा की। ऐसे ही हम बात करें आज के युग की, तो अभी हम ज्यादा समय दूर भी नहीं है जब मेवाड़ की रानी कर्णावती ने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी थी सुल्तान बहादुर से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए, जबकि मुगल शासक हुमायूं को मेवाड़ तक पहुंचने में थोड़ी देर हो चुकी थी।
कर्णावती जो थी वो जौहर दिखा चुकी थी, लेकिन फिर भी हुमायूं ने उस रक्षा सूत्र का, उसकी मर्यादा का पालन करते हुए, धर्म और जाति से ऊपर उठकर, ये ना सोचते हुए कि मैं मुसलमान हूँ वो हिंदू रानी थी, अपनी वो जो भाई वाला जो रिश्ता था उसे निभाया और मुगल शाह बहादुर को हराया और रानी कर्णावती के अल्प व्यसक पुत्र को वहां का शासक बनाया।

0: इस तरह की कहानियां कहते ही जाएंगे तो कहानियां खत्म ही नहीं होंगी जब लोगों ने इस रक्षा सूत्र का पालन किया। पर मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो रक्षाबंधन के दायरे को परिवार की चार दीवारी से बाहर निकालकर पूरे समाज तक ले जाती है। हमारे देश की सीमाओं पर कड़ाके की ठंड में, तपती धूप में, दिन रात हमारी रक्षा करने वाले हमारे सैनिक भाई, क्या वे केवल किसी एक बहन के भाई हैं? नहीं, वे तो पूरे देश की बेटियों के भाई हैं। हर साल रक्षाबंधन पर देखिए कितनी ही बहनें जिनका सैनिकों से कोई खून का रिश्ता नहीं होता उन्हें राखी भेजती हैं, चिट्ठियां लिखती हैं ये कहते हुए कि भैया आप सीमा पर हमारी रक्षा करते हो, हम यहाँ से आपके लिए दुआ करते हैं। यह जो भावना है यही तो असली भारतीयता है, जहाँ रिश्ते खून से नहीं स्नेह से बनते हैं। और यह जो भाव है यह हमारे गाँव की मिट्टी से निकला है। आज भी हमारे गाँव में यह परंपरा जीवित है कि गाँव का हर पुरुष गाँव की हर बेटी को अपनी बहन मानता है। कोई अजनबी अगर गांव की किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो पूरा गांव उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। यह हमें कोई कानून नहीं सिखाता, यह संस्कार तो माँ की गोद से मिलता है, यही हमारी मिट्टी में रचा बसा है। इसीलिए तो बहनें भेजती हैं सैनिकों को राखियाँ। माथे पर तिलक नहीं पर भारत माँ का आशीष साथ है। सैनिक के हौसलों के आगे किसी भी संकट की क्या औकात है। ए सैनिक, तुम हो तो हम महफूज हैं, तुम हो तो हर त्योहार है, हे देश के रक्षक तुम पर पूरे भारत का प्यार है। इसी तरह रक्षाबंधन और जब हम ग्रामीण संस्कृति की बात करें तो ग्रामीण स्तर पर तो हर रिश्ता गांव का नाती, यानी कौन कि गांव के रिश्ते से ये मेरी बहन लगती है, गांव के रिश्ते से ये मेरा काका है, गांव के रिश्ते से ये मेरी बुआ है, और लोग उस रिश्ते का बहुत अच्छे से पालन भी करते हैं। गांव की संस्कृति की हम एक और विशेषता की बात करें तो पर्यावरण की, गांव के लोग प्रकृति से भी एक भाई बहन जैसा एक रक्षा का सूत्र बांधते हैं। आपको यदि ध्यान होगा तो गांव के लोग रक्षाबंधन के दिन पेड़ों को, नीम को, बरगद को, पीपल को, तुलसी को रक्षा सूत्र बांधते हैं। बात वही है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें और पर्यावरण और प्रकृति हमारी रक्षा करें। और तो और किसान संस्कृति की बात करें तो किसान तो अपने घर में रहने वाले पशु तक को, बैल को, गाय को, इनको भी रक्षा सूत्र बांधते हैं, क्योंकि किसान इस बात को अच्छे से जानता है कि यदि किसान किसानी कर पा रहा है तो उसमें उसके पशु धन का बहुत अधिक महत्व है। तो ये तो थी किसान की संस्कृति की बात। और जहाँ हम बात करें ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों के लिए भी यह दिन बहुत विशेष है, क्योंकि ब्राह्मण इस दिन अपने पुराने यज्ञोपवीत उतार कर नए यज्ञोपवीत धारण करता है, और इसीलिए तो इतना खूबसूरत सा त्योहार बन जाता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन हमें यही सिखाता है, रक्षा का दायरा सिर्फ अपने घर की चार दीवारी तक मत सीमित रखो। हर स्त्री, हर बेटी, हर बहन के सम्मान की रक्षा करना हर पुरुष का, हर समाज का कर्तव्य है। जिस दिन यह भावना हर घर, हर गांव, हर शहर में जाग उठेगी, उस दिन हमारे समाज से सारी बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अब समय के साथ रक्षाबंधन का स्वरूप भी बदला है और यह बदलाव बहुत सुंदर भी है। आज बहनें सिर्फ भाइयों को राखी नहीं बांधती, आज बेटियां अपने पिता को, अपनी माँ को, अपनी सहेलियों को भी राखी बांधती देखी जाती हैं, ये कहते हुए कि तुम भी मेरी रक्षक हो, तुम भी मेरी सखी हो। यह जो विस्तार है यह दिखाता है कि रक्षा और स्नेह का यह बंधन किसी एक परिभाषा में बंधा नहीं है। यह हर उस रिश्ते में जी सकता है जहां अपनापन हो, विश्वास हो। आज की बेटियां भी अब सिर्फ राखी बांधने वाली नहीं बल्कि खुद रक्षक बनकर उभर रही हैं, चाहे वे सीमा पर तैनात हमारी बेटियां हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे प्रशासन में हो। यह समय आ ही गया है कि हम रक्षाबंधन को केवल भाई बहन की रक्षा करें इस विचार तक सीमित ना रखें, बल्कि यह समझें कि रक्षा एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का कर्तव्य है, चाहे भाई हो या बहन हो। आज जब मैं ये सब कह रही हूँ तो मेरे मन में बस एक ही भाव है कि यह त्योहार हमें बांधे रखे, तोड़े नहीं। यह हमें सिखाए कि रिश्ते निभाना कोई मजबूरी नहीं, रिश्ते निभाना ही परिवार का सच्चा सुख है। बचपन के वो दिन, वह माँ के हाथों की मिठाई, भाई बहन की नोकझोंक, वह गाँव की गलियों में गूंजती हंसी, यह सब हमारी वह पूंजी है जिसे हमें संभाल कर रखना है, अपनी अगली पीढ़ी को सौंपना है। कि रिश्ते खून से नहीं भावना से बनते हैं, रिश्ते खून से नहीं भावना से बनते हैं, और भावना जब सच्ची हो तो वही सबसे बड़ा धर्म बन जाती है।
1: तो भाई अभी हम सुन रहे थे ये वार्ता, रक्षाबंधन परिवार, सामाजिक एकता और ग्रामीण संस्कार और उसका महत्व। बहुत ही खूबसूरत जज्बात है।

0: बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त किया।
1: ये जानकारी दे रही थी ज्योति चौधरी, जो करनाल की एक शिक्षिका हैं। और बहनों भाइयों, अब जो आपका फिर से एक बार मनोरंजन करवाते हैं और ले चलते हैं, सुनवाते हैं आपको कृष्ण भजन।

0: वायु कलाकार जयप्रकाश शर्मा की आवाज़ में सुना हमने ये कृष्ण भजन, और इसी के साथ ही आज का ग्राम संसार कार्यक्रम हम यही समाप्त करते। सुनने वाले सभी भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम। प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक शिव नंदन लाल।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7 बजने को है। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो सका है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
2: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन की संभावना है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800-1804747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश

0: ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: विश्व जगत सुनने वाले सभी ग्रामीण बहनों भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: वीनस बहन, आज रक्षाबंधन है और हमारे ऐसे तो पूरे देश में लेकिन गांवों में इसका खास उमंग है, इसलिए कि रक्षा के जो सूत्र हैं, रक्षा की जो संवेदनाएं हैं, गांवों में कुछ ज़्यादा ही प्रसरित हो जाती हैं। एक एक चीज़ से किसान को, अपने खेत खलियानों से, यंत्रों से, अपने पशुपालकों को जो है कि पशुओं से, और घर के हर सदस्य को, जो उनका रिश्ता है ना, वो एकदम से कह लीजिए कि अति आत्मीयता का हो जाता है। और आज के दिन वो देखने को मिलता है, वो महसूस किया जाता है।
1: त्योहारों के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंजॉय भी करते हैं लोग, मज़े भी करते हैं, दूसरे से मिलते जुलते हैं और स्वादिष्ट पकवानों का भी खूब मज़ा लेते हैं। लेकिन हमारे प्यारे भाइयों, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मौसम के बदलाव को भी ध्यान रखना है। त्योहारों के साथ साथ आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखना है, क्योंकि प्रकृति ने वैसे तो हमें बहुत कुछ खाने के लिए दिया है। फल, सब्जियाँ, नए नए तरीके के व्यंजन बनाते हैं उनसे, तो आप वो बनाएं जो कि आपके लिए हेल्दी हो।
0: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि त्योहारों पे व्यंजन बनाना तो भारतीय संस्कृति का अटूट अभिन्न हिस्सा है, और इसमें कई तरह के व्यंजन बनते हैं। आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ के हिसाब से, नॉर्थ में जाएंगे वहाँ के हिसाब से, आप जो है कि राजस्थानी कल्चर में चले जाएं तो वहाँ की संस्कृति जो है, वहाँ की पकवानों में वो दूध दही और बिल्कुल शुद्ध देशी घी जो होती है ना उसका, और आप इसी तरीके से जो है कि पूरब में चले जाएं तो वहाँ मिठास और कई चीज़ें होती हैं। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और खान पान जो है इसको हम अलग कर ही नहीं सकते, लेकिन खान पान का सीधा जुड़ाव जो है वो स्वाद से होते हुए सेहत से जाता है, जाके मिलता है। तो ज़रूरी ये है कि हम जो भी खाते हैं शुद्ध खाएं, अच्छा खाएं, बेहतर है कि ताज़ा खाएं, और फल सब्जियां जो हैं वो हमारे यहाँ प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में दी हैं, हर सीज़न के लिहाज से, हर मौसम के लिहाज से, हर ज़रूरत के लिहाज से, और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि हमारे जो अन्न और फल हैं वो कई बीमारियों के लिए औषधि हैं।
1: बिल्कुल, हमें अपने रोज़ के खाने में फल, सब्जी और ये सब भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। मतलब जो हमारे सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए के अनुकूल हो वो हम लें, और मौसम के अनुकूल हो तो त्यौहार के साथ, मौसम के साथ अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। वो खाएं जो आपको विटामिन दे, जो आपको कार्बोहाइड्रेट दे और प्रोटीन दे, जो आपको इस मौसम में जो कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं उनसे बचाने की भी आपको ताकत मिले उन
0: वीनस बहन,
1: सब्जियों
0: आपने
1: से।
0: बिल्कुल सही कहा, आपने बीमारियों की बात की। तो दरअसल बीमारी होती कैसे है, जब भी कोई खाद्य है जो भी कुदरत ने दिया है, जो भी हम बनाते हैं, जो भी हम प्रसंस्कृत करते हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ घंटे के बाद, दूध वाली चीज़ें हैं, दही वाले में जो है कि घी वाली चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट की है, जितने भी तरह के खाद्य हैं, कुछ घंटों के बाद उनमें फर्मेंटेशन शुरू होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं, फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये पैदा होने लगते हैं, और वही एक लेवल तक जाने के बाद रोग पैदा करते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ताज़े फल हों, सब्जियां हों, और चाहे दूसरे खाद्य पदार्थ हों, ताज़े खाएं।
1: और ख़ास करके मोटा अनाज तो बहुत कोशिश करें कि अपने रोज़ के खाने में
0: भाई
1: ना हो।
0: मोटा अनाज
1: आज के
0: तो
1: लिए तो काले सारे व्यंजन बन ही रहे
0: आज
1: हैं
0: के
1: शायद
0: नहीं,
1: भाई।
0: मिलेट्स को तो आज के दौर में हम यूं कह सकते हैं कि खाद्य का अमृत है।
1: अरे बहुत सारी व्यंजन है जो कि

0: अभी मोटे अनाज से मिलेट से बनाई जा रही है। आप मजे से बनाएं और खूब खाएं और परिवार वालों को भी खिलाएं।
1: बिल्कुल खिलाएं, लेकिन अभी क्या काम करते हैं कि हम अपने बहनों भाइयों को एक अच्छा सा लोकगीत सुनाते हैं, क्योंकि मनोरंजन का उनको रहता है बड़ा इंतज़ार।

अरे 900 साल गुलामी झेली, पूरे याद मुझे इतिहास, आजादी के ढोले बजे जब पूरी हो जा मेरी आस, भोली भाली।

क्रांतिकारी शहीद आज़म भगत सिंह के बारे में अपने रिश्तों का, एक भाई के तौर पे, एक बहन के तौर पे, कि वो शहीद हुए तो कैसे हम राखी बांधेंगे, देश कहाँ होगा, कैसे होगा, ये बहुत सारी बहुत तरह की भावनाएं व्यक्त की हैं अनुराधा शर्मा और सुंदर ने बड़ी सुंदर आवाज़ में। इसी के साथ विनेश बहन याद आता है कि भगत सिंह जब बचपन में थे और अपने परिवार के साथ खेतों में काम कर रहे थे तो कुछ लकड़ियाँ, कुछ पत्ते जो है कि चुन चुन के खेतों में गा रहे थे, और वो उनका जो है कि गोदना, उसमें जो है कि मिट्टी में लगाना, काका ने पूछा कि क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि बंदूकें बो रहा हूँ। ये उस वक्त क्रांति, एक बचपन में, एक मासूम मन में देश की आज़ादी के लिए ये देशभक्ति का जज्बा था, और वो जज्बा जो है कि आज भी किसी न किसी रूप में याद किया जाता है।

0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात की है होगी कि कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण
1: बिल्कुल,
0: सब्जेक्ट
1: ये
0: है,
1: भी
0: विषय
1: एक
0: है।
1: क्रांति है। और आज के दौर में यंत्रीकरण, वहां पे बंदूकों की क्रांति थी, बंदूकें बो रहे थे, और आज जो है कि कृषि की क्रांति हो रही है। और इसमें कृषि यंत्रीकरण जो है ये एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये दरअसल केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें हमारे किसान भाइयों बहनों को मैकेनाइजेशन के लिए, वो कृषि यंत्र हैं कई तरह के, छोटे बड़े ना, कुछ जो है कि उन्नत तकनीक वाले हैं, उनके लिए सरकार क्या करती है, कई तरह की मदद देती है, ऋण और सब्सिडी देती है, जिससे कि हमारी जो पारंपरिक खेती है वो और उन्नत बन सके और मैकेनाइज हो सके। और उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि किसानों की आय, हमारी जो है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ रही है।
0: बिल्कुल, इसका उद्देश्य तो यही है कि किसी भी तरह से जो टेक्नोलॉजी है हमारे कृषि क्षेत्र में अगर आती है तो लोगों को, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको एक प्रशिक्षण मिले और इस टेक्नोलॉजी के बारे में, कृषि से जुड़ी, इससे आगे हमारे एक कृषि लेवल का जो जो स्तर है, जो वो एक ऊपर हो जाए। और
1: बिल्कुल
0: ये
1: हो
0: भी
1: रहा है,
0: कि बिल्कुल होता जा रहा है
1: ये
0: धीरे
1: जो
0: धीरे धीरे।
1: सरकार की मंशा है, ये ऐसी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, और इस योजना से भी प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है हमारे किसान भाइयों बहनों को। और
0: इससे हमारे कृषि कार्य में जो समय की भी बचत होगी और अधिक मतलब लागत भी मिलेगी इस चीज़ से।
1: हाँ, वो हो रहा है। और एक काम करते हैं कि अब फिर से अपने बहनों भाइयों का मनोरंजन कराते हैं और ले चलते हैं, उनको सुनवाते हैं ये रागी।

गिराई एक एक पाई दे जाइए। तेरी भैंस चरा मने सांड करी, तेरी भैंस चरा मने सांड करी, तू मेरी चराई दे जाइए। ना तो सिकबा बिंदु मीर कह।

0: तो भाइयों, अभी आप सुन रहे थे उद्दल की आवाज़ में ये रागनी और किस्सा था हीर रांझा का।
1: और आइए अब आपको सुनवाते हैं धर्मराज, ये सजा मिलेगी, ये उपदेश जोगेंद्र सिंह की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे ये उपदेश जोगेंद्र सिंह नागर की आवाज़ में। तो बहनों भाइयों, हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मुझे यानी शाहिद और वीनस को दीजिए इजाज़त। आपको राम राम।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने एक खूबसूरत गज़ल सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, BRM 810 किलोहर्ट्स। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने गरीब परिवारों के परिश्रम को पहचान

0: और बचत को सुरक्षा दी। महाराष्ट्र के नासिक से 450 टन प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन पर दिल्ली के लोगों को शुभकामनाएं दी। यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन पर राखी का वादा, सुरक्षा का इरादा, सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन अभियान चलाया और दिल्ली पुलिस ने ISI समर्थित पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने गरीब परिवारों के परिश्रम को पहचान दी है और उनकी बचत को सुरक्षा दी है। इस योजना के 12 वर्ष पूरे होने पर श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इसमें लगभग 56% हिस्सेदारी महिलाओं की है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने महिलाओं को आर्थिक निर्णय लेने में सशक्त बनाया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जनधन योजना ने न केवल बैंकिंग की सुविधा दी बल्कि गरीब परिवारों को भरोसा दिलाया कि देश की प्रगति में उनका भी समान अधिकार और समान स्थान है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 3,17,000 करोड़ रुपए है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अगस्त 2014 को किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। इस योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
0: महाराष्ट्र के नासिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सवेरे दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित निकासी शुरू कर दी है। कांदा एक्सप्रेस पहल उत्पादन क्षेत्रों से उपभोग केंद्रों तक भारी मात्रा में प्याज पहुंचाने के लिए प्रभावी लॉजिस्टिक उपाय है। सड़क परिवहन के माध्यम से अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, अमृतसर तक प्याज की आपूर्ति की जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि 2025-26 में 307 लाख टन से अधिक के अनुमानित उत्पादन के कारण आने वाले महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की पर्याप्त उपलब्धता है। जनता के लिए कल से मोबाइल वैन और NCCF और NAFED यानी नेफेड के खुदरा आउटलेट के साथ सफल और केंद्रीय भंडारों के माध्यम से 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की बिक्री शुरू की गई है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने की पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन की संभावना है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
2: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु के

21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की, इन्हें नेपाल से बचाया गया है। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि नेपाली सेना और सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। उन्होंने भारत में उनकी सुगम वापसी सुनिश्चित करने के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की भी सराहना की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि भारत सरकार बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की सहायता कर रही है। डॉक्टर जयशंकर ने आज सवेरे नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और उन्हें हर संभव सहायता की पेशकश की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन के अवसर पर सभी दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने कहा कि ये पर्व लोगों को एक दूसरे की सुरक्षा, सम्मान और जीवन भर साथ निभाने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन को स्नेह, विश्वास और कर्तव्य का पर्व बताया। उन्होंने कामना की कि ये पवित्र बंधन सभी के घरों में सुख, समृद्धि और आत्मीयता बढ़ाए तथा भाई बहन का प्रेम सदैव अटूट बना रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्कूली विद्यार्थियों से रक्षाबंधन पर्व के मूल तत्व स्नेह, सुरक्षा और संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में देश भर से आए विद्यार्थियों के साथ रक्षाबंधन मनाते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रेम के ऐसे बंधन का प्रतीक है जिसे परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहां तक कि पेड़ों के साथ भी साझा किया जा सकता है। पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से जीवन के लिए आवश्यक संतुलन बनाए रखने के लिए पौधों और पेड़ों को राखी बांधने का आग्रह किया। इस विशेष समारोह में लगभग 90 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें 17 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के 13 दिव्यांग बच्चे शामिल थे। दिल्ली यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन के अवसर पर राखी का वादा, सुरक्षा का इरादा नामक एक विशेष सड़क सुरक्षा यातायात अनुशासन अभियान चलाया। इसका उद्देश्य शिक्षा, प्रवर्तन और प्रोत्साहन के अनूठे संयोजन के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। अभियान के दौरान महिला पुलिस अधिकारियों ने जिम्मेदार सड़क उपयोगकर्ताओं की कलाई पर राखी बांधकर सुरक्षा और संरक्षण के वादे का संदेश दिया। लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने, लेन अनुशासन बनाए रखने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने, शराब पीकर वाहन न चलाने तथा पैदल यात्रियों और अन्य संवेदनशील सड़क उपयोगकर्ताओं का सम्मान करने के लिए जागरूक किया गया। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि इस वर्ष राखियों का कारोबार लगभग 25,000 करोड़ रुपए का हुआ। मिठाइयों, ड्राई फ्रूट्स, परिधानों, फैशन, गिफ्ट्स पैक, आभूषणों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों तथा अन्य उपहारों का लगभग 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। श्री खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को भी इस वर्ष रक्षाबंधन पर व्यापक समर्थन मिला। देश भर में उपभोक्ताओं ने बड़ी संख्या में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दी। हस्तनिर्मित राखियों, पारंपरिक उपहारों, स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं तथा महिला स्व सहायता समूहों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के उत्पादों की मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने आईएसआई समर्थित पाकिस्तान स्थित एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में दिल्ली के एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि 2024 से सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के लिए वो काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये दंपत्ति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करते थे। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजना शामिल था। इन सिम कार्डों का इस्तेमाल पाकिस्तानी एजेंट्स व्हाट्सएप अकाउंट बनाने और भारतीयों से संपर्क करने के लिए करते थे। इस नेटवर्क में भारतीय सिम कार्ड खरीदने में सहायता के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया जाता था। इसके बाद पाकिस्तान में इन नंबरों पर व्हाट्सएप अकाउंट बनाए जाते थे। कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंट भारतीय व्हाट्सएप ग्रुप में घुसकर जानकारी जुटाने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार राजधानी के बुजुर्ग नागरिकों के लिए वयो आनंद योजना शुरू कर रही है।
इस योजना के अंतर्गत ऐसे केंद्र विकसित किए जाएंगे जहां बुजुर्ग नागरिकों को खाली समय में

0: आराम करने, इंडोर गेम खेलने, एक दूसरे से मिलने जुलने और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध हो सके। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली सरकार ने बताया है कि यह केंद्र सप्ताह में कम से कम 5 दिन खुले रहेंगे और प्रतिदिन न्यूनतम 7 घंटे संचालित होंगे। इन केंद्रों का संचालन सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच किया जाएगा। योजना के अंतर्गत मनोरंजन केंद्रों में कम से कम 200 ऐसे सदस्य होना जरूरी है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र मनोरंजन केंद्र को 1 वित्तीय वर्ष में 2,40,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन केंद्रों में योग और ध्यान की कक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही इनमें मासिक चिकित्सा शिविर और प्राथमिक उपचार किट की भी व्यवस्था होगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके आसपास ही ऐसे सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराना है जहां वे अपने हम उम्र लोगों के साथ समय बिता सकें, मनोरंजन और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में शामिल हो सकें तथा अकेलेपन से दूर सक्रिय सामाजिक जीवन जी सकें। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं।
2: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, डिजाइन, मूल्यांकन पद्धति, शासन, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने, परीक्षा अवसंरचना को बढ़ाने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जांच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्याय संगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा आयोजित परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं से संबंधित व्यापक सुधारों की जाँच और सिफारिश करने के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं जसपाल कौर।
0: दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत 300 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि इन मोबाइल फोन को हस खास स्थित NCUI ऑडिटोरियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में नागरिकों को सौंपे जाएंगे। मीडिया से बातचीत में दक्षिणी दिल्ली पुलिस उपायुक्त आनंद मित्तल ने लोगों से आग्रह किया है कि फोन खोने पर दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर मोबाइल फोन खोने की रिपोर्ट लिखवाएं।
3: जिला दिल्ली पुलिस ने करीब 300 मोबाइल फोन आज उनके राइटफुल ओनर्स को जो खोए हुए थे अलग अलग जगहों से वापस ला करके सौंपे हैं। निरंतर हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी मोबाइल फोन खोया जाए उसका टेक्निकल एनालिसिस करके उसको वापस ढूंढा जाए और दिल्ली पुलिस निरंतर इस पे लगी हुई है। जल्द ही हम इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में और भी लोगों को वापस करें।
0: दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने आज ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश और किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने गरीब परिवारों के परिश्रम को पहचान और बचत को सुरक्षा दी। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन पर राखी का वादा, सुरक्षा का इरादा, सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन अभियान चलाया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन पर दिल्ली के लोगों को शुभकामनाएं दी और दिल्ली पुलिस ने ISI समर्थित पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका। गीत मालिका में अपने सभी श्रोताओं का मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं और स्वागत के साथ साथ सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ। रक्षाबंधन का ये पावन त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ लाए और आपके जीवन को एक नई ऊंचाई दे, और भारत को तमाम बहनें जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें, ये भी सबकी कामना है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ जो रक्षाबंधन विशेष पर्व पर लिया गया है, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर लीजिए सुनिए महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलगुरु प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र से एक विशेष भेंट वार्ता।

0: आपसे भेंट कर रहे हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर सुनील जोशी।
1: नमस्कार। श्रावण पूर्णिमा के इस परम पावन मंगलमय एवं सांस्कृतिक महापर्व पर मनाए जाने वाले संस्कृत दिवस के इस विशेष विचार उत्तेजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। संस्कृत केवल विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक नहीं, बल्कि भारत की सनातन ज्ञान परंपरा, आध्यात्मिक चेतना, वैज्ञानिक दृष्टि, दार्शनिक चिंतन और सांस्कृतिक अस्मिता की सुदृढ़ आधारशिला है। वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता, आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, गणित, खगोल, व्याकरण, नाट्यशास्त्र तथा असंख्य ज्ञान विज्ञान के मूल स्रोत संस्कृत में ही निहित हैं। आज जब विश्व भारतीय ज्ञान परंपरा, योग, आयुर्वेद और सतत विकास के भारतीय दृष्टिकोण की ओर आकर्षित हो रहा है, तब संस्कृत की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। इन्हीं महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे मध्य उपस्थित हैं महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र जी, जो शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा तथा संस्कृत के संवर्धन के क्षेत्र में अपनी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता एवं विशिष्ट योगदान के लिए सुख्यात हैं। माननीय कुलगुरु जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
2: नमस्कार।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं, संस्कृत दिवस मात्र एक स्मृति दिवस नहीं है, बल्कि हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा, ऋषि संस्कृति, सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव का भी उत्सव है। आपके विचार से संस्कृत दिवस मनाने के पीछे जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या हम कहें जो राष्ट्रीय महत्व है, उसको हम जानना चाहेंगे।
2: सर्वप्रथम संस्कृत दिवस की समस्त भारतवासियों को मंगल कामनाएं। संस्कृत दिवस समग्र देश में बहुत ही उत्साह के साथ अभी भी संस्कृत के पढ़ने लिखने वाले लोग, संस्कृतानुरागी गण मनाते हैं। भारत में काल का बड़ा महत्व है और हमारे भारतीय जो कालगणना है उस हिसाब से जो हमारे 12 मास हैं, उनमें से श्रावण का जो मास है वह अत्यंत पवित्र मास है। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना की जाती है और इसी क्रम में श्रावण की जो पूर्णिमा तिथि है उसमें समस्त भारतवासी उसे संस्कृत दिवस के रूप में मनाते हैं। संस्कृत दिवस के रूप में इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य जो संदेश है वह यह है कि हम इस तिथि को सभी संस्कृतानुरागी, हम ऋषियों का पूजन करते हैं। पूजन के माध्यम से उन ऋषियों के योगदान का, उनके संदेश का, उनकी ज्ञान परंपरा का स्मरण करते हैं और हम श्रावणी उपाकर्म करते हैं सभी भारतवासी। संस्कृत इस देश की प्राणभूत भाषा है। यदि हमारा देश बोलता है तो उसकी जो वाणी है वह संस्कृत है और वह संस्कृत है तो वेद है, संस्कृत है तो उपनिषद है, संस्कृत है तो स्मृति है, संस्कृत है तो रामायण है, संस्कृत है तो महाभारत है। अर्थात इन सभी धर्म ग्रंथों की, इन सभी शास्त्रों की भाषा संस्कृत है। तो हम इस तिथि को, यह जो कार्यक्रम करते हैं, वह नई युवा पीढ़ी को यह संदेश देने के लिए कि हमें संस्कृत केवल स्मरण के लिए नहीं, बल्कि संस्कृत हमारे भारत की संवाहिका है, संस्कृत हमारे संस्कार की संवाहिका है, संस्कृत हमारे भारतीय ज्ञान विज्ञान की संवाहिका है, संस्कृत योग की संवाहिका है, संस्कृत आयुर्वेद की संवाहिका है, संस्कृत हमारे सदाचरण की संवाहिका है। और यदि संस्कृत है तो भारत है। मेरी दृष्टि में संस्कृत और भारत ये दो नाम नहीं है, संस्कृत ही भारत है और भारत ही संस्कृत है। बिना वेदम बिना गीताम, बिना रामायणीम कथाम, बिना कविम कालिदासम, भारतम भारतम नहीं। कालिदास के बिना, वेद के बिना, गीता के बिना, रामायण के बिना हम भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं।
1: जी, निश्चित रूप से संस्कृत केवल अतीत की भाषा नहीं, बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। प्रोफेसर मिश्र जी, आज का यह जो युग है वो विज्ञान का है, प्रौद्योगिकी का है, बल्कि वैश्वीकरण का यह युग है। ऐसे समय में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि संस्कृत की जो समकालीन प्रासंगिकता है वह क्या है। आपके विचार से वर्तमान भारत और वैश्विक परिदृश्य में संस्कृत भाषा किन किन क्षेत्रों में नई संभावनाओं के साथ उभर सकती है।
2: सुनील जी, बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने की है कि संस्कृत ज्ञान और विज्ञान की भाषा है। हमारा समग्र जो दर्शन का साहित्य है वह समग्र विज्ञानमय है। अगर मैं एक संकेत के रूप में न्याय दर्शन की बात करूं तो न्याय दर्शन में सबसे पहले हम अपने विद्यार्थियों को बोधन कराते हैं कि 16

0: पदार्थ होते हैं। और हम वैशेषिक दर्शन के बारे में चर्चा करें तो कहते हैं कि 7 पदार्थ होते हैं। वो 16 पदार्थ हैं प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हित्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। ऐसे ही हम वैशेषिक दर्शन के 7 पदार्थों की चर्चा करते हैं तो कहते हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। कल्पना कीजिए कि संस्कृत के इन ग्रंथों में कितनी बड़ी ज्ञान और विज्ञान की संपदा निहित है। भारत का बहुत सारा ज्ञान विज्ञान, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे हम आयुर्वेद के क्षेत्र में देखें, चाहे हम योग के क्षेत्र में देखें, तो यह सारा ज्ञान विज्ञान पहले से ही संस्कृत में निहित है। तो यह अतीत में हमारा जो ज्ञान विज्ञान था, वर्तमान में भी अत्यंत प्रासंगिक है और इसका अत्यंत उत्तम भविष्य भी है। संस्कृत आज AI के लिए अत्यंत उपयुक्त भाषा है, क्योंकि इसका बहुत समृद्ध तर्क सम्मत व्याकरण है और भाषा ही बहुत व्यवस्थित और बहुत तर्क सम्मत है। इस भाषा के शब्दों को और इस भाषा का पूरा जो विज्ञान है, पूरा जो इसका साहित्य है, वह भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज देश में बहुत सारे आधुनिक विषयों के साथ संस्कृत को जोड़ करके रिसर्चित की जा रही है, चाहे गीता का मैनेजमेंट के साथ हो, चाहे वास्तुशास्त्र का आर्किटेक्ट के साथ हो, चाहे वह वैदिक गणित का पूरा ज्ञान विज्ञान हो, और AI के साथ भी, जैसा कि अभी हमने सुना है कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने AI को आधार मान करके BTech का कोर्स प्रारंभ किया है। उन्होंने विधि शास्त्र को दृष्टि में रख करके 1,00,000 का कोर्स प्रारंभ किया है। सिविल सर्विसेज का पाठ्यक्रम भी आरंभ किया है। इससे बहुत स्पष्ट रूप से हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि संस्कृत जितनी पुरातन है उतनी अधुनातन भी है और इसका प्रभाव भी लोगों के बीच में बहुत अच्छे से जा रहा है। लोग इधर उन्मुख भी हो रहे हैं और संस्कृत पढ़ने के प्रति बहुत अच्छी प्रवृत्ति भी आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में भी AI के इस पाठ्यक्रम की चर्चा की है। वो लगातार संस्कृत को समग्र विश्व में प्रचारित करते हैं, विदेशों में जाते हैं तो वहाँ के संग्रहालयों में जाकर के वहाँ की मूर्तियों का अवलोकन करते हैं और वहाँ के लोगों को संस्कृत का संदेश देते हैं, वो सुभाषित के बारे में चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से यह भारत के लिए एक अत्यंत स्वर्णिम अवसर है जब भारत का नेतृत्व ही संस्कृत के प्रति इतना समर्पित है।
1: प्रोफेसर मिश्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि संस्कृत का जो वैज्ञानिक स्वरूप है वो आधुनिक तकनीकों के साथ समन्वय स्थापित कर मानवता को ज्ञान, संतुलन और सतत विकास की नई दिशा प्रदान कर सकता है और यह परंपरा और आधुनिकता के बीच में एक सशक्त सेतु है। प्रोफेसर मिश्र जी, हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा पर विशेष बल दिया जा रहा है। आपके विचार से भारतीय ज्ञान परंपरा की मूल अवधारणा क्या है?
0: सुनील जी, जो शिक्षा की नीतियां बनी उनमें से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस शिक्षा नीति के आने से पूरे भारत के अध्ययन की परंपरा को एक नई दिशा मिली है। ऐसा इसलिए हुआ है कि भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष रूप से उसको स्थान दिया गया, क्योंकि भारत की जो एक विशद ज्ञान परंपरा है वो विद्याएं धीरे धीरे भारतीय ज्ञान परंपरा की माध्यम से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उनको स्थान मिल रहा है। एक अच्छी बात है कि पूरे देश में इस समय नए नए पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जैसे IKS भारतीय ज्ञान परंपरा में PG पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इसी प्रकार हिंदू स्टडीज एक पाठ्यक्रम आया है जो पूरे देश में प्रायः 35 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदू अध्ययन का पाठ्यक्रम प्रवर्तित हुआ है और उसमें समग्र भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन कराया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और उसमें आज हम भारत के वनस्पति विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, हम आज भारत के भौतिक विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, आयुर्वेद की चर्चा कर रहे हैं और आज विश्वविद्यालयों में इस तरह के पाठ्यक्रम लाए जा रहे हैं कि जो आज फिजिक्स पढ़ा रहा है वो भारतीय फिजिक्स से भी परिचित हो, जो वनस्पति विज्ञान पढ़ा रहा है वो भारत की भी वनस्पति संपदा से अवगत हो। ऋषियों ने जो ज्ञान विज्ञान प्रवर्तित किया था उसको आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से पाठ्यक्रम में स्थान मिल रहा है और ये निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है, भारतीय विद्याओं के लिए बहुत अच्छा संकेत है।
1: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारतीय ज्ञान परंपरा समग्र मूल्यपरक और जीवनोपयोगी ज्ञान की एक ऐसी परंपरा है जिसका मूल आधार संस्कृत है। प्रोफेसर मिश्री जी, जैसा कि हम जानते हैं उज्जैन को भारत की सप्त मोक्षपुरियों में विशेष स्थान प्राप्त है। यह नगरी प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य, दर्शन, खगोल और आध्यात्मिक साधना का एक प्रमुख केंद्र रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके विचार से संस्कृत भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा को जीवंत बनाए रखने में उज्जैन का ऐतिहासिक तथा समकालिक।

0: योगदान किस प्रकार का है?
1: बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। उज्जैनी में भगवान श्री कृष्ण ने अध्ययन किया था महर्षि सांदीपनि के गुरुकुल में आकर। उज्जैनी महाराज विक्रमादित्य की वो भूमि है जहाँ उनके दरबार में 9 रत्न थे, जो अपने अपने विषय के प्रकांड पंडित थे, जिनके बारे में एक बहुत सुंदर श्लोक प्रचलित है, धनवंतरि क्षपण कामर सिंह संकु बेताल भट्ट घट खरपर कालिदासः ख्यातो वराह मीरो नृपते शभायाम रत्नानि वै बर रुचिर नव विक्रमस्य। विक्रमादित्य की वह भूमि रही है और विक्रमादित्य के ये 9 रत्न वहां पर स्थान पाते रहे हैं। वह महाराज भर्तृहरि की भूमि रही है और उस भूमि पर सदियों से ज्ञान विज्ञान की परंपरा रही। वहां भगवान महाकाल हैं, जो कि विद्या के अधिपति देवता हैं। यह महाकवि कालिदास की भूमि रही है। कालिदास ने वहीं पर अपने काव्य का प्रणयन किया। स्कंद पुराण में एक ऐसा उल्लेख मिलता है कि महर्षि वाल्मीकि ने उज्जैनी में रह करके वाल्मीकि रामायण की रचना की थी, इसलिए उज्जैनी का अत्यंत महत्व है। उज्जैनी 7 पुरियों में एक प्रतिष्ठित पुरी है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। इन परिगणित 7 पुरियों में अवंती का अत्यंत महत्व है, उज्जैनी का अत्यंत महत्व है। ऐसी पावन नगरी उज्जैनी में महर्षि पाणिनि के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित है, जो संस्कृत के विभिन्न क्षेत्रों में, व्याकरण के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, वास्तु के क्षेत्र में, विभिन्न विषयों में अध्ययन अध्यापन का कार्य वहाँ हो रहा है। उज्जैनी कुंभ भूमि भी है, यहाँ प्रति 12 वर्ष में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है।
0: जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि उज्जैन अतीत की गौरवशाली विरासत और भविष्य की ज्ञान यात्रा की प्रेरणादायी संगम है। प्रोफेसर मिश्र जी, आज विश्व समुदाय भारत की संस्कृति, योग, आयुर्वेद, दर्शन और जीवन मूल्यों के प्रति विशेष आकर्षण अनुभव कर रहा है। ऐसे समय में संस्कृत भाषा भारत की जो सांस्कृतिक कूटनीति है, जिसे हम कल्चरल डिप्लोमेसी कहते हैं, उसको किस प्रकार से और अधिक प्रभावशाली बना सकती है? इस दिशा में विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक संस्थानों तथा इसमें सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए?
1: बहुत अच्छी बात है ये कि भारत की जो संस्कृति है वह विश्व की समस्त संस्कृतियों को आत्मसात करके भी आज प्रतिष्ठित है। भारत की संस्कृति ऐसी है जिसमें किसी भी संस्कृति का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि यह विश्व बंधुत्व की संस्कृति है, यह सर्वे भवन्तु की संस्कृति है और यह संस्कृति आती है संस्कृत से। संस्कृतम संस्कृतेर मूलम श्रेयसे समुपाश्यताम। संस्कृत संस्कृति की मूल है और कल्याण के लिए उसकी उपासना करनी चाहिए। भारत को जो प्रतिष्ठा मिली है संपूर्ण विश्व में, वो भारत की संस्कृति से और भारत की भाषा संस्कृत से मिली है। तो यह जो विश्वविद्यालय हैं, जिन विश्वविद्यालयों में हम संस्कृत का अध्यापन कराते हैं, अध्ययन कराते हैं, वह वस्तुतः सही पूछिए तो भारत की हम संस्कृति का ही अध्ययन कराते हैं, संस्कृति और परंपरा का ही अध्यापन कराते हैं। और हमारी जो संस्कृति है वह सर्व कल्याण मूलक संस्कृति है। विश्व में कोई भी संस्कृति होगी वो हमारी संस्कृति से निश्चित रूप से उसे प्रेरणा मिलेगी और इस कार्य में संस्कृत विश्वविद्यालयों का महनीय योगदान भी है। संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थी का जो जीवन है वह निश्चित रूप से अत्यंत सुसंस्कृत जीवन होता है, क्योंकि जो मूल गुण है, जो नीति है, जो सदाचरण है, वह संस्कृत के ग्रंथों से ही आती है। हम ही पढ़ाते हैं कि मातृदेवो भव, हम ही पढ़ाते हैं कि पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। हम बताते हैं लोगों को कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरी सभी स्त्रियों पर माता की बुद्धि होनी चाहिए और दूसरे के द्रव्य में लोष्ठ की बुद्धि होनी चाहिए। हम अलग से छात्रों को ये बोध नहीं कराते, वो हमारे पाठ्यक्रम का पार्ट है। पढ़ते पढ़ते वो चीजें स्वयं सीखते हैं और एक सुसंस्कृत सुसभ्य नागरिक बनते हैं और उनका निश्चित रूप से उनकी उपयोगिता, उनका महत्व केवल अपने क्षेत्र में नहीं है, वो जहाँ भी जाते हैं दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं और दूसरों को भी अपने सद्गुणों से आलोकित करते हैं।
0: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर मिश्र जी कि संस्कृत विश्व को शांति, सह अस्तित्व और मानवीय मूल्यों का संदेश देने वाली एक दिव्य भाषा है। प्रोफेसर मिश्र जी, यदि हमें संस्कृत को केवल शिक्षण संस्थानों तक सीमित न रखकर जन जन की भाषा और जीवन का हिस्सा बनाना है तो विशेष रूप से युवाओं में इसके प्रति रुचि और आत्मीयता को कैसे विकसित किया जा सकता है, इस पर हम आपके विचार चाहेंगे।
1: संस्कृत वस्तुतः भारत के किसी एक व्यक्ति की भाषा नहीं है, संस्कृत भारत के समस्त मनुष्यों की भाषा है और इतना ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि यह विश्व की भाषा है, क्योंकि संस्कृत भाषा में जो गुण हैं, जो मूल्य हैं वह किसी व्यक्ति, किसी समुदाय, किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र के नहीं है, अपितु वह सार्वभौम है। तो संस्कृत कभी थी भी जन जन की भाषा। यदि हम संस्कृत के अतीत के बारे में, इसके ऐतिहासिक

0: साक्ष्यों को देखें तो संस्कृत अतीत में जन सामान्य की भाषा थी। शंकराचार्य के समय आपको ऐसा प्रसंग मिलता है कि भगवान शंकराचार्य जब मंडन मिश्र से मिलने गए तो उन्होंने वहां के जन सामान्य लोगों से पूछा कि कुत्रालयो मंडन पंडितस्य, पंडित मंडन मिश्र का घर कहाँ है। संस्कृत जन सामान्य की भाषा थी, इसीलिए हम विश्वगुरु थे, क्योंकि हमारे यहाँ हर व्यक्ति सुसंस्कृत था, हर व्यक्ति सदाचरण संपन्न था, हर व्यक्ति सुसभ्य था, हर व्यक्ति परोपकारी सद्गुणी था। तो हमारे देश में यह संस्कृत को जन सामान्य की भाषा बनानी है, और इस समय जो हमारी भारत की नीतियां हैं, जो हमारे भारत का नेतृत्व है, संस्कृत को जन सामान्य में ले जाने के लिए प्रयत्नशील है, और इसके सकारात्मक संदेश भी मिल रहे हैं। संस्कृत भारती संगठन के द्वारा भी संस्कृत का प्रचार प्रसार बहुत व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो संस्कृत की पृष्ठभूमि से नहीं है, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी नहीं है, लेकिन वो संस्कृत बोलते हैं और संस्कृत के सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं। तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि भारत के सभी लोग संस्कृत में व्यवहार करेंगे और वस्तुतः वही विकसित भारत होगा।
1: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब संस्कृत आधुनिक जीवन का हिस्सा बनेगी तभी इसका व्यापक जन आंदोलन संभव होगा। प्रोफेसर मिश्र जी, हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की जिस संकल्पना के साथ जुड़े हैं और जिसके साथ पूरा देश जुड़ रहा है, ऐसे में शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, भारतीय ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैश्विक नेतृत्व के संदर्भ में आप संस्कृत की भूमिका को किस प्रकार देखते हैं?
0: माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दूरदर्शी नेतृत्व का बहुत प्रशंसक हूँ। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि विकसित भारत का अभिप्राय यह है कि हम केवल भौतिकता की दृष्टि से ही विकसित न हों, हमारे भारत की जो ज्ञान परंपराएं हैं वो भी विकसित हों, हमारे भारत का जो जीवन दर्शन है, हमारी भारत की जो चिंतन पद्धति है, हमारी भारत की जो रहन सहन है, हमारी भारत की जो व्यंजन है, हमारे भारत के जो त्योहार हैं, हमारे भारत की जो जीवन शैली है, वो सब विकसित होगी तभी भारत देश विकसित है, ऐसा मैं समझता हूँ। वही विकसित भारत देश होगा। हमारे संस्कृत के इस प्रभाव से जो 2047 तक मुझे ऐसा लगता है कि समस्त शिक्षा पद्धति में संस्कृत संस्कृत भाषा के रूप में भले ना प्रवेश करे, लेकिन संस्कृत के जो विचार हैं, संस्कृत का जो चिंतन है, वह हिंदी भाषा के रूप में, बंगला भाषा के रूप में, उड़िया भाषा के रूप में, तमिल तेलुगु कन्नड़ भाषा के रूप में हमारे साहित्य में प्रवेश कर जाएगा। निश्चित रूप से संस्कृत का जो ज्ञान विज्ञान है वह संस्कृत मुखेन और अन्य भाषा मुखेन हमारे जीवन में उसका अवश्य अवतरण होगा।
1: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भविष्य का भारत तभी आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बन सकेगा जब अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक दृष्टि के साथ आत्मसात करेगा। माननीय कुलगुरु जी, आपने अत्यंत सरल, सारगर्भित और दूरदर्शी विचारों के माध्यम से संस्कृत दिवस के ऐतिहासिक महत्व, भारतीय ज्ञान परंपरा की वैश्विक प्रासंगिकता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सांस्कृतिक कूटनीति, युवा शक्ति तथा विकसित भारत 2047 के संदर्भ में संस्कृत की भूमिका पर अत्यंत प्रेरणादायक दृष्टिकोण हम सभी श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया है। निसंदेह आपके विचार हमें यह संदेश देते हैं कि संस्कृत केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि भविष्य के भारत के निर्माण की एक सशक्त आधारशिला है। हम आपके अमूल्य समय, प्रेरक विचारों और इस सार्थक संवाद के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर अभी आप महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलगुरु प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र से ये विशेष भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट कर रहे थे हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर सुनील जोशी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका। और अगला गीत हम सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दोस्तों, अभी आपने एक खूबसूरत गीत सुना भाई बहन के प्यार पर। और दोस्तों, रिश्ते तो बहुत होते हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बहुत ही खास होते हैं। भाई बहन का रिश्ता भी एक ऐसा ही रिश्ता है। और आज चूंकि रक्षाबंधन का भी दिन है, और ये रिश्ता जो है जिसमें शिकायतें होती हैं, नोकझोंक होती है, रूठना होता है, मनाना होता है, लेकिन इन सबसे ऊपर इसमें एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहना और एक भरोसा कायम रहता है। क्योंकि भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो एक भरोसे का रिश्ता है और एक दूसरे के लिए हमेशा साथ खड़े रहने का रिश्ता है। तो राखी केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि बचपन की यादों, प्यार और विश्वास तथा जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसी को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, राखी का त्यौहार केवल एक धागे का त्यौहार नहीं है, बल्कि ये हमें यह भी याद दिलाता है कि परिवार तभी मजबूत होता है जब उसमें सम्मान, समानता और जिम्मेदारी हो। कहने का अर्थ यह है कि बहन की रक्षा का अर्थ उसकी स्वतंत्रता को रोकना नहीं है, बल्कि उसे सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर देना है। और भाई बहन का रिश्ता तभी खूबसूरत होता है जब दोनों एक दूसरे की ताकत बने, और ये ताकत ही सच्चे भाई बहन का रिश्ता होता है और राखी के रिश्ते को सार्थक करता है। तो सुनते हैं अब अगला गीत।

दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है जो कभी खत्म नहीं होता। आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और आइए इस रक्षाबंधन एक संकल्प लें कि रिश्तों में प्यार बढ़ाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और अपने भाई बहनों के सपनों को ऊंची उड़ान देंगे। इसी खूबसूरत संदेश के साथ मुझे यानी अमित को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, और सभी को फिर से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से।

0: अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
2: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
3: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
2: We have given them range of support offers.
0: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
4: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कराती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
6: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट।

0: के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
0: भारत और उज़्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
1: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
2: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
3: भारत सरकार ने जो योजना बनाई है किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
1: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800 1804747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: IN और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
2: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम मनोज सिंह राणा विद द न्यूज एट 9। The headlines: India sends third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance to flood-hit Nepal. External Affairs Ministry says 320 Indian nationals remain uncontactable. Death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods rises to 547. Over 1,500 people remain missing on both sides of the border. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan tomorrow. Government measures improve market availability of sugar, ensure faster movement, ex-mill sugar prices fall by around 20%. India's index of industrial production records growth of 6.7% in July this year. and India's beloved Senthil Kumar to take on Hungary.

0: भारत के वेलवन संथल कुमार का मुकाबला हंगरी के बालास फारकास से होगा। अब खबरें तफसील से। नेपाल और तिब्बत में अचानक तबाहकुन सैलाब आने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 547 तक पहुंच गई है, जबकि 1545 लोग अब भी लापता हैं। इमदादी टीमें जिंदा बच जाने वाले अफराद और पानी के बहाव में बह जाने वाली लाशों का पता लगाने के लिए दरियाओं के किनारों और दूर दराज की बस्तियों में तलाश के काम में लगी हुई हैं। जुनूब मगरबी चीन के इलाके में 5.1 शिद्दत का जलजिला आने के तनाजुर में मजीद सैलाब के अंदेशे से हुक्काम ने मुतासरा जिलों से 800 से ज्यादा अफराद को दीगर मकामात पर मुंतकिल किया और फिर से वार्निंग जारी की है। इधर भारत ने बचाव और राहत की बड़ी कार्रवाई शुरू कर रखी है। वजारत खारजा ने कहा है कि बुध के रोज वहां अचानक सैलाब आने के सानहे के बाद से 320 भारतीय शहरियों से राबता कायम नहीं हो सका है या उनके लापता होने की इत्तला मिली है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि तकरीबन 100 भारत निजात अफराद का भी कुछ अता पता नहीं है जो दीगर मुल्कों में आबाद थे। आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली एक पन बिजली प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 63 भारतीय शहरियों को मुतासरा इलाके से बचाकर बाहर लाया गया है।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: जनाब जायसवाल ने बताया कि चीन के इलाके में तकरीबन 400 भारतीय शहरी महफूज हैं और वो अपने घर वालों के साथ राबता कायम किए हुए हैं। तर्जुमान ने कहा कि पीचिंग में भारतीय सिफारतखाना इन लोगों को बाहर लाने में सहूलत पैदा करने की खातिर मकामी हुक्काम टीम लीडरों और ट्रैवल एजेंट्स के साथ तालमेल कायम कर रहा है। जनाब जायसवाल ने बताया कि सरकार ने वजारत खारजा में कंट्रोल रूम कायम किया है जो दिन रात काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पीजिंग दोनों शहरों में भारतीय सिफारतखानों ने भी दिन रात काम करने वाली हेल्पलाइन कायम की हैं। इधर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 10 टन इमदादी सामान लेकर तीसरी परवाज काठमांडू रवाना हुई है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि डॉक्टरों, तिब्बी अमले के अहलकारों और टनल में फंसे हुए अफराद का पता लगाकर उन्हें बाहर निकालने के लिए 11 अरकान पर मुश्तमिल एक टीम भी भेजी गई है। उन्होंने नेपाल में जारी राहत और बचाव कोशिशों में भारत की मदद का इरादा भी किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले उन 21 यात्रियों के ग्रुप से मुलाकात की जिन्हें नेपाल में शदीद सैलाब के तनाजुर में बचा कर लाया गया है। डॉक्टर जयशंकर ने बचाव कोशिश के लिए नेपाल सरकार और वहां की फौज का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। वो दो रोज़ा दौरे पर ताशकंद शहर जाएंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान के सदर शफकत मिर्ज़ियोयेव से मुख्तलिफ शोबों में तआवुन का जायजा लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: भारत और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात कदीम जमाने से हैं। भारत उन अवलीन ममालिक में से है जिसने उज़्बेकिस्तान की आज़ादी के बाद उसकी खुद मुख्तारी को तस्लीम किया था। भारत और उज़्बेकिस्तान ने 2011 में अपने ताल्लुकात को बुलंदी देकर इसे कलीदी शराकत दारी पर मबनी ताल्लुकात बना दिया था। उस वक्त से वसी तर शोबों में बाहमी ताल्लुकात में खातिर खा वसत आई है। वजीर आजम का दौरा भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान करीबी कसीर पहलुओं की हामिल और बढ़ती हुई कलीदी शराकत दारी की तौसीख करता है। तवक्को है कि तबादले ख्याल के दौरान बाहमी मफाद के वसी तर शोबों का अहाता किया जाएगा और बाहमी ताउन को मुस्तहकम करने के लिए नए मौाक़े की निशानदेही की जाएगी। इस बातचीत से भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान देर पा सकाफती ताल्लुकात को उजागर करने का एक मौका मिलेगा। साथ ही इससे बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में तालीमी और अवामी एक्सचेंज के अहम रोल भी नुमाया होंगे। ताशकंद उज़्बेकिस्तान से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में शकर की कोई कमी नहीं है और मुनासिब कीमत पर शकर की खातिर ख्वाह दस्तियाबी के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए जाएंगे। सारिफीन के उमूर की वजारत ने कहा कि हालिया दिनों

0: काम रहने का इल्जाम लगाया। ये आकाशवाणी है।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: सनअती पैदावार के इशारे पर मबनी मुल्क की सनअती पैदावार की शरह तरक्की में सालाना बुनियाद पर इस साल जुलाई में 6.7% का इजाफा हुआ। जुलाई के आदाद व शुमार से जाहिर होता है कि सनअती सरगर्मियों में अच्छी रफ्तार के साथ इजाफा हो रहा है। हालांकि जून के महीने की नजरसानी शुदा सतह के मुकाबले तरक्की की रफ्तार मोतदिल रही। जून के महीने में सनअती पैदावार के इशारे में तेजी के साथ इजाफा हुआ और यह 7.3% से बढ़कर 8.8% की सतह पर पहुंच गई, जिससे इस बात का इशारा मिलता है कि जुलाई की सहमाही में सनअती तरक्की की रफ्तार पहले के तखमीने से कहीं ज्यादा मजबूत रही। आज जारी किए गए सरकार के आदाद व शुमार के मुताबिक जुलाई के महीने में मैन्युफैक्चरिंग शोबे की शरह तरक्की 7.3% जबकि बिजली और गैस सप्लाई की शरह तरक्की 8.7% रही। अलबत्त कानकनी का शोबा पीछे रह गया और गुज़िश्ता महीने इसमें 0.9% की मनफी शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज से अमरीका के 6 रोजा दौरे पर रहेंगी। अमरीका के अपने दौरे के दौरान वो शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। शिकागो में वजीर खजाना सरकर्दा और मुमताज सरमायाकारों के साथ एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी और प्राइवेट सेक्टर के सरकर्दा सीईओ, सुदूर और सीनियर नुमाइंदों के साथ बातचीत करेंगी। नॉर्वे के शाहराल पंजुम का आज ओस्लो के एक अस्पताल में 89 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। यूरोप के सबसे बुजुर्ग शाहराल अपने वालिद शाह ओलाफ पंजुम के इंतकाल के बाद 1991 में बादशाह बने थे। उन्हें वसी पैमाने पर बादशाहत की जदीद कारी के लिए जाना जाता है। दूसरी आलमी जंग के दौरान नाजी जर्मनी के नॉर्वे पर हमले के बाद उन्होंने अपने बचपन का कुछ वक्त अमरीका में जिला वतनी में गुजारा। उनके बेटे वली अहद शहजादे हाकुन उनकी जगह शाह बने हैं। जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा रिवायती छड़ी मुबारक की रसूमात के साथ आज खत्म हो गई। महंत दीपेंद्र गिरी छड़ी मुबारक को पवित्र अमरनाथ गुफा तक लेकर गए, जहां खसूसी पूजा अर्चना का एहतमाम किया गया और इस तरह 57 दिन से जारी यात्रा बाजाबता तौर पर इख्तिताम पजीर हुई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और इस साल 4,80,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भाइयों और बहनों के दरमियान खुसूसी प्यार और मोहब्बत भरे रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन आज मुल्क भर में मनाया गया। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने नई दिल्ली में आज मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तंजीमों से वाबस्ता बच्चों के साथ ये त्यौहार मनाया। भारत के विलावन सेंथिल कुमार का आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश के फाइनल में हंगरी के बलास फारकास से मुकाबला होगा। विलावन कल रात सेमीफाइनल में वीर चोटरानी को शानदार 2-3 से हरा कर फाइनल में पहुंचे हैं। और आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। भारत ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 10 टन इमदादी सामान के साथ तीसरी परवाज सैलाब से मुतासर नेपाल भेजी है। वजारत खारजा ने कहा है कि 320 भारतीय शहरियों से अभी तक रबता कायम नहीं हो सका है। नेपाल और तिब्बत में अचानक तबाहकुन सैलाब आने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 547 तक पहुंच गई है। सरहद के दोनों तरफ 1,500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के 4 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। सरकार के इकदामात की बदौलत मार्केट में शकर की दस्तियाबी बेहतर हुई है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: करंट अफेयर्स।
2: This is Akashvani. In the weekly program Current Affairs, now we bring you a discussion on 12 years of PM Jan Dhan Yojana, India's leap towards inclusive finance. The participants are Sharad Kohli and Dilip Chinoy, economic analysts, and the moderator is Tina Jha, the journalist.
3: Good evening, listeners. Welcome to our program Current Affairs. I'm Tina Jha. 12 years ago, on 28th August 2014, India began a journey with a simple but powerful idea that every Indian should have a place in the formal banking system. It shouldn't matter where you lived, how much you earned, or whether you had ever walked into a bank before. That mission was called the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. 12 years on, the numbers tell us just how far that journey has travelled. Today, more than 59 crore accounts have been opened with deposits of over 3 lakh crore rupees. And look at who these accounts have reached. Nearly 70

0: ताल है। श्री मोदी ने कहा कि जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जी योयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया था। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल ही के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतों में भी कमी हुई है। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examforstaxforce@dopt.gov.in के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic पर उपलब्ध है। कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल यह झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी है। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। खेलों में भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात PSA बुदापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Manoj Singh Rana. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in 2 flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के रंग, जिसमें आज आपने सुने गढ़वाली गीत लक्ष्मी नंदू जल जी की आवाज में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम राग रंजन, जो कि आधारित है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर, जिसमें आज हम सुनेंगे सितार वादन। कलाकार होंगे सुनील कांत सक्सेना। राग जोग, ताल झपताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंजन, जो कि था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम। आप सुन रहे थे राग जोग में सितार वादन, कलाकार थे सुनील कांत सक्सेना, ताल झप ताल में और द्रुत तीन ताल में निबद्ध थी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
2: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एमएससी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
1: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल यह झूठा प्रचार कर रहे हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज भारत में यूरोपीय संघ के निवर्तमान राजदूत हर्वे डेल्फिन को विदाई दी। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनाने में निवर्तमान

0: availability of sugar at reasonable prices. The Consumer Affairs Ministry said that ex-mill sugar prices have declined by around 20% in recent days, while retail sugar prices have also started coming down. And India's relevant Saltal Kumar will take on Hungary's Balázs Farkas in the final of the PSA Budapest Squash Open tonight. Relevant stormed into the title clash with a thrilling 3-2 victory over compatriot Vik Chotrani in the semi-finals last night. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर. आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर. कार्यक्रम का नाम आपकी फरमाइश. श्रोताओं, मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके मनपसंद कार्यक्रम आपकी फरमाइश में. दोस्तों, आज का दिन है रिश्तों की मिठास का, बचपन की यादों का, छोटी छोटी नोकझोंक का और उस अटूट प्यार का जिसे शब्दों में बांधना शायद मुश्किल है. जी हाँ दोस्तों, आज का ये दिन समर्पित है भाई बहन के उस अनमोल रिश्ते को जिसमें लड़ाई भी है, प्यार भी है, शिकायतें भी हैं और एक दूसरे के लिए बेहिसाब फिक्र भी. तो आइए इस प्यार भरे सफ़र की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसे सुनते ही भाई बहन के रिश्ते की तस्वीर आँखों के सामने आ जाती है.

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया है सज्जन जांगड़ा जी की फरमाइश पर, गांव नलोई, तहसील सिवानी मंडी, जिला हिसार से। सज्जन जांगड़ा जी के साथ राजबाला, कार्तिक व देवांश भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म चंबल की कसम से और आवाज थी लता मंगेशकर जी की। और इसी के साथ चलते हैं अगले मैसेजेस की तरफ, जो कि लगातार हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं। अगला मैसेज आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा जी, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गांव टोरोवाल जिला नवांशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। किशोरनगर अमरावती से हीरामन चेंडे और सिद्धार्थ गोंडाने भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। आइए सुनती हैं इसी अवसर पर ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म छोटी बहन से और आवाज़ थी लता मंगेशकर जी की। और इसी के साथ चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि हमारे पास आया है गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौर जी का। लिखते हैं, सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं लख लख बधाइयां। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांद गांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वर्ण सिंह गांव दौलेवाला, जिला मोगा, पंजाब से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन अनजान जगह से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म शोले से। आवाज़ थी किशोर कुमार और मन्ना डे की। उसी के साथ चलते हैं अगले मैसेज की तरफ जो कि हमारे पास आया है। मुकाम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंढरपुर, पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज़ मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बानू बी मुलानी और बादशाह मुलानी और उसी के साथ पूरा मुलानी परिवार हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है। कल्पना मदन झा, मानव और मयंक का सिलवासा दादरा और नगर हवेली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि किशोर नगर अमरावती से हीरामन चेंडे और सिद्धार्थ गुंडाने जी का आया है जो कि लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया लगातार कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है। गाँव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा जी का, राजबाला कार्तिक व वेदांश जांगड़ा का जो कि लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा जी का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी और बिमला अनेजा जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा कैथल हरियाणा से हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा जी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल मेहसोल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार

से मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, अर्जुन गवाणकर टुक भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, एकांश सुमित गवाणकर और कुमारी ध्वनि गवाणकर परी भी हमारा कार्यक्रम सुन रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। फुलाई नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद जी करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। साथ में है प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष आयुषी और सानवी गुप्ता भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहैल हसन अब्बासी, अनम यशप अब्बासी, रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान और सबीहा अंजुमन खान भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू भी हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेध कुमार दामोदर और साधना पवन पाटिल हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी लड्डू, देविका चौधरी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी लड्डू, देविका चौधरी हमारे कार्यक्रम को लगातार सुन रहे हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर एक पोफाले जिला यवतमाल से जयराम सिंघणकर, दिशांत कुमार सिंघणकर और अर्पिता जी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद पर आपका ये गीत।

सादर प्रणाम के साथ हमारी ओर से आपको और आईपी परिवार को पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मैसेज हमारे पास आया है अनीता मुखी, सुदर्शन मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली का प्यार भरा नमस्कार के साथ। आपको भी बहुत प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, शाहिद साजिद शाहिद का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी गुप्ता का बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि वंजारा लेआउट नागपुर से अनिल कोहले, छाया कोहले, प्रियांश कोहले का है जो कि धन्यवाद के साथ हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि लगातार उत्तम नगर से आ रहे हैं। इसी के साथ मैं केंद्रीय विद्यालय त्रिवेंद्रम में 12वीं स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ। पूरी रात मैं ऑल इंडिया रेडियो ही सुनता हूँ। पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। फूलों का तारों का सबका कहना है गाना प्ले कर दोगे प्लीज़। ये कहना है मेरी दीदी दूसरे शहर में कॉलेज पढ़ रही है। थैंक यू के साथ श्रीराज अय्यर, श्री कर्यम पीओ त्रिवेंद्रम से हमारे पास मैसेज भेज रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी फरमाइश हम ज़रूर पूरी करेंगे। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू हमारा कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं। मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन एक ही मैसेज जब बहुत सारे आते हैं तो उसमें हमारा ध्यान भटक जाता है। गांव बिटोड़ा बोयर, तहसील मंगरूल पीर, जिला वाशिम, पश्चिम विदर्भ से योगीराज मस्के, श्रीहरि मस्के, इंदुमती मल्हार, कविता मोहन, विशाल, कुशल गोपाल, श्याम गोविंद मस्के और सभी श्रोतागण शुक्रिया के साथ हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसी के साथ सुनते हैं आपकी पसंद का ये अगला गीत।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म नवरंग से, आवाज थी आशा भोसले और मन्ना डे जी की। और इसी के साथ चलते हैं अगले मैसेजेस की तरफ जो कि हमारे पास लगातार आ रहे हैं। ये मैसेज आया है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा का, जो कि लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, कुमारी मराठा, भाऊ मराठा, ललिता, जगदीश चौहान, चंदा, युवराज वानखेड़े हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा जी लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी लड्डू, देविका चौधरी लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। ग्राम लसूड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव दिव्या, सुमन कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से आर एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। तारिक हकीम सांगी कराची पाकिस्तान से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, उसमें अपनों से ना नाराज हो ना किसी को नाराज करें, क्योंकि बहन भाई माँ बाप ये सब फिर नहीं मिलते। क्या बात है, बहुत प्यारी लाइन आपने लिखकर भेजी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थाना रोड बक्सर से जीवत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष आयुषी और सानवी गुप्ता लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मसूरी, कमरून, निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, यश मंसूरी और प्यारा नवासा नुमैर मंसूरी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। श्रोता, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बहनो, एलिजा नायब और लड्डू हमारा लगातार कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए चलते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो कि है आप ही की फरमाइश पर।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से। आवाज़ थी लता मंगेशकर जी की। और इसी के साथ चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि हमारे पास आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज जी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि आया है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी जी, जो कि लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। लिखते हैं, बहुत पवित्र रिश्ता भाई बहन का, जिनकी बहन नहीं होती आज के दिन बहन याद आती है। बिल्कुल सही। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास आया है 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, कुमारी मराठा, भाऊ मराठा, ललिता चौहान, ललिता जगदीश चौहान, चंदा युवराज व वानखेड़े हमारे कार्यक्रम को लगातार सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। आकाशवाणी परिवार को भाई बहन के अटूट प्यार के बंधन का पर्व रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। ये कहना है अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, रज्जन रज्जक, लालू, सोना मोना, हनी और यश का, शिवानी चौक कटनी से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद का, जो कि लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और लगातार हमारे पास मैसेज भेज रहे हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है प्रवीण कुमार चोपड़ा जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। संदेश, फूलों का तारों का इस फिल्मी गीत में मुझे शामिल कर लीजिए। हमने आपको शामिल कर लिया है। नियमित श्रोता ZZA K पांडे मध्य प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमने आपको शामिल कर लिया है। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार बने रहने के लिए। अगला मैसेज हमारे पास आया है फारूक अली खान जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। संभल से छोटे अंसारी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी लड्डू, देविका चौधरी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और हमें मैसेजेस भेज रहे हैं। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये एक और बहुत प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओ, हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं धानोरा विटाली तहसील नांदूरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल। और इसी के साथ अगले मैसेज की तरफ चल रही हूँ जो कि हमारे पास आया है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा जी का। इसी के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को इजाज़त दीजिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश को यहीं पर समेटने की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। एआईआर लाइव न्यूज 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब कुछ ही देर में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
2: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। उधर नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बाद वहां फंसे महाराष्ट्र के 290 लोगों के सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है, जबकि 60 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आपदा के समय नेपाल में महाराष्ट्र के जिन 395 लोगों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी उनमें से 105 भारत लौट रहे हैं, जबकि राज्य नियंत्रण कक्ष का बाकी 290 लोगों से संपर्क हुआ है। वे सुरक्षित हैं लेकिन वहीं फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

0: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल हल्की बारिश हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jaishankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and Reiki team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi yesterday, Mr. Jaiswal said that 63 Indian nationals working at Trishuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected area on Thursday have arrived in New Delhi yesterday. External Affairs Minister Dr. Jaishankar yesterday met the group of 21 pilgrims belonging to Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later, talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts. On the Chinese side, External Affairs Ministry spokesperson Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. Mr. Jaiswal said that the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which is working round the clock. He said Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan today. In the first leg of the trip, Mr. Modi will reach Uzbekistan's capital.

0: capital, Tashkent, today. During the visit, Prime Minister Modi and President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, will review cooperation in different sectors. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday bid farewell to outgoing Ambassador of the European Union in India, Hervé Delphin. In a social media post, the minister appreciated the outgoing ambassador's contributions towards concluding the India-EU FTA and further strengthening the strategic partnership. He wished him the best for his future endeavours. The government has said that there is no shortage of sugar in the country and all necessary measures will be taken for adequate availability of sugar at reasonable prices. The Consumer Affairs Ministry said that ex-mill sugar prices have declined by around 20% in recent days, while retail sugar prices have also started coming down. The ministry said it has taken a series of proactive measures to ensure adequate availability of sugar and prevent artificial tightening of supplies in the domestic market. India's industrial output growth, as measured by the Index of Industrial Production, IIP, expanded by 6.7% in July this year on an annual basis. The July data indicates that industrial activity continued to expand at a healthy pace, although the pace of growth moderated from the revised June level. The high-power task force, which has been constituted by the government on public examination reforms, has invited suggestions from all stakeholders, including students, parents and teachers. It has requested the stakeholders to submit their suggestions by 13th of next month through its website, WhatsApp or its phone number 1800 180 4747. They can also submit their suggestions through its email on exam reform task force at dopt.gov.in.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वक्त हो चला है 12:10 और 10 सेकेंड। श्रोताओं, ये वक्त है हमारे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा का। इस कार्यक्रम में मैं संजय सावर्ण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर दिन की तरह आज भी एक बार फिर से हम एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे जिनके गाने सुनकर आप यकीन मानिए रात के 12 बजे भी उठकर डांस मोड में आ जाएंगे और डांस करने लगेंगे। हम आज बात करेंगे एक ऐसे संगीतकार की जिनके गीत को इसी तरह के गानों के लिए, जिनको इसी तरह के गीत बनाने के लिए जाना जाता है। उनके संगीत में एक जादू है, उनके संगीत में एक कशिश है, उनके संगीत में एक ऊर्जा है और इनकी संगीत में वो ताकत है जो अगर आदमी बीमार भी हो ना तो उठ के चलने की कोशिश करने लगेगा, और जो आदमी सो रहा हो वो जग जाएगा, और जो आदमी जाग रहा हो वो उठकर डांस करने लगेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, और आप भी गेस कर सकते हैं कि आज हम किस संगीतकार के बारे में बात करने वाले हैं।

जी हाँ दोस्तों, AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। और इस गीत के बाद लगभग आपने इस बात का अंदाजा तो लगा ही लिया होगा

आज हम किस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं या कर रहे हैं वो हैं विजू शाह। जी हाँ, विजू शाह का ये संगीत हम सबके दिलों में बैठा हुआ है, समाया हुआ है, और ये ऐसे गीत हैं जिन्हें हम शायद ही कभी भूल सकते हैं। विजू शाह यानी विजय शाह, इनका जो मुख्य नाम था वो विजय शाह ही है, था नहीं, है, अभी ये जिंदा हैं। और बाद में जब इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया और इन्हें सफलता मिलने लगी तो इन्हें सब प्यार से विजू बुलाने लगे और इनका नाम विजू शाह पड़ गया। ये हिंदी फिल्म उद्योग जगत के एक महान संगीतकार हैं और वो कल्याणजी वीरजी शाह के बेटे हैं। जी हाँ, कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, तो ये कल्याण जी के बेटे हैं। अरे भाई, अब जिनके पिता इतने गुणी हो उनके बेटे गुणी ना हो, ये बात तो हजम होने लायक है ही नहीं। और बिल्कुल जिस तरह से इनके पिता आनंद जी के साथ मिलकर इन दोनों ने, आनंद जी कल्याण जी ने जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री को, या यूं कहें कि हम सब फैंस को इतने मीठे मीठे गीत दिए, हम सब इनके गीत आज भी सुनते हैं, तो विजू शाह उनसे पीछे कैसे रहते। और उन्होंने भी एक से बढ़कर एक गीत हम सबको दिए जिसे आज भी हम सुनते हैं, सराहते हैं। हालांकि विजू शाह 67 साल के हो चुके हैं लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, फिल्मों में वो ज़्यादा संगीत देते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जितने भी फिल्मों में संगीत दिया उनमें जो गीत रहे वो सब एक से बढ़कर एक रहे। चलिए अब सुनते हैं उनके द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ ये बेहद खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है सुरों का सफरनामा और बातें हो रही है विजू शाह की। विजू शाह की बात करें तो उन्होंने त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा, गुप्त और बड़े मियाँ छोटे मियाँ सहित 20 से अधिक हिंदी फिल्मों के लिए साउंड ट्रैक तैयार किए और गुप्त फिल्म में बेहतरीन काम के लिए उन्हें 1998 में सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था।

और इस वक्त जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि आज हम चर्चा कर रहे हैं विजू शाह के बारे में, जो कि भारतीय फिल्म संगीतकार हैं। और इस वक्त मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संजय सावण। तो विजू शाह की बात करें तो उन्होंने 1985 में राजीव रॉय की एक्शन थ्रिलर फिल्म युद्ध से बॉलीवुड में अपना डेब्यू यानी पदार्पण किया था। और इस फिल्म का एक गीत था, हालांकि इस फिल्म के सभी गाने बहुत मशहूर हुए थे, लेकिन उसके बाद 1989 में एक फिल्म आई और ये फिल्म भी राजीव रॉय की ही थी और इस फिल्म का नाम था त्रिदेव। त्रिदेव के गाने इतने ज़बरदस्त हिट हुए थे कि इसका क्या ही कहना। और इसके इस फिल्म के गीत आज भी हम सब की जुबा पर है। इसमें एक गाना था तिरछी टोपी वाले, और इस गीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए पहला नामांकन भी मिला था। हालांकि उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिल तो नहीं पाया, लेकिन इस फिल्म के गीतों ने और ख़ास तौर पर इस गीत ने, तिरछी टोपी वाले ने, इस गीत के जरिए उन्हें अपार सफलता मिली और उन्हें एक बेहतरीन संगीतकार के रूप में जाना जाने लगा। और इसके बाद उनके पास काम की भी कोई कमी नहीं रही।

विजू शाह ने जब राजीव रॉय की फिल्म त्रिदेव में संगीत दिया तो ये फिल्म बेहद सफल हुई और फिल्म के गीत भी काफ़ी सफल हुए। और त्रिदेव की सफलता के बाद विजू शाह ने राजीव रॉय की एक्शन थ्रिलर फिल्म विश्वात्मा के लिए भी संगीत तैयार किया। इसके बाद उन्होंने एक एक्शन ड्रामा फिल्म लुटेरे, जिसमें कि सनी देओल थे, 1993 के लिए संगीत तैयार किया। और लुटेरे का संगीत इतना ज़बरदस्त था कि इसके लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए दूसरा नामांकन मिला। हालांकि एक बार फिर से वो फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं पा सके, लेकिन नामांकन मिलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे ये जाहिर होता था कि उन्होंने कितनी शिद्दत से इस फिल्म के गीत बनाए हैं और इन गीतों को लोगों ने कितना ज्यादा पसंद किया है, कितना ज्यादा सुना है और उनके गीत कितने हिट हुए हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और बातें हो रही है विजू शाह की। 1994 में एक फिल्म आई थी दोस्तों, आप सबको याद होगा, जिसका नाम था मोहरा। इस फिल्म का संगीत भी विजू शाह ने दिया था और इस फिल्म के सभी गाने जबरदस्त हिट हुए थे। जैसे अगर आप बात कर लें तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, या फिर टिप टिप बरसा पानी, या फिर अभी आपने जो गीत सुना सुबह से लेकर शाम तक, ये सारे गीत जबरदस्त हिट हुए थे। और 1994 की अगर हम बात करें तो उस साल हम आपके हैं कौन भी फिल्म आई थी और इस फिल्म के गाने भी जबरदस्त हिट हुए थे। अब आप कहेंगे कि मैं हम आपके हैं कौन की बातें क्यों कर रहा हूं जबकि बातें विजू शाह की हो रही है। जी हाँ, तो 1994 में सबसे ज्यादा जो कैसेट बिके थे वो हम आपके हैं कौन का था, और इसके बाद जो सबसे ज्यादा कैसेट बिके थे वो मोहरा फिल्म का था। और एक जो आंकड़ा है उसके मुताबिक करीब 80 लाख से अधिक प्रतियां मोहरा फिल्म की भी इस साल बिकी थी। इस फिल्म के लिए भी विजू शाह को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए तीसरा नामांकन मिला। उसी वर्ष उन्होंने राजकुमार संतोषी की कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना के लिए भी बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार किया था और जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए भी फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकन मिला। यानी एक ही साल में उन्हें बैकग्राउंड फिल्म फेयर के लिए, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित

किया गया और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए भी फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए तीसरा नामांकन मिला। यानी यह साफ तौर पर जाहिर करता है कि विजु शाह कितने जबरदस्त संगीतकार थे और उनके संगीत में कितना ज्यादा दमखम था।

श्रोताओं, विजू शाह को गुप्त फिल्म में सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। 1998 में उन्होंने एक एक्शन कॉमेडी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए भी संगीत तैयार किया था और इस फिल्म के गाने भी, खासतौर पर जो मखना गीत था, वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। विजू शाह 67 साल के हो चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन उन्होंने जितने भी फिल्मों में संगीत दिया, गीत दिया, जितने भी गीत बनाए, वो ज़्यादातर गाने हिट रहे और आज भी वो गाने बेहद पुरकशिश हैं और बेहद कर्णप्रिय हैं, जिन्हें हम आप इन कार्यक्रमों के जरिए सुनते हैं, सराहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से उनका जो ये संगीत है वो हम सबके दिलों पर राज करता रहेगा और हम सबका मनोरंजन करता रहेगा। सुरों का सफरनामा फिल्म का समापन अब मैं यहीं करता हूँ। अपने दोस्त संजय सावन को दीजिए इजाज़त, लेकिन आगे कार्यक्रम आगे जारी है AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल पर।

0: श्रोताओं, शुरू का सफरनामा कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। रात्रि के 1 बजने को है, आइए अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
2: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। उधर नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बाद वहां फंसे महाराष्ट्र के 290 लोगों के सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है, जबकि 60 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आपदा के समय नेपाल में महाराष्ट्र के जिन 395 लोगों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी, उनमें से 105 भारत लौट रहे हैं, जबकि राज्य नियंत्रण कक्ष का बाकी 290 लोगों से संपर्क हुआ है। वे सुरक्षित हैं लेकिन वहीं फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन परियोजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं।

0: श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। रात्रि के 2 बजने को हैं, आइए अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
2: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। 10वां महिला एशिया कप कल संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आरंभ हो गया है। एशिया कप के 2026 के इस संस्करण में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के 2 समूहों में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के साथ हांगकांग और थाईलैंड है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं। महिला एशिया कप का आरंभिक मैच कल थाईलैंड और हांगकांग के बीच खेला गया। ग्रुप ए के मैच में थाईलैंड ने हांगकांग को 6 रन से हरा दिया। आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप बी के मैच में श्रीलंका का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से होगा। इस बीच भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ करेगी। इसके बाद 3 सितंबर को उसका सामना हांगकांग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by the flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and a recce team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in 2 flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people are still missing, as rescue teams search riverbanks and isolated settlements with survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that around 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Ranveer Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy. These include 63 workers of the Trishuli 1 project and 21 people from Tamil Nadu. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected areas on Thursday have arrived in New Delhi yesterday. External Affairs Minister Dr. Jaishankar yesterday met the group of 21 pilgrims belonging to Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts. On the Chinese side, External Affairs Ministry spokesperson Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. Mr. Jaiswal said that the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which is working round the clock. He said Indian embassies, both in Kathmandu and Beijing, have also set up 24/7 helplines. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan today in the first leg of the trip. Mr. Modi will reach Uzbekistan's capital Tashkent today. During the visit, Prime Minister Modi and President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, will review cooperation in different sectors. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 137th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday bid farewell to outgoing Ambassador of the European Union to India, Irby Delfon, in a social media post. The minister appreciated the outgoing ambassador's contributions towards concluding the India-EU FTA and further strengthening the strategic partnership. He wished him the best for his future endeavors. The government has said that there is no shortage of sugar in the country and all necessary measures will be taken for adequate availability of sugar at reasonable prices. The Consumer Affairs Ministry said that ex-mill sugar prices have declined by

इसी गीत के साथ नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं समाप्त होता है। आप हमें सुन रहे हैं एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति शिक्षा, जनसेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग जगत और शैक्षिक जगत के बीच सहयोग, मत्स्य पालन से जुड़े कार्यक्रमों तथा प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के इरोड में कोंगु वेल्लालोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस में समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति बेंगलुरु जाएंगे, जहां वे विधानसौधा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के जन्मशती समारोह में शामिल होंगे। रविवार को उपराष्ट्रपति केरलम के अलापुझा जाएंगे। वे केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे पतनमतिट्टा जाएंगे और वहां आरनमुला जल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। श्री राधाकृष्णन तिरुवनंतपुरम में केरलम के प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार ओणम पेजेंट्री का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अमेरिका ने ईरान की सरकार को और वहां की सेना के वित्तीय स्रोत काटने की कोशिश के अंतर्गत ईरान के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक मेल्ली के एक वरिष्ठ अधिकारी और हांगकांग की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी वित्त विभाग ने बैंक मेल्ली की दुबई शाखा के प्रबंधक रजा मोहम्मद तईदी को निशाना बनाया। उसने कहा कि यह बैंक ईरान की सेना, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की कुद्स फोर्स और रक्षा मंत्रालय को मदद मुहैया करा रहा है। 10वां महिला एशिया कप कल संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आरंभ हो गया है। एशिया कप के 2026 के इस संस्करण में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के दो समूहों में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के साथ हांगकांग और थाईलैंड हैं, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं। आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप बी के मैच में श्रीलंका का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है गीत व गजलों का कार्यक्रम, और आज हम आपको इस कार्यक्रम में सुनवाने जा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में गाई गजलें। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं इस गजल से, जिसमें उनका साथ दे रही हैं चित्रा सिंह।

आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़लें। तो आइए, अगली गज़ल पेश है, कल 14वीं की रात थी।

और अब इस कार्यक्रम की आखिरी गजल आपको सुनवाने जा रहे हैं, जी हाँ, जगजीत सिंह के ही स्वर में, चिट्ठी ना कोई संदेश।

0: इसी गजल के साथ अब ये कार्यक्रम यही समाप्त करने की दीजिए अपनी दोस्त कीर्ति को इजाजत। सुबह के 4 बज चुके हैं, अब हमारा सुनिए अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत वायलिन वादन। कलाकार हैं टी के जयारामा अय्यर। मृदंगम पर संगत की है रामानंद ईश्वरन ने। आइए सुनते हैं वायलिन वादन राग श्री रंजनी में।

0: कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वायलिन वादन राग श्री रंजनी में। कलाकार थे टी के जयारामा अय्यर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 29 अगस्त 2026। सुबह के 4:53:45 हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

चलिए अब आपको आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दे दें। सुबह 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस। आज आप जानेंगे दीर्घ श्वास प्रेक्षा और आसन के बारे में। पांच बजकर 20 मिनट पर समय रहेगा देशभक्ति संगीत का, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरंजनी में आप सुनेंगे बांसुरी वादन रोहित प्रसन्ना द्वारा राग नट भैरव में सुबह 5:30 पर।

भजन व शब्द का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम वंदना में सुबह 6:10 पर, 6:40 पर आप सुन सकेंगे चिंतन। चिंतन में आज आप सुनेंगे मेजर ध्यानचंद के जीवन से प्रसंग। 6:45 पर रामचरित मानस होगा। आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 32।

सुबह 7:10 पर कार्यक्रम संगीतिका रहेगा। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे विधि शर्मा द्वारा गाए भजन। 7:30 पर होगा गीतो भरी गुड मॉर्निंग। सुबह 8:45 पर स्वास्थ्य पत्रिका रहेगा। 9:15 पर कार्यक्रम धरती आकाश।

सुबह 9:30 पर सुनेगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। आपकी पसंद फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 10:10 पर।

0: सुबह 11:10 पर कार्यक्रम होगा सबरस, और 11:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी में सुनेगा तन्वी भट्टाचार्य का गायन। ये थे आज की प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह के 5 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने वर्ष 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया था। इस दौरान द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
2: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को

0: आवादेगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो सका। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंचे हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें निकालने का काम जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर आज जा रहे हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति शिक्षा, लोक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग जगत और शिक्षा जगत के बीच सहयोग, मत्स्य पालन से जुड़े कार्यक्रमों तथा प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में शामिल होंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितम्बर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन की दर 6.7% रही। इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही, हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून से कम रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास प्रकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi will embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan today. In the first leg of the trip, Mr. Modi will reach Uzbekistan's capital, Tashkent, today. During the visit, Prime Minister Modi and President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, will review cooperation in different sectors. This will be Prime Minister's 4th visit to Uzbekistan. Prime Minister's office in a statement said that during his 2-day visit, Mr. Modi will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between India and Uzbekistan. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains and set the agenda for the road ahead. On the second leg of his visit, the Prime Minister will travel to Bishkek on a two-day visit to participate in the 26th Shanghai Cooperation Organization, SCO Summit, at the invitation of the President of Kyrgyz,

मैं योगाचार्य सुनील गौतम आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना श्वास के आने जाने को

ना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना। यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं। लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है। पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास। और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है, ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा। जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा। और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है दीर्घ श्वास के अभ्यास से। बेहतरीन मेडिटेशन हो जाता है, हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट रखने में समर्थ। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में

और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं। पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव, यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति। इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति संगीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत बांसुरी वादन। कलाकार हैं रोहित प्रसन्ना। आज आप सुनेंगे राग नट भैरव।